FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक

0: जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। समय है श्रोताओं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। पहले देश फिर हम, आइए करें नमन वंदन अपनी मातृभूमि का, इस भारत भूमि का। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत समूह स्वरों में देश वंदना के साथ।

समूसरों में देश वंदना के पश्चात आइए करते हैं आराधना ईश्वर की। सुनते हैं ये पारंपरिक भजन, स्वर हैं चित्रा सिंह के।

चित्रा सिंह को अभी आपने सुना। आराधना की अगली प्रस्तुति में आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम दास जलोटा और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना।

आराधना में आए श्रोताओं, अब सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी और साथियों के स्वर में पंडित नरेंद्र शर्मा की ये रचना।

देश वंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से FM बैंड 103.2 MHz पर। कार्यक्रम के समापन में आई श्रोताओं सुनते हैं शिव जी की ये पारंपरिक आरती।

0: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। खेती की बात में आइए श्रोताओं सुनते हैं ये सामयिक सुझाव। विषय है खरीफ मौसम में उर्वरक प्रबंधन। वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का है।
1: किसान संगी हुआ राम राम, जय जोहार। संगी हुआ आज हम खेती के बात में बढ़िया विषय अपन पर चयन करके लाए हैं जो उन्हें जरूरी विषय हवा है, खरीफ के मौसम में उर्वरक प्रबंधन। संगी हुआ अच्छा फसल उत्पादन पर केवल बीज और सिंचाई ही जरूरी नहीं है, बल्कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन भी बहुत जरूरी होते ना भाई। खरीफ मौसम में धान, मक्का, सोयाबीन, राहेर बहुत सारा फसल बोए जा सकत है। खरीफ मौसम है ऐसे मौसम है जेमा सब प्रकार के फसल हम ले सकत हन। अब फसल ला आवश्यक पोषक तत्व और सही मात्रा और सही समय में मिल ही त उत्पादन बढ़ी और लागत भी ओमा कम लगही। सबसे पहली तो खेत में उर्वरक डाले के पहली माटी परीक्षण करवावा। माटी परीक्षण हो गए ओकर बाद ओमा पता चलही कि खेत में कौन कौन से पोषक तत्व के कमी हावय। एकर आधारित पर फिर आप मन उर्वरक के उपयोग कर सकत हा। और आए बाएं उर्वरक ल डालिया बिना जाने पर खे तो का होही,

0: अनावश्यक खर्चा भी बढ़ी और माटी भी हर आप मन के खराब हो ही, फसल भी खराब हो जाही। ता आप सबसे पहले माटी के परीक्षण करवावा और जाना के एमा कौन सा पोषक तत्व के कमी है और ओकर आधारित पे आप खातू माटी जो भी डालना है वो आप डालाओ। और खेत के तैयारी के समय अच्छी तरह से सड़े हुए गोबर खाद या कंपोस्ट खाद 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के दर से डालो। एकर से माटी के उर्वरा शक्ति बढ़ते, माटी में नमी बने रहते और बढ़िया उत्पादन भी आप मन मिली, कीड़ा बीमारी से बचत भी होही। रासायनिक उर्वरक में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये सब के उपयोग किए जाते। आप फास्फोरस और पोटास एकर मात्रा और नाइट्रोजन के एकर एक तिहाई मात्रा बुआई के समय डालना चाहिए, है ना। ओकर बाद बचे हुए जो नाइट्रोजन है ओला फसल के जो बढ़वार होते ना थोड़ा थोड़ा बाढ़ जाते बढ़वार के अनुसार 2 बार में टॉप ड्रेसिंग के रूप में ओला डालना चाहिए। ओकर बाद धान के फसल में यूरिया के प्रयोग खेत में पर्याप्त नमी है यदि तभी कराओ। और यूरिया डाले के बाद हल्का सिंचाई या बारिश होए से एकर असर ज्यादा होते माने बेहतर होते। यदि जल भरे है खेत में और वो समय आप खातू डाला था तो ओकर से खेत ला आपके नुकसान हो ही। तो चेत कराओ खातू माटी डाले से पहले खेत है सूखा रहे और डाले के बाद फिर पानी आप यदि बारिश हुआ थे तब तो ठीक है और नहीं होते तो आपके सो जो साधन है ओकर से हल्का सिंचाई आप खेत में कर देवो। ओकर से आप आपके खेत ला कोई प्रकार के नुकसान नहीं हुआ। यदि खेत में जिंक या सल्फर के कमी दिखाई देवा थे तो जिंक सल्फेट या सल्फर युक्त तो उर्वरक के उपयोग कृषि विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार आप करो भाई। और सूक्ष्म पोषक तत्व के पूर्ति पर पौधा के वृद्धि और दाना के गुणवत्ता में सुधार होते माने धान में जो दाना भराते ना तेमा। और जैव उर्वरक जैसे कि एजोटोबैक्टर, राइजोबियम और पीएसबी कल्चर के उपयोग भी लाभदायक हवा। एकर से माटी के उर्वरता बढ़ते संगे संग रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता भी कम करते। किसान भाई मन याद रखा संतुलित उर्वरक प्रबंधन के अर्थ है सही उर्वरक, सही मात्रा, सही समय और सही विधि ले उपयोग करो माने एकर से फसल का होही स्वस्थ रही, उत्पादन में बढ़ोतरी होही और मिट्टी के गुणवत्ता भी लंबे समय तक आपके बने रही। अंत में खरीफ फसल में अधिक उत्पादन प्राप्त करे बर माटी के परीक्षण आधारित उर्वरक प्रबंधन ही अपनावा और कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिक सो सलाह लेवत रहो। देखा माटी के उर्वरता बढ़ाए में क्या का सहायक होते एक बार आऊ बता दी। एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, पीएसबी कल्चर ये कल्चर के उपयोग कर या तो माटी के उर्वरता बढ़ाए के संगे संग रासायनिक उर्वरता के आवश्यकता भी कम होते। खेती के बात में आज अतके संगवारी हुआ, काल नवा विषय के संग फिर उपस्थित होबो। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।
1: खरीफ मौसम में उर्वरक प्रबंधन इस विषय पर यह थी जानकारी। कार्यक्रम खेती की बात में वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है तुलसीकृत श्री रामचरित मानस गायन। गायक कलाकार हैं श्रीकांत पारगांवकर, रविन्द्र साठे और साथ ही संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गईं।

कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण, शील, सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गई। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ, श्रद्धा, योग तथा ज्ञान, इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

तुलसीकृत श्री रामचरितमानस गायन का प्रसारण अभी किया जा रहा था। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर, रविंद्र साठे और साथ ही संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। कार्यक्रम नवविहान में श्रोताओं, आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं केंद्र सरकार की योजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की।

जिसका उद्देश्य डिजिटल संरचनाओं का विस्तार करके ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, साथ ही सार्वजनिक सेवाओं का डिजिटल माध्यम से सरलीकरण करना है। आज बैंकिंग सेवा, भुगतान, डाक सेवाएं, अपने पार्सल, रजिस्ट्री पत्रों की जानकारी, रेल सेवा, टिकट बुकिंग, माल परिवहन, पर्यटन, होटल बुकिंग, कैटरिंग, फूड कोर्ट, न्यायिक सेवा, राजस्व सेवा, कर भुगतान, जन्म मृत्यु विवाह, पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना, पुराने अभिलेखों का अवलोकन, वेतन, पेंशन, मेडिकल बिल, भू अभिलेख, राशन कार्ड निर्माण, इनकी जांच, निवास जाति प्रमाण पत्र जैसे तमाम कार्य बेहद सरल और सुलभ होते जा रहे हैं। इन सब का कारण है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। श्रोताओं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में प्रत्येक नागरिक के उपयोगी संरचना स्थापित करना प्रमुख उद्देश्य है, जिससे पेपरलेस काम हो, दस्तावेजों का बोझ लेकर चलना ना पड़े। इसी तरह मांग के अनुरूप शासकीय व्यवस्थाएं और योजनाओं का क्रियान्वयन भी डिजिटलीकरण से अच्छा परिणाम दे रहा है। साथ ही नागरिकों को भी डिजिटल सशक्त बनाया जा रहा है। केंद्र और राज्य की विभिन्न एजेंसियां भी ये काम कर रही हैं, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी सहित शहरी ग्रामीण महिलाओं के लिए समय समय पर डिजिटल प्रशिक्षण, डिजिटल जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। निश्चित ही शासन के इस प्रयास का सकारात्मक परिणाम नागरिकों को मिल पा रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की इस संक्षिप्त चर्चा के साथ ही कार्यक्रम नव विहान के इस अंक को देते हैं यहीं विराम।

कार्यक्रम नौविहान में अभी हम चर्चा कर रहे थे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आइए श्रोताओं, हम आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी सुनिए दिन में 11 बजे। सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के कार्यक्रम अमराई में आज हम आपको सुनवाएंगे राजकुमार मरकाम, रत्ना विश्वकर्मा, मोतीलाल पटेल और साथियों के गाए कुछ छत्तीसगढ़ी गीतों को। समय होगा सुबह 8:30। छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का फोन इन कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत हम लेकर आएंगे दिन में 10 बजे। आज की प्रस्तुति होगी श्वेता पांडे की।

यादों के झरोखों से। पुराने फिल्मों के गीतों का ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे सुबह 7:30 पर, और पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद का आनंद लिया जा सकेगा दिन में 10:30 से। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण अपने दैनिक समय सुबह 7:05 पर होगा। सुबह की सभा में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समय होगा सुबह 9:55 और दिन में 11:55 पर।

शेष समय शाम 5 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का आनंद लिया जा सकेगा। शाम 5 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक होंगे CF वन विभाग सरगुजा।

युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा जगत का प्रसारण होगा शाम 5:35 पर। इसमें नशे से बचाव पर चर्चा होगी और होगा क्रम कला साहित्य का, साथ ही गीत संगीत का भी आनंद लिया जा सकेगा। चित्रपट संगीत हम लेकर आएंगे शाम 5:05 पर। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने, इसे आप सुन सकेंगे श्रोताओं शाम 6:20 पर और संध्या 7 बजे से भी। चित्रपट संगीत पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा की खुशबू बिखरेगी रात 8:15 से।

ग्राम सभा में शाम 7:20 पर चर्चा करेंगे डेयरी उद्योग रोजगार का साधन विषय पर, साथ ही पोषण वाटिका का महत्व और आधुनिक मॉडल पर सुनिए भेंट वार्ता। इसके अलावा मंडी मौसम की जानकारी और सामयिक सुझाव भी हम साझा करेंगे। समय होगा शाम 7:20 पर। सुगम संगीत में आज रात 8 बजे सुनिए गायक कलाकार अल्ताफ रजा के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमों को। हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के साथ ही रात्रि 11:10 पर हमारा आज का प्रसारण संपन्न होगा। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ पलों में संस्कृत में और ठीक 7 बजे हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: स्वागतम् इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा अथ वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पोताः आईएनएस दुनागिरिः आईएनएस संशोधकः आईएनएस अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः
1: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है इनका निर्माण भारत में हुआ है इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है
0: तेन उक्तं यत् एतेषां पोतानां निर्माणे द्विशताधिकाः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानं

0: अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साम्प्रतिक वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य वैश्विक उत्सव रूपेण आयोजनार्थं विश्वस्य जनान् प्रति कृतज्ञतां व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्य कल्याणयोः समान लक्ष्ये संयोजयति। प्रधानमन्त्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति, तथा च व्याघ्रपालकैः वन कर्मचारिभिः स्थानीय जनैश्च सह संवादं करिष्यति। अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति 500+ व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी 26+ पुनर्परीक्षा सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसंपन्ना। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु 44+5,000 परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेष व्यवस्थाः अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन द्वादश श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामाः क्रमशः प्रकाशिताः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु 87% परिणामाः घोषिताः सन्ति, अवशिष्टपरिणामाः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इत्युक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणिक सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां 7 मृताः, 77 श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितम् आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर

0: के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: संस्कृत और हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह।
1: सुबह का उजाला सदा आपके साथ हो, हर दिन हर पल खुशियों की बरसात हो। दिल से निकलती है यही दुआ आपके लिए, आप जहां भी रहें सफलता आपके पास हो। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हमारे सभी सुधी श्रोताओं का कार्यक्रम के इस अंक में आपके

साथ हूं मैं महावीर वर्गा, कीजिए स्वीकार हमारा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, हर सुबह हमें अवसर देती है कि हम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा सकें। प्रकृति भी, पेड़, जंगल, फल, धूप, बरसात, ठंड हमें निरंतर देते रहती है, लेकिन इस बार बारिश का इंतजार हम सभी कर रहे हैं। मानसून कुछ भटक सा गया है। मित्रों, अल्प वर्षा या अनियमित मौसम के कारणों को जानने का प्रयास करें तो लगभग हम सभी कारण जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। वृक्षों की कटाई, कंक्रीट के जंगलों से हम प्राकृतिक वनों को नष्ट कर रहे हैं लगातार। श्रोता मित्रों, वन शब्द में ही जीवन संभव है। वनों के बिना न हवा न पानी मिल सकता है। आज की तारीख यानी 22 जून विश्व वर्षा वन दिवस के रूप में भी चिन्हांकित है। ये दिन हमारी धरती के स्वास्थ्य, हरियाली, जलवायु परिवर्तन के रोकथाम और जैव विविधता को बचाने के लिए प्रेरित करता है हमें। वर्षा वन धरती के संपूर्ण जीवों के लिए समझिए ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह है, जो निरंतर हमें प्राण वायु देते रहते हैं। इसी के कारण बादल आकर्षित भी होते हैं और झमाझम बारिश होती है। श्रोताओं, वर्तमान की स्थिति चेतावनी मात्र है। हमें चेतना होगा, हमें जागना होगा, हमें सुधरना होगा और धरती पर हरियाली बिखराने का हर संभव सटीक प्रयास पूरी ईमानदारी से करना होगा। निश्चित ही हमारा सकारात्मक प्रयास हरियाली के साथ साथ बारिश की बौछारें लाएगा और तपती धरती की प्यास बुझाएगा। श्रोता मित्रों, इस दिशा में हम अपने स्तर पर क्या कुछ कर सकते हैं अवश्य विचार कीजिए और सटीक प्रयास भी। इस काम के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और साथ ही एक गीत भी है जो आपके लिए हमने चुना है, तो शुभकामनाएं और गीत दोनों भेज रहे हैं आप श्रोताओं के लिए। आनंद लीजिए।

श्रोताओं, गीत का आनंद आपने लिया और इस गीत में भी बादल, बरसात, पानी को आमंत्रण है, निवेदन है। लेकिन मित्रों, जब हमारे पास पर्याप्त पानी होता है तब क्या हम इसकी कदर करते हैं? आपका जवाब हाँ या नहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोगों के व्यवहार, दिनचर्या को हम देखें तो पानी बर्बाद करने का ही होता है। अब जैसे आज सुबह सुबह ही जब आकाशवाणी ड्यूटी के लिए हम आ रहे थे तो कई लोग पानी की पाइप लगाकर अपने घरों के सामने की जगह को, आंगन को, सड़क को, गली को धो रहे थे। वहीं कुछ लोग तेज पानी की धार से अपने स्कूटर, कारों पर बौछारें मार रहे थे। इसी तरह सार्वजनिक नलों के नीचे बाल्टियां तो लगी थी लेकिन वो भी भरकर, लबालब भरकर छलक रहे थे। बात यहीं नहीं थमती, कुछ घरों की छतों से पानी टंकियां भरकर सड़कों में पानी बहा रही थी। श्रोता मित्रों, इस आदत में बदलाव न लाएं तो फिर सिर्फ आंखों में रह जाएगा पानी। हमारे छोटे छोटे प्रयास हजारों लीटर पानी बचा सकते हैं। ब्रश मंजन, शौचालय के इस्तेमाल, स्नान, पेयजल, रसोई, वाहन

स्नान, कपड़ों की धुलाई, विभिन्न आयोजन, इस तरह के अनेक काम हैं जिसमें पानी तो लगता ही है और इनसे हम सब जुड़े हैं। तो क्यों ना पानी बचाने का सकारात्मक प्रयास की शुरुआत घरों से किया जाए, न सिर्फ घरों से बल्कि स्वयं से हम शुरू करें। श्रोता मित्रों, सोच बदलने, आदत बदलने का परिणाम निश्चित ही अपने अनुरूप आता है। साथ ही दोस्तों, मित्रों, परिवार, बच्चों को भी इस अभियान में शामिल करें। देखिए, पानी की बचत सभी चाहते हैं, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी ही चाहिए ना। हम उम्मीद करते हैं कि वो सकारात्मक कदम, वो सकारात्मक पहल आपका ही होगा, है ना।

0: गीत के बाद मित्रों आइए अब जानते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर।
1: नमस्कार, यातायात पर आधारित सूचनात्मक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस समय सर्वत्र मुहर्रम पर्व मनाया जा रहा है, कहीं कहीं तकरीर का भी आयोजन किया गया है, साथ ही अनेकों स्थानों में इस परिपेक्ष में सवारी भी निकाली जा रही है जो देर रात तक शहर में भ्रमण कर रही है। कहीं कहीं शेर नाच का भी कार्यक्रम होगा। इन आयोजनों में लोगों की बड़ी संख्या होती है, अतः जहां भी इस प्रकार के आयोजन हो रहे हों वहां सभी वाहन चालक पूरी सावधानी के साथ और धीमी गति में चले। इसके साथ ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन बना हुआ है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, लंबे अंतराल के बाद एक बार पुनः वैवाहिक लग्न प्रारंभ हो चुके हैं और इन शुभ लग्न में शादियां भी प्रारंभ हो चुकी हैं। जहां भी शादियां हो रही हैं वहां लोग बहुत उत्साहित हैं, विशेषकर हमारे युवा साथी। विवाह का महत्वपूर्ण भाग बारात का होता है। बारात में जाने सभी उत्सुक होते हैं। बारात के लिए वाहन की आवश्यकता होती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस कार्य के लिए आर्थिक बचत के आशय से माल वाहक वाहन जैसे ट्रक, पिकअप, मेटाडोर, ट्रैक्टर, माल वाहक ऑटो जैसे वाहनों का उपयोग करते हैं, जबकि इन वाहनों में यात्रियों के बैठने की सुविधा नहीं होती है। इसमें यात्री परिवहन करना खतरनाक होता है, साथ ही विधि विरुद्ध भी है। ऐसे वाहनों में यात्री परिवहन करते एक नहीं अनेकों बार गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में लोग काल कलवित भी हो चुके हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है, इन माल वाहक वाहनों में यात्रा कभी न करें। इन वाहनों को यात्री वाहन के रूप में उपयोग भूल कर न करें। ऐसा करते पकड़े जाने पर वाहन मालिक पर कार्रवाई के साथ साथ वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जाता है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: श्रोताओं, ये था आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर।

0: इसे आप एक बार फिर सुन सकते हैं दिन में 10:55 पर। और अब बारी है कुछ संदेशों की।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 डॉक्टर की सलाह।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
4: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। ये सूचना है कार्यक्रम महिला सभा हेतु। इसमें फोन करें गीत सुने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 23 जून 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग आज 22 जून को दिन में 11:00 से 11:30 के बीच किया जाएगा। आपसे चर्चा का विषय होगा बचपन की सहेलियां और सुनहरी यादें, और साथ ही श्रोता बहने जिन फिल्मों के गीत सुन सकती हैं उसके नाम हैं कॉकटेल, लुटेरा, हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉय। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर। हमारे फोन नंबर्स हैं 2665 92 और 3100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। हमें रहेगा आपके फोन कॉल्स का इंतजार। और इस कार्यक्रम संबंधी सूचना के साथ ही श्रोताओं, घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि कार्यक्रम के समापन का वक्त हो चला है। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ कार्यक्रम आज सुबह से दे अनुमति। अपने साथी महावीर परगाह को नमस्कार।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं पुरानी हिंदी फिल्मों के गीतों के कार्यक्रम यादों के झरोखों से का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मजरू सुल्तानपुरी की लिखी इस रचना से। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, लता मंगेशकर की आवाज है और इस गीत को हमने लिया है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से।

दिल ही तो है। इस फिल्म का गीत आपने सुना सुमन कल्याणपुर और मुकेश के स्वर में। साहिर की ये रचना थी और रोशन का संगीत। कार्यक्रम में आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये नगमा। ओपी नैयर का संगीत है, शमशाद बेगम की आवाज़ है और इस गीत को हमने चुना है फिल्म सीआईडी से।

बरसात। श्रोताओं, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। शैलेंद्र की शब्द रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज़।

0: कार्यक्रम यादों के झरोखे से आप सुन रहे श्रोताओं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आशा भोसले के स्वर में एसएच बिहारी की ये रचना। ओपी नैयर का संगीत है और फिल्म है सावन की घटा।

कार्यक्रम के समापन में आइए श्रोताओं सुनते हैं हसरत जयपुरी की ये रचना। संगीत है शंकर जयकिशन का, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म है कन्यादान।

फिल्म कन्यादान के इस गीत के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम यादों के झरोखों से का ये अंक यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ पलों में हिंदी में समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज़ दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध

0: समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा

0: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
1: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्धविराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों

0: और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रांग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee Port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen

राजकुमार मरकाम और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी गीतों का आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम अमराई में। इन्हीं कलाकारों के स्वर में आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम अबराई में अब आइए श्रोताओं सुनते हैं रत्ना विश्वकर्मा, मोतीलाल पटेल और साथियों के गाए कुछ छत्तीसगढ़ी गीतों को।

0: मोतीलाल पटेल, रत्ना विश्वकर्मा और साथियों को आपने सुना। कार्यक्रम अमराई के इस अंक में इन्हीं कलाकारों के स्वर में आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत।
1: तोला ले जाऊं रे, तोला ले जाऊं जी तोला।

इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम अमराई का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इसमें आज हमने आपको सुनवाए राजकुमार मरकाम, रत्ना विश्वकर्मा, मोतीलाल पटेल और साथियों के गाए कुछ छत्तीसगढ़ी गीतों को। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 9 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों से।

अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं देव नेगी और पायल देव की आवाजों में वायु का लिखा गीत, विशाल शेखर का संगीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कहूँ ना प्यार है इस फिल्म का गीत, लकी अली रम्या की आवाजों में, इब्राहिम अश्क की रचना है, राजेश रोशन का संगीत।

ये गीत था जानम समझा करो। इस फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में मजरूह के बोल थे। और अब वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में क्यों हो गया ना, इस फिल्म का गीत, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: पिता।
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता अमरीश पुरी पर।

0: अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। वे अपने जमाने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहाँ से शुरू हुआ अमरीश पुरी का अभिनय की दुनिया का सफर।
1: पूछो जरा है कैसी जिंदगी।

0: ना जोश है नहीं शोर है।
1: अमरीश पुरी बहुत देर से फिल्मों में आए। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ सन 1973 में।

इसके बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी।

बीच अभिनय के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया।

सन 1987 में आई इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो की भूमिका की थी। यहाँ से हिंदी फिल्म संसार को मिला एक प्रभावशाली खलनायक। मोगैम्बो की भूमिका को आज भी सभी याद करते हैं।

1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम। इस फिल्म के निर्देशक थे स्टीवन स्पीलबर्ग। इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने मोला राम की भूमिका निभाई थी।

0: बहुत बरस पहले अमरीश पुरी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जय माला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बहुत सारी बातें हमें बताई थी।
1: मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूँ। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूँ और आप सबकी तरह सीने में दिल रखता हूँ, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सबकी तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना। मस्ताना।

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

0: आप लोगों की तरह हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदनलाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे, उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपराओं को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 में आई फिल्म परदेश, सुभाष घई की इस फिल्म में अमरीश पुरी पर ये नगमा फिल्माया गया था।

सन 1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।

0: कमल हासन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद नेहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी किसना।
1: हम हैं इस पल।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 9:55 होने को हैं। रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: रायपुर केंद्र है, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आज मुख्यमंत्री रायपुर से करेंगे शुभारंभ। बस्तर संभाग में कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इलाकों में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए सामूहिक योग अभ्यास। और राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ से सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में प्रदेश के 1000 विशिष्टजन विशेष ट्रेन से गुजरात स्थित सोमनाथ धाम जाएंगे। यात्रा का शुभारंभ आज सुबह करीब 11 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस यात्रा में कलाकार, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। यात्रा का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ना है। प्रतिभागी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और परंपराओं का भी प्रदर्शन करेंगे। दंतेवाड़ा जिले में ढोलकल ट्रैकिंग रूट का लोकार्पण किया गया। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने इस ट्रैकिंग रूट का शुभारंभ किया। जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत करीब 61 लाख रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया है। इस रूट के शुरू होने से क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इससे दंतेवाड़ा की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कभी नक्सलियों का गढ़ रही करेगुट्टा पहाड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से मशहूर ये 5000 फीट ऊंची पहाड़ी कभी कुख्यात माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ हुआ करती थी। पिछले वर्ष अप्रैल मई माह में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में नक्सलियों के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया गया था। कई दिनों तक चले इस में भारी मात्रा में यहां से हथियार और 450 से ज्यादा आईईडी बरामद किए गए थे। इस दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्र में स्थित सुरक्षा शिविर में कल योग सत्र आयोजित किया गया। राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल रमन डे का करेंगे। छत्तीसगढ़ स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता 27 जून तक चलेगी। इसमें देश के 21 राज्यों के 349 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं प्रदेश के 49 खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा एक पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ के 127 केंद्रों पर करीब 46,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के दौरान रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी, स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। रायपुर, बिलासपुर सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहे। रेलवे के अनुसार परीक्षा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के ओरछा में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए 3 दिवसीय वृहद शिविर आयोजित किया गया। विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान के तहत हुए इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। प्रशासन को मिले 396 आवेदनों में से 277 मामलों का मौके

0: पर ही निराकरण किया गया। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने आईएसआई से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पंजाब निवासी सेवक सिंह अकलतरा में रहकर ठेकेदारी कार्य की आड़ में मोबाइल के जरिए गोपनीय जानकारी भेज रहा था। जांच में उसके संपर्क पाकिस्तान, सऊदी अरब और मैक्सिको से जुड़े होने की बात सामने आई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आज मुख्यमंत्री रायपुर से करेंगे शुभारंभ। बस्तर संभाग में कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इलाकों में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए सामूहिक योग अभ्यास और राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी गीतों का फोन इन कार्यक्रम तुहर कोट हमर गीत। आज की प्रस्तुति है श्वेता पांडे की।

0: जय जोहार, राम राम संगवारी हो। स्वागत है आप जम्मो श्रोता संगवारी मन के कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत मा। मैं हूँ आप मन के रेडियो मितानिन श्वेता पांडे। और आप मन ला बता दो कि तुहर गोट हमर गीत कार्यक्रम के तकनीकी सहयोगी रहिन है सौरभ केशरवानी जी मन। तो एक कार्यक्रम मा हमर जतका श्रोता संगवारी मन फोन करे है और गोट बात करे है तेन ला आप मन ला सुनावत हन देखत हन। पहला जन श्रोता है हमर कॉल करे वाले, फोन करे वाले और हमन से गोट बात करे वाले तेन हा कौन है जी? हेलो,
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी क्रॉसिया कॉलेज से नुभान सिंह बोलत हूँ।
0: नमस्कार, जय जोहार, कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत मा स्वागत है आप मन के। का हाल चाल है इंद्रवान भैया?
1: ठीक है दीदी, ठीक है, बढ़िया है, मौसम बेहाल है, पानी गिरी, कल भी पानी गिरी, आज एकदम धूप तेज है। बादल भी दिखाई दे रहे थे, उलट उलट मौसम हो रहा है, तो ये कभी बादल कभी धूप तेज, तो ये मतलब लोगों से आग्रह कर जंगल का लकड़ी पेड़ पौधा न काटे, काहे की काटे से वर्षा ढंग से नहीं होते, वर्षा पेड़ पौधे के ऊपर ही निर्भर रहते, तो लोगों से आग्रह कर कि पर्यावरण के दिन पेड़ पौधा लगाते, बाकी दिन भी पेड़ पौधा लगाए, बरसात के दिन में खूब लगाए, जंगल की लकड़ी कटाई के रोके और सबके मना करे, घेराव करे बढ़िया से और बढ़िया से फलदार वृक्ष भी लगाए, आम का जामुन के गुठली के, तो क्या हो कि पानी भी गिर ही बढ़िया से, वही से बिजली पैदा होते, वही से खेती होते, वही से कुआं में पानी मिलते नहाए पर, घर का सार्वजनिक काम होते, पशु पक्षी में भी पानी पीते, तो ये सब का बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही बात बोला था आप, और साथ साथ अपन जिन स्वास्थ्य है उसे भी बेहतर रखना है
1: और योग दिवस का भी ध्यान रखना है, हमको डेली योग करना, खूब पैदल चलना है, योग करे से मन भी शरीर भी स्वस्थ रखे, दिनचर्या भी दिन बढ़िया रखे।
0: कम से कम दिन माँ अपन बर 15 से 45 मिनट निकालना है और योग करना है सब झनला, ताकि जीवन जिन है वो बेहतर बन सके और हमारे जिन सेहत है वो सही सही रह सके, तो हमन खुश रहो और खुश रखबो भी,
1: खूब हंसे से, खान पान से भी यो करे से कोई बीमारी परेशानी नहीं होती।
0: बिल्कुल सही बात बोला थो आप मन ला, फोन लगाए बर बहुत बहुत धन्यवाद है आप मन के। जय जोहार, राम राम।
1: जय जोहार, राम।
0: हेलो हेलो हेलो,
2: जय राम देवी।
0: जय राम भैया, मैं कब से हेलो हेलो बोला था, आप कुछ बोलते च नहीं हो। कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत में लगे है आप मन के फोन, और आप मन अपन सुघर नाम बता देवा कि कौन बोला था भैया और कहाँ ले बोला था।
2: जी दीदी, छत्तीसगढ़ में रहता हूँ दीदी, छत्तीसगढ़ यह नाम है मिलाऊ कुलदीप कैसे दीदी, भाटा पारा पाली गुटे नंबर गाँव है, यहाँ बर पीपर के छाव है, जम्मो श्रोता कम पियर मन ला मोर राम राम।
0: आप मन ला राम राम है, जय जोहार है, का हाल चाल है भैया?
2: बढ़िया दीदी।
0: आओ बतावा, का बात लेके आए हो, का गोट बात करना है आज?
2: गोट बात तो बहुत लंबा है दीदी,
0: तो थोड़ा छोटे छोटे भाग में बता दो हमला।
2: तीन बेटा मिला उदास के, पढ़े लिखे ग्रेजुएट पास है, शासकीय नौकरी बिना उदास, ठीक है दीदी?
0: आओ बतावा।

0: छोटे से किराना तो रखे दीदी मैं।
1: हाँ वो तो आप बताए हा, हमन जानथन अपन जतका भी श्रोता संगवारी मन है उन का करते कौन सा काम बूता करते वो सब के जानकारी तो हवे।
0: गुनगुनाए के मन है का दीदी?
1: हाँ बिल्कुल आपके जिन गीत है आपके गुनगुनाना है तेन तो एक कार्यक्रम के माध्यम ले जाना चाहिए जब आपके फोन लगे है ता।
0: एक ठो केवट के किस्सा है दीदी वही थोड़ा गुनगुना दे।
1: हाँ स्वागत है भैया।
0: भगवान वनवास जो ले थे।
1: हाँ हाँ।
0: नाव नहीं चढ़ाओ राम पाँव पखारे बिना नाव नहीं चढ़ाओ नाव नहीं चढ़ाओ राम पाँव पखारे बिना नाव नहीं चढ़ाओ राम चलत है पाछू लक्ष्मण भाई अघुआ घूराम चलत है पाछू लक्ष्मण भाई बीच मसीता माता हवे चित्रकूट बर जाई नाव नहीं चढ़ाओ राम पाँव पखारे बिना नाव नहीं चढ़ाओ नाव नहीं चढ़ाओ राम पाँव पखारे बिना नाव नहीं चढ़ाओ।
1: बहुत बढ़िया आवाज है आपके अच्छा आप मन बताए हो
0: बहुत पहली से रेडियो श्रोता हूँ दीदी सन 80 से जुड़े हैं आकाशवाणी रायपुर में।
1: बिल्कुल
0: तो बहुत आमने सामने हो चुके हो मन है बरसाती भैया रही तो मल चौपाल कार्यक्रम लेने वाला रही बेचारा अंत काल हो गए अब कैसे करबो समय कौन जानते दीदी ये सब।
1: आप मन के सोच विचार भी अच्छा लगते है आप मन से बात करके भी हमन के मन है एकदम प्रसन्न हो जाते
0: प्रसन्न हो जाते दीदी जितना मोर आस पास है मैं तो अपन आप बड़ाई नहीं कर सका मैं सब सभ्यता से बात करता हूँ सब समझते भी है बात मन ला केकर में और आप मन ला तो अब मौका नहीं मिली भाटापारा मोर तक पहुँचे पर लेकिन मैं तो आकाशवाणी मोर ख्याल से 3 बार पहुँच चुके हैं।
1: हमन ला मौका मिली तो बिल्कुल आप से भेंट भी करबो।
0: जी जी जी
1: हाँ तो आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद दिया फोन लगाए बर
0: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी समय दे बर
1: राम राम जय जोहार भैया
0: जय जोहार जय जोहार।
1: हेलो
2: हाँ हेलो
1: जय जोहार राम राम।
2: हाँ राम राम वंदे मातरम जय जोहार नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार भैया कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत में स्वागत है आप मन के
2: धन्यवाद शुक्रिया।
1: अपन सुघर नाम बता देवा जी।
2: हाँ मोर नाम है रामचंद्र मखीजा काथर भाई बनिया पारे धमतरी ले गोठिया तुम बहन।
1: बहुत बढ़िया भैया का हाल चाल है?
2: हाल चाल बने बने हैं और योग दिवस के आप सभी पूरा आकाशवाणी परिवार शुभकामनाएं। योग जो है शरीर ला तंदुरुस्त और बढ़िया रखे बर मन में एकाग्रता और ज्ञान लाए बर मन के संतुष्टि बर और शरीर के निरोग रखे बर योग जरूरी है
1: बहुत जरूरी है।
2: और योग कई प्रकार के होते पद्मासन सिद्धासन यानी जितनी जूनिया है उतने योगासन है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब ने इसका स्वागत किया और सभी देश इसको अब अपना रहे हैं और स्वस्थ रह रहे हैं।
1: बिल्कुल योग तो बहुत प्राचीन काल ले हवे लेकिन ओला आत्मसात करे में थोड़ा समय लग गए है ऋषि मुनि मन तो योग करत रही ने
2: शंकर भगवान जी है पलथी मार के बैठे है पैर के तलवा बाहर पलथी मार के ओला सिद्धासन करते
1: बिल्कुल
2: और गुरु नानक देव जी बैठे है वह पद्मासन है पलथी मार के कई प्रकार के आसन हमारे ऋषि मुनि मन बताए है।
1: बहुत बढ़िया आप जानकारी देवत हो कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत नाम है कार्यक्रम के ता कौन सा गोठ बात और लेके आए हो आप कार्यक्रम के
2: और गोठ बात है शरीर ला तंदुरुस्त रखे पर कुछ न कुछ करे खेल कूद है या योग है एक प्रकार के जरूरी है।
1: बिल्कुल ठीक बोले तो आप
2: और अभी बरसात लगी तो हमें पर्यावरण के सुघर बनाए पर पेड़ ज्यादा लगाना है काबर की पहले मकान कच्चे रही पेड़ अच्छे रही अब मकान पक्के बने हैं पेड़ कटे हैं रोड है गांव गली मोहल्ला शहर है हर जगह पक्के मकान तो बना जाते तो हमारे पर्यावरण में भी सुधारना है हमारे जीना है और हमारे भविष्य लैका मतलब ऑक्सीजन प्राप्त करना है तो पेड़ से मिले।
1: बहुत अच्छा जानकारी दिए हो आप ये गोट बात हम मतलब बहुत बढ़िया लगी से और फोन लगाए बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद इसने अपन मया पीड़ित बना के याद करत रही है फोन करत रही है।
2: जी जी वन्ने मातरम जय जोहार।
1: जय जोहार भैया।
3: हेलो
1: जय जोहार राम राम भैया।
3: राम राम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की गाड़ा गाड़ा बधाई।
1: आप मल्ला बधाई और बधाई दे के बाद अब अपन नाम ला तो बता देवा कहा

0: कहाँ ले बोला था और कौन बोला था?
1: सुखनंदन साहू बोला था दीदी, मोक्का भाटा पारा ले।
0: हाँ सुखनंदन भैया, का हाल चाल है?
1: वो सब बढ़िया दीदी, पानी के इंतजार है, स्कूल ड्रेस चालू हो गई है, कपड़ा सिलाई काम करता हूँ। हाँ पानी अच्छा ढंग से आ जैसे धान वाई बुआई करते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ, खेती किसानी भी करता और सिलाई घला करता?
1: हाँ मैं खेती किसानी भी करता हूँ, सिलाई काम भी करता हूँ।
0: बहुत बढ़िया है, अभी बताओ का गोट बात है?
1: और सब बढ़िया बढ़िया दीदी, घाम तो बहुत ज्यादा है।
0: हाँ हाँ,
1: मौसम बनावट नहीं है, मानसून आप नहीं है, किसान आदमी थोड़ा सोचे भर हो गए है, लेट लतीफ हुआ थे।
0: हाँ इधर ही मानसून आए में थोड़ा सा समय लगा थे। बहुत अच्छा लगी से, बहुत दिन बाद आपसे बात हुए है। ठीक है सुखनंदन भैया, इसने माया पीरित बनाए रखिया। जय श्री राम भैया, जय जोहार।
1: जय श्री राम, जय जोहार।
0: हेलो
2: हेलो,
0: कार्यक्रम तुहर गोठ हमारे स्वागत है आप मन के।
2: हाँ धन्यवाद।
0: कौन बोला था भैया, अपन सुग्घर नाम बता देवा और कहाँ ले बोला था?
2: मैं मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू बोला था।
0: का हाल चाल है श्रवण भैया?
2: हाल चाल बहुत बढ़िया है, अभी तो पानी नहीं गिरते, अभी हाल बेहाल कर रहा था वह।
0: हाँ,
2: पानी गिरती मानसून बढ़िया, खेती बाड़ी होती।
0: तो आप खेती बाड़ी करते हो, किसानी के काम?
2: हाँ, खेती बाड़ी करता ना मैं, पेशा से छक भी हूँ।
0: अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है। प्राथमिक शिक्षा की माध्यमिक शिक्षा?
2: माध्यमिक शिक्षा का।
0: तो का कराता हो शिक्षा के अलावा, लइका मन से कुछ हो ऐसे ज्ञान के बारे में कुछ?
2: नैतिक शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा है, अपन आसपास के पर्यावरण के बारे में सब चीज बताए जाते हैं कि अपन व्यवहार में परिवर्तन करो और बढ़िया से सीखो, अच्छाई चीज ला बुराई चीज ला त्यागो, यही हमन संदेश लेकर मन ला देते रही थे।
0: शिक्षक के ना कर्तव्य रही थे, हमला इसे लगते है जैसे हमन छोटे रहे जब स्कूल में पढ़त रहे ना, तो हमार जिन शिक्षक मन रही ने तेन हमन ला और जिन गतिविधि है तेन ला भी करात रही है।
2: हाँ आज भी वो इसने होते थे, जैसे खेल खेल खेल में पढ़ाई है। हाँ हवा अपन आसपास के परिवेश ला भी देख के बताए जाते कि भ्रमण करे जाते करवाए जाते और घर से लड़का मतलब सीख मिलते।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम है ये शिक्षा देना, ये बहुत अच्छा हाँ। काम है, तो आप मन शिक्षक हो तो हमार नमस्कार स्वीकार करो आप मन।
2: जी जी जी,
0: आप मन से गोट बात के बाद अब गीत के बारी आगे है, तो कार्यक्रम के नाम है तुहर गोट हमर गीत। तो आप मन से गोट के बाद हमन आप मन ला सुनावत हन चतुर कांति और गीता के गाय ए छत्तीसगढ़ी गीत ला।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राम राम, जय जोहार भैया।
2: राम राम, जय जोहार।

0: जय जोहार।
1: जय जोहार दीदी, राम राम।
0: कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत में आप फोन लगाए हो।
1: मैं मुकेश गोस्वामी धनगांव गोस्वामी बोलत हूँ दीदी।
0: अच्छा, कहाँ करते हो मुकेश भैया?
2: मैं नेत्रहीन हाँ, रेडियो सुनत रही था।
0: अच्छा अच्छा,
1: आपे मन के कार्यक्रम ला।
0: हाँ
1: वे दे पानी का गोरा है दीदी, खेती किसानी चालू हो गई हो।
0: तो और इसे बाकी दिन कहाँ करते हो आप? दिनचर्या का रही थे?
1: बस दीदी घर रही था, रेडियो सुनाई। आप मन कौन बोला था दीदी?
0: मैं भैया श्वेता पांडे बोला था। तो घर में कौन कौन है मुकेश भैया आप मन के?
1: हमारे घर मामा है और दो भाई है, बहन है, उनका शादी हो गई दीदी।
0: अच्छा, तो भाई मन छोटे धन बड़े?
1: मोर से छोटे छोटे दीदी, घर में मही जोड़े।
0: और का चीज में रुचि है आप मन के?
1: हमार रुचि दीदी आकाशवाणी ज्यादा है। टावर एक एक से मस्त मनोरंजन भी होते, ज्ञान भी मिलते।
0: हाँ।
1: दुनिया देश विदेश के खबर भी सुने मिलते, देश विदेश में का होते।
0: बिल्कुल सही बात है। तो कौन कौन सा कार्यक्रम आपला सबसे ज्यादा अच्छा लगते एला बतावा?
1: सब कार्यक्रम अच्छा लगते दीदी, खास करके हमारे जो छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम प्रसारित होते ना।
0: हाँ हाँ,
1: वो अच्छा लगते। महिला T20 वर्ल्ड कप प्रसारित होते ना।
0: हाँ।
1: वो भी बहुत अच्छा लगते दीदी, काबर की मैं तो मैच बहुत अच्छा सुनता।
0: बहुत बढ़िया है, इसने हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम ला सुनत रही है। और कोई भी आपला इसे लगते कि सुझाव देना है या कोई कार्यक्रम आपला अच्छा लगा थे जेखर बार चिट्ठी जाना रही तो कोनोले चिट्ठी भी भेजवा सकत हो आप।
1: हाँ दीदी
0: ठीक है, फोन लगाए बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगे।
1: धन्यवाद।
0: जय राम भैया।
1: जय राम दीदी।
0: हेलो।
3: हेलो।
0: जय जोहार, राम राम भैया।
3: हाँ राम राम दीदी, भगत राम पटेल बोला था सिंगारवाड़ी घुटकुले।
0: का हाल चाल है भैया?
3: बस दीदी अब मौसम की है, कब मौसम आती बरस जाती बादल तो हमरो मन जिन्हें हर्षित हो जाती किसानी के काम ला शुरू कर लेते कही के।
0: जतका श्रोता मन जतका भाई मन फोन करीन है सब्बे जन के यही बात है कि पानी के उमन इंतजार करे थे कब बादल आही कब पानी गिरही।
3: सही बात है दीदी, और जिन मौसम आते ओकर हिसाब से मन जिन होते आश्रय में रहते के काम हमार हो जाती ऐसे कही के। मन आश्रय में बंधे है दीदी, बस जैसे बादल आते सपन तैयारी करके ओकर बाद फिर अपन खेती किसानी काम में बढ़िया सुचारू रूप से आगे बढ़ावो। आप कार्यक्रम का सुनत सुनत दीदी।
0: हाँ हाँ भैया, हमारे यहाँ कार्यक्रम में जिन्हें किसानवाड़ी में और ग्राम सभा में जितका भी विशेषज्ञ मन रहे थे खेती किसानी से जुड़े हुए तेना जानकारी तो देते रहे थे।
3: हाँ दीदी, और ना आज योग दिवस है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ना।
0: हाँ।
3: तो आज बाबा रामदेव के जिन कारनामा है यह गांव शहर देश नहीं बल्कि पूरा विदेश तक के इतका बढ़िया जिन योग और प्राणायाम के जिन बात लागू हो गए कि आज हम मन जिन है ये योग प्राणायाम

0: बाहर के बड़ा सुंदर, स्वास्थ्य बड़ा अच्छा और जिन समय जिन है बड़ा अच्छा अनुभव होते वाय।
1: सही बात है, रोज अगर योग कर ही तो काया हा निरोग रही।
0: हाँ दीदी, जितना कम दवाई खाते हैं कहूँ ओकर थोड़ा भी हिस्सा अगर कहीं योग और प्राणायाम के लिए समय निकाल लेते हैं तो वो जिन है हमारे शरीर के लिए ज्यादा फायदा करेगी। जो दवा हमारे खाना कम हो जाए दीदी, तो ये जिन है रास्ता जिन है तो इतना रास्ता हम सब अपनाबो और आस पास का समझाबो और एक जिन उचित लाभ है कर लेबो सुनाड़ी तो हमका भरोसा तरह से दीदी। एक से बढ़ के एक कार्यक्रम जेकर से आज हम अपन शरीर अच्छा रख सकते हैं, जेमा डॉक्टर मन से मुलाकात और जिन कई तो कार्यक्रम में अच्छा अच्छा बताते रहते जेकर से हमका लाभ होते रहते दीदी।
1: बिल्कुल सही बात बोले भगतराम भैया।
0: लगी दीदी आज आपसे बात करके मोर आपला बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके माध्यम से सबो संगी साथी मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ। जय जोहार, राम राम।
1: जय जोहार भैया।
2: हेलो,
1: कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत माँ स्वागत है आप मन के।
2: आप मन के स्वागत है, वंदन है, वंदन है दीदी।
1: कौन जय जोहार भैया, कौन बोला था अपन सुगर नाम बता देवा।
2: छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर ले मोहन लाल दिवंगत माता बोला था दीदी।
1: अरे वाह मोहन लाल भैया, का हाल चाल है आप मन के।
2: ठीक ठाक है, आप मन के आशीर्वाद है। हमारे चैनल दुकान है कटोरा रायपुर में।
1: हाँ
2: सिलाई करते हैं हम।
1: अच्छा,
2: मोर बेटा भूपेश दिवंगत और तुषार दिवंगत हमारे फैशन डिजाइनर है। सब काम करता है ना कारीगर अलग है और रेडियो भी सुनाते सर। रेडियो तो हमारे सुबह से 6 बजे चालू रहते थे, रात के 11 बजे तक चलते रहते। जब तक काम चला थे तब तक रेडियो चला रहे थे। और एक चीज है की आजकल अब रेडियो वो अलग ना मोबाइल में जब आ गए ना तो ये सब कार्यक्रम हर प्रदेश के हर जगह के सब सुने मिल जाते भाई, साफ सुथरा एकदम आवाज। और हम ब्लूटूथ लगा के सुनथन।
1: बहुत बढ़िया करता भैया आप।
2: जी जी जी जी,
1: आप तो बहुत जुन्ना श्रोता हो हमार।
2: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जुन्ना बहुत बहुत जुन्ना श्रोता है। और ऐसे है कि देखो अपन जो आशीर्वाद मोरे आप बने हुए है, अब जैसे की अपन आकाशवाणी से जुड़े हैं ओकर बाद मतलब यहाँ प्रदेश ऑल डिजिटल ग्रुप ऑफ इंडिया के जाने माने महेंद्र मोदी जी और यहाँ से 20 अगस्त रेडियो स्वतंत्रता दिवस हमारे द्वारा चालू हुए थे छत्तीसगढ़ जोन की ओर, मतलब 2010 से हर साल कर सन और यही साल हुआ थे और ग्राम भरो हुई। लेकिन हमारे जो परंपरा हवे जो शुरुआत करे यहाँ से कम से कम 20 जगह के सम्मान मतलब मुलाकात हुई सब श्रोता मन के बाद से हम बेला जाबो।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम करते हो आप मन, बहुत अच्छा सोच विचार भी है आप मन के। बहुत बढ़िया लगे से मोहन भैया आपसे बहुत बात करके, मन के फोन आई से कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के।
2: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जय जोहार, राम राम भैया। संगवारी हो अब एक और गीत आप मनला सुनवावत हन एक कार्यक्रम के माध्यम ले जिला गाय हवे आशा राम झालू हा।

0: संगवारी हो, इस सुघर असन गीत के बाद अब बेरा हा कहत है कि अब जय जोहार राम राम बोला, अब विदा ले लेवा ये कार्यक्रम ले। अब अपन श्रोता संगवारी मन ले बोल देवा जी कि कार्यक्रम ले विदा ले के समय हो चले है, ता आगू अब जब कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग होई ता जरूर फोन करी हा आओ अपन सुघर असन गोट बात ला लेके आहू आओ जिला हम अपन कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत के माध्यम ले प्रसारित करबो आओ छत्तीसगढ़ के जिन लोक कलाकार मन है तेन मन के सुघर सुघर गीत भी सुनवाबो। यही बात के संग अब विदा देवा अपन रेडियो मितानिन श्वेता ला कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत ले। जय जोहार राम राम।
1: छत्तीसगढ़ी लोक संगीत का

इन कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति थी श्वेता पांडे की। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 10:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उस गीत के साथ जिसके लिए पत्र लिखा है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं बोड़सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। शांतिनगर भाटापारा से मिलाऊदास कुलदीप, संतोष दास, संदीप दास, अजीत दास, बिरझा, संजना, लक्की। रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, श्रेया जैन, सौरभ, शौर्य जैन और शुभभ जैन। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, नीरज रावत, शुभम और सौरभ रावत का पत्र है। आप हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। नैला बोड़सरा जांजगीर से पत्र आया है। हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी, अमन कुमार तिवारी का साथ हैं मीनाक्षी तिवारी, उमाबाई तिवारी, अंजुलता तिवारी, ठगिया देवी तिवारी, विष्णु प्रसाद, मोगरा देवी मिश्रा, प्यारे लाल मिश्रा। इसी गीत को सुनना चाहा है बीरगांव तखतपुर से दिलीप कोल, जयमुन कोल, नारायणी कोल और भुवनेश्वर कोल। और भाटापारा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। इसे हमने लिया है फिल्म गुरु से।

कार्यक्रम में अगले गीत के लिए पत्र भेजा है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने। बिलाईगढ़ से हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन। नवागढ़ कटई से हमारे साथी हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरीन रेखा, मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। इंद्रनगर रायगढ़ से हैं शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम रजा। भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा, बेदबाई वर्मा, सुमित्रा, योगिता और फरेश्वरी वर्मा। हथनीपारा भाटापारा से दुर्गा, दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश वर्मा, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा। लुथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज ने भी इसी गीत की फरमाइश भेजी है। देवरी भाटापारा से सुनने वाले साथी हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाब्या रजक, कुमारी टानिया रजक। पेंशनवाड़ा रायपुर से रोमनाथ यादव, वंदना यादव, सूर्यप्रकाश यादव, शीला और कनक गुनगुन यादव। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: श्रीमती शीतल राजेश, आप हैं चांदनी चौक गंडई पंडरिया से, पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र सेन, खुशी और रौनक सेन। बेमेतरा से हैं सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा सारथी, हेमलता सारथी, कमलकांत, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी। बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, एस एन प्रजापति, सुशील देवांगन, रज्जन साहू का पत्र है। बुड़गहन से हैं राम दुलारी प्रजापति, रामचरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति। जांजगीर मेहंदा से पत्र आया है रामनारायण कश्यप, कविता देवी कश्यप, कुसुमलता कश्यप, खुशबू कुमारी कश्यप का। आप हैं शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, अयाज अल्फेज खान, हजरिन निशा, सादिया खान। बिल्हा से हैं शेख नासिर, महजवीन बानो। बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल का पत्र है। आप हैं अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। साथ हैं मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज ठाकुर और सुजला ठाकुर। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब।

श्रोताओं, बारिश के बौछारों का तो इंतजार है, लेकिन पत्रों के बौछार हम तक पहुंच रहे हैं। और ये पत्र है ओरटी पारा भाटापारा से। लिखने वाले हैं अनीता साहू, वीणा साहू, नेहा साहू और मोनिशा साहू। शिवाजी चौक राजिम से हमारे श्रोता हैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार श्रीवास्तव, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा देबू और लवी श्रीवास्तव। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश।

अगले गीत के लिए पत्र भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं दतरंगी से, विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा यदु, लक्ष्मीना यदु, रीना यदु। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। नेहरू वार्ड भाटापारा से हैं प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू। मोहनपारा कलतरा से अभिनव साहू, अभिषेक और उमा देवी साहू। रसेड़ा कलतरा से हमारे श्रोता हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार साहू, संध्या, डीके साहू, वासु, डाली, पूर्वे साहू। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, वसंत ब्रिगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू। मारवाड़ी कुआं भाटापारा से सियाराम, अश्वनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा, रायपुर से नीलू मेघ। आप हैं सुभाषवाड़ भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार, अमित अमीन, गिरीश करण यादव, युवान ढावेस यादव, हदबंद नेवधा से सेवाकराम यादव, टूपेंद्र कुमार यादव, तुलेंद्र कुमार और देव कुमार यादव। गांव परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुसारणी। अंबागढ़ चौकी से है रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान खान। और बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, काफिर, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, पूजा छुटकी, शरद कुमार और उनका पूरा परिवार। तो आपके साथ हम भी सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से।
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: इन संदेशों के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद के इस अंक को देते हैं यही विराम और अब जानते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर एक बार फिर से।
7: नमस्कार, यातायात पर आधारित सूचनात्मक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस समय सर्वत्र मुहर्रम पर्व मनाया जा रहा है। कहीं कहीं तकरीर का भी आयोजन किया गया है, साथ ही अनेकों स्थानों में इस परिपेक्ष में सवारी भी निकाली जा रही है जो देर रात तक शहर में भ्रमण कर रही है। कहीं कहीं शेर नाच का भी कार्यक्रम होगा। इन आयोजनों में लोगों की बड़ी संख्या होती है, अतः जहां भी इस प्रकार के आयोजन हो रहे हों वहां सभी वाहन चालक पूरी सावधानी के साथ और धीमी गति में चले। इसके साथ ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन बना हुआ है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, लंबे अंतराल के बाद एक बार पुनः वैवाहिक लग्न प्रारंभ हो चुके हैं और इन शुभ लग्न में शादियां भी प्रारंभ हो चुकी हैं। जहां भी शादियां हो रही हैं, वहां लोग बहुत उत्साहित हैं, विशेषकर हमारे युवा साथी। विवाह का महत्वपूर्ण भाग बारात का होता है। बारात में जाने सभी उत्सुक होते हैं। बारात के लिए वाहन की आवश्यकता होती है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस कार्य के लिए आर्थिक बचत के आशय से माल वाहक वाहन जैसे ट्रक, पिकअप, मेट्रो, ट्रैक्टर, माल वाहक ऑटो जैसे वाहनों का उपयोग करते हैं, जबकि इन वाहनों में यात्रियों के बैठने की सुविधा नहीं होती है। इसमें यात्री परिवहन करना खतरनाक होता है, साथ ही विधि विरुद्ध भी है। ऐसे वाहनों में यात्री परिवहन करते एक नहीं अनेकों बार गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में लोग काल कलवित भी हो चुके हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है, इन माल वाहक वाहनों में यात्रा कभी न करें। इन वाहनों को यात्री वाहन के रूप में उपयोग भूल कर ना करें। ऐसा करते पकड़े जाने पर वाहन मालिक पर कार्रवाई के साथ साथ वाहन चालक

0: का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जाता है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर का पुनः प्रसारण। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 11 बजे हैं। आई श्रोताओं, अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की अगली कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और

संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताज़ा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी ठाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदियां बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।

0: लेकिन साथियों ऐसा कब तक चलता। जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।
0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था?
0: बात स्पष्ट है। उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और

0: से नहीं करनी है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 11:30 हुए हैं। अब से लेकर 11:55 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।

0: हम सुन रहे थे गीतकार अहमद फराज के बोलों से सजी हुई पंकज उदास के द्वारा गाई और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध की गई इस गजल को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।

0: शायर और गीतकार शकील आजमी इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम रंग तरंग में स्वागत है। आइए सुनते हैं एक और सुंदर सा नगमा कार्यक्रम रंग तरंग में, जिसे हमने चुना है सुलक्षणा पंडित गजल्स एल्बम से, जिसे गाया है सुलक्षणा पंडित ने। शाहबी अब्बास शाहदाबी ने इसे बोल दिए हैं और महेश चंदेल ने इसे संगीत

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह जगजीत सिंह की आवाज में इस नगमे को, जिसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:55 होने को हैं। कुशीपलों में रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आज मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। बस्तर संभाग में कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इलाकों में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए सामूहिक योग अभ्यास। और राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ से सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में प्रदेश के 1000 विशिष्टजन विशेष ट्रेन से गुजरात स्थित सोमनाथ धाम जाएंगे। यात्रा का शुभारंभ आज सुबह करीब 11 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस यात्रा में कलाकार, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, समाज सेवी और जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव जोड़ना है। प्रतिभागी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और परंपराओं का भी प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कभी नक्सलियों का गढ़ रही करेगुट्टा पहाड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से मशहूर ये 5000 फीट ऊंची पहाड़ी कभी कुख्यात माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ हुआ करती थी। पिछले वर्ष अप्रैल मई माह में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में नक्सलियों के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया गया था। कई दिनों तक चले अभियान में यहां से भारी मात्रा में हथियार और 450 से ज्यादा आईईडी बरामद किए गए थे। इस दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्र में स्थित सुरक्षा शिविर में योग सत्र आयोजित किया गया। प्रदेश की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची का अवलोकन और वाचन किया जाएगा। साथ ही पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी और ग्रामीणों से प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभाओं में विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के संबंध में भी ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने आईएसआई से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पंजाब निवासी सेवक सिंह अकलतरा में रहकर ठेकेदारी कार्य के आड़ में मोबाइल के जरिए गोपनीय जानकारी भेज रहा था। जांच में उसके संपर्क पाकिस्तान, सऊदी अरब और मैक्सिको से जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर साइबर सेल को जांच के लिए भेजा है। मामले की आगे की जांच रायपुर एटीएस को सौंपी जाएगी। राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल रमन डे का करेंगे। छत्तीसगढ़ स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता 27 जून तक चलेगी। इसमें देश के 21 राज्यों के 349 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं प्रदेश के 49 खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के ओरछा में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए 3 दिवसीय वृहत शिविर आयोजित किया गया। विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के तहत हुए इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का आज मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। बस्तर संभाग में कभी नक्सलियों का गढ़ रहे इलाकों में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए सामूहिक योग अभ्यास। और राजधानी रायपुर में आज से ईस्टर्न स्लैम 2026 स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी हम रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। दोपहर के 12 बजे हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार

0: साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिस्टेक से एक साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हम

ने यादें सजाई हैं, गीतकार शैलेंद्र की कलम से निकले हुए बोलों के साथ, यानी उनके द्वारा लिखे गए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह पहला गीत, जिसे लिया है फिल्म सीमा से। मन्ना डे की आवाज है, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में शैलेंद्र की कलम से निकले सुंदर गीतों का संयोजन आज हमने किया है, तो आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि फिल्म आवाज है मुकेश की, और इसे लिया गया है फिल्म आवारा से। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला नगमा, जिसे लिखा है गीतकार शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने, और फिल्म का नाम है श्री 420।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे अनाड़ी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलते सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल से। यह गीत है चोरी चोरी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं अगला नगमा, मधुमती फिल्म से मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म शरारत से, मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ।

0: हम सुन रहे थे गाइड फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज यादों की महफिल हमने सजाई है गीतकार शैलेंद्र की गीतों के साथ में। आइए सुनते हैं परख फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं और संगीतकार हैं सलिल चौधरी।
4: ओ, सजे।

हम सुन रहे थे बरसात फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। आइए सुनते हैं

हम सुन रहे थे ये गीत मेरा नाम जोकर फिल्म से मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोलों के साथ शंकर जी किशन का है संगीत। आप सुन रहे यादों की महफिल और यादों की महफिल का यह अंतिम गीत हमने आज याद किया गीतकार शैलेंद्र को आज यादों की महफिल के साथ। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम यादों की महफिल से मुझे नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का सुरीला सफर में। सुरीला सफर एक कार्यक्रम जहां पर हम भेजते हैं आपके पास एक इबारत और उस इबारत से पूछते हैं बहुत सारे प्रश्न। हालांकि हमारे श्रोता इतने होशियार हैं कि प्रश्नों के उत्तर पूछे बिना ही कई सारे उत्तर खुद ही दे देते हैं, और उस समझदारी के लिए ये जो इबारत है वह हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इबारत कुछ ऐसी है कि कुछ शायरियां जो या शेर जो फिल्मों में उपयोग किए गए हैं या फिल्मों में बोले गए हैं, उन शेरों को आज हमने संकलित किया है और आप सबके बीच में लेकर आए हैं। बस आपको पहचानना है कि ये शेर किस फिल्म से है। हो सकता है कोई शेर 1, 2, 3, 4 कई फिल्मों में उपयोग किया गया हो, तो ये भी आंकते हैं कि आपकी पहचानी हुई फिल्म और हमारी पहचानी हुई फिल्म क्या एक ही है, ये प्रश्न भी आज बनता है। तो चलिए चलते हैं उन शेरों की तरफ, और हम ऐसा करेंगे कि आपके बीच में एक एक शेर अदायगी करते जाएंगे और उस शेर के बारे में बात करते जाएंगे। तो इबारत की इबारत पढ़ लेंगे और इसके साथ ही हम आपके बीच में वो शेर भी रख देंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इबारत के साथ, और इबारत का पहला शेर है कि ना जाने किस लिए उम्मीदें वार रखते हैं, न जाने किस लिए उम्मीदें वार रखते हैं, जफा करते हैं वो लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं। और इस इबारत की, इस शेर की तरफ बढ़ूं उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं। हमारे ये श्रोता लिखते हैं कि भावनाओं और विचारों को सुंदर, लयबद्ध और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने का माध्यम है शेर, और उर्दू और हिंदी साहित्य की एक बेहद लोकप्रिय विधा है। इसमें प्रेम, विरह, खुशी, दर्द और समाज की सच्चाई जैसे तमाम जज्बातों को बयां किया जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता कहते हैं आज की इबारत में चुनिंदा शेरों का निचोड़ यह है कि जिंदगी मोहब्बत, उम्मीद और तन्हाई का एक हसीन सफर है, जहां दिल हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद खुद को बहलाने के लिए हसीन ख्याल बुनता रहता है। अधूरी ख्वाहिशों और मौत के दरिया से भी परवाह यह शायराना रूह अपनी ही मोहब्बत से नफरत करने के बावजूद ईश्वर के फानूस तले हर मुश्किल को खूबसूरत मोड़ देकर जिंदगी के चिराग को रोशन रखती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के शेर और संवाद प्रेम, तन्हाई, उम्मीद, वफा और जीवन दर्शन के रंगों से सजे हुए हैं। कहीं मोहब्बत की कसक है, कहीं बिछड़ने का दर्द, तो कहीं जीवन को सहजता से स्वीकार करने का संदेश। कुछ गानों की लाइनें भी हैं जिनके बारे में आपने लिखा है। तो चलिए हम चलते हैं पहले गीत की तरफ और पहले प्रश्न की तरफ भी। आप ये बता दीजिएगा कि इस गीत को गाया किसने है, यानी गायक कलाकार का नाम बता दीजिए, और इस शेर के साथ एक प्रश्न है जो पूरे समय आपके साथ में चलेगा। ये प्रश्न ये है कि ये बताइए कि कौन सी शायरी या कौन सा शेर या कौन सी कविता ऐसी है जो आपके दिल में आज भी है, जिसे आपने कहीं किसी रोज किसी फिल्म में सुना था। अपनी पसंदीदा शायरी, अपना पसंदीदा डायलॉग तो नहीं कहेंगे, उसे शेर कहेंगे या कविता कहेंगे, जिसे पद्यात्मक रूप से लिखा गया है, वो कौन सा है जो आपके दिल में आज भी सजा हुआ है। साझा कीजिए इस बात को और बताइए ये गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे गीत फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ में। हमने आपसे बात करी और हमने पूछा कि ये किस फिल्म का गीत है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सही उत्तर दिया। हमारे एक श्रोता ने उत्तर भी बड़े अच्छे तरीके से दिया कि फिल्म का टाइटल गीत है। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, संगीतकार ओपी नैयर जी। बिल्कुल सही बात है, इसमें आशा भोसले की जी की आवाज नहीं थी, तो हमने इस गीत को सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। चलिए अब हम चलते हैं आगे की जो बातें आपके साथ में चल रही थी उन बातों की तरफ। और हमारे श्रोता लिखते बहुत अच्छा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि शायरिया तो मुझे याद नहीं, पर मैंने फिल्म देखी थी मीना कुमारी और दिलीप कुमार की, यहूदी। उसमें काफी बड़े चुनिंदा और अच्छे शायर थे, शेर थे, तो जो मुझे याद तो कम है पर बहुत अच्छे शेर थे। फिल्म देखने के बाद वो शेर मैंने अपनी डायरी में भी नोट किए हुए हैं। ये कितनी अच्छी आदत है ना कि जो कुछ अच्छा लगे उसे अपने पास लिख लें, तो आज नहीं कभी ना कभी तो काम आता ही है। बहुत अच्छा किया आपने उन्हें अपने पास लिखकर। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि कोई शायर या कोई शेर या कोई शायरी अगर आपको पसंद है तो वो आप हमारे साथ साझा करें, परंतु अगर वह फिल्मों में उपयोग की गई है तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, हालांकि उनका प्रसिद्ध गजल का एक हिस्सा, दुष्यंत कुमार की गजल का यह हिस्सा जो है वह उन्हें बड़ा पसंद है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कितना बढ़िया कहा आपने। और ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, अन्य कई श्रोताओं ने भी बहुत

बड़ी अलिका हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारी आवाज आप तक, आपकी आवाज हमारी आवाज मिल रही है, सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मिर्जा गालिब का शेर याद है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे शेर और बहुत अच्छे दिल के जज्बात ये लोग लिख देते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही लिख दिया गया है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, कई सारे श्रोताओं ने कई सारे अन्य शेरों के बारे में भी लिखा है, शायरियों के बारे में भी लिखा है, परंतु अगली जो पंक्ति है इबारत से, वह ये है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती। अब फिल्म तो आप पहचान ही चुके हैं क्योंकि ये तो हम सबको याद है। इस पर हमारे श्रोताओं ने लिखा है, तन्हाई पर एक छोटी सी बात, तन्हाई में बिताए हुए कुछ पल कभी कभी पूरी महफिल से ज्यादा याद रह जाते हैं क्योंकि वहां हम दुनिया से नहीं अपने दिल से बात कर रहे होते हैं। बहुत गंभीर बात लिखी है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, तन्हाई का अपना एक अलग संगीत होता है, जब आसपास कोई नहीं होता तब यादें धीरे से आकर दिल में बैठ जाती हैं, कुछ मुस्कुराती हैं, कुछ आंखें नम कर जाती हैं, कुछ हमें खुद से मिलवा जाती हैं। तो तन्हाई वो आईना है जिसमें हम दुनिया को नहीं खुद को देखते हैं, भीड़ में जो बातें सुनाई नहीं देती वे अक्सर तन्हाई की खामोशी में साफ सुनाई दी जाती हैं। तन्हाई बुरी नहीं होती, बस उससे यादों का साथ हो तो वह खामोशी भी बहुत प्यारी लगने लगती है। क्या उम्दा बात लिखते हैं, क्या बढ़िया बात आप लिखते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जाने किस लिए उम्मीदवार पर बैठा हूं, एक ऐसी राह पे जो तेरी रह गुजर भी नहीं। वाह, बढ़िया शेर आपने पेश किया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि कुछ और शेर हैं जो अर्ज कर रहे हैं, उनमें से मैं एक दो शेर पढ़ देती हूँ। उन्होंने लिखा कि बेवक्त बेवजह बेसबब सी बेरुखी तेरी, फिर भी बेइंतहा तुझे चाहने की बेबसी मेरी। वाह बहुत बढ़िया। हमारे उन्हीं श्रोता ने एक और लिखा है कि कुछ एहसास मेरे हमारे जीवन में बारिश की तरह आता है, हथेलियां तो भीग जाती हैं मगर हाथ खाली रह जाते हैं। बढ़िया शेर लिख रहे हैं। हमारे एक और शेर, हमारे लिए एक बड़ा प्यारा सा शेर आया है कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते तमन्ना का खून हो गया। आते आते आपके शेरों के जवाब में एक और शेर उन्होंने हमें पहुंचाया है और ऐसे ही कई सारे शेर हमारे बीच में आए हैं, तो ये जो बात है वो आप भेजते रहिए। हमारे एक और श्रेता ने लिखा है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। थैंक यू। तेरे प्यार की तमन्ना गुमाए जिंदगी के सया अबदी, तेज आंधियां ये चिराग बुझ न जाए। आप जब रोमन में लिखते हैं तो पढ़ने में थोड़ी समस्या होती है, प्रयास करें कि देवनागरी में लिखें तो अच्छा होगा, परंतु फिर भी बढ़िया है आप जो लिख रहे हैं, आप जो हमसे जुड़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे उस प्यारे से गीत की तरफ जिसे हमने आपके लिए सजाया है इस फिल्म से। अच्छा, आप बस इतना बता दीजिएगा कि इस गीत के संगीतकार कौन है और ये जो शेर है, ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का क्या अर्थ आपको समझ आता है?

सिलसिला फिल्म का यकीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में जावेद अख्तर के बोल, और हमारे श्रोता ने बिल्कुल सही पहचाना कि इसके संगीतकार हैं शिवहरि यानी शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। और इस प्यारे से गीत को हम सुन रहे थे, और इसके बाद जब अगली शायरी करने की बात आती है तो मैं आपको पहले ही एक प्रश्न दे दे रही हूँ। वो प्रश्न ये है कि कभी किसी अपने को, यानी हो सकता है वो आपके प्रेयस हो, प्रेयसी हो, पति हो या पत्नी हो, कोई इतना इतने दिल के करीब जो होता है उसको कभी कोई शायरी तो सुनाई होगी। कौन सी शायरी सुनाई है वह जरूर साझा कीजिएगा। हो सकता है वह आपके जीवन की पहली शायरी हो या फिर आपकी खुद की लिखी कोई शायरी हो, वो शायरी जरूर हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि आपके दिल की बात कहना भी बनता है ना। तो अपनी पत्नी, पति, प्रेयसी, प्रेयस, किसी के लिए कोई शायरी या कोई कविता की कुछ चंद चार पंक्तियां कही हो तो हमारे साथ साझा कीजिएगा। और अब हम अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे, पर उसके पहले हमारे श्रोताओं ने कुछ लिख भेजा है, वो आपके साथ साझा करती हूँ कि मुझे गुलजार की वो शायरी पसंद है, समझने को कठिन है लेकिन अच्छी लगती है, कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए, जाड़ों की नरम धूम और आंगन में लेट आंखों पे खींच कर तेरे

हिमाचल के साए औंधे पड़े रहे, कभी करवट लिए हुए। बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं ये। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। बहुत बढ़िया। हमारे एक और श्रोता ने शायरी लिखी, तन्हाई में खामोशी ही जवाब बन जाती है, वो ना रहकर भी हम सफर बन जाती है। मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी के कई सारे शेर इन्हें पसंद हैं। उनमें से इन्होंने लिखा है, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। और उन्होंने कभी कभी फिल्म के इस शेर को भी लिखा कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। अच्छा, इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर ख्वाहिश को जुनून ना बनाए, जिंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। जी बिल्कुल सही, आपने बहुत बढ़िया शेरों को हमारे साथ साझा किया, और भी लोगों ने किया है जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है नीट की परीक्षा हो रही है, तो नीट की परीक्षा को सरल करने के लिए हमने आपको ये प्रश्न दिया है कि पहला शेर, पहली शायरी अपने प्रेयस प्रेयसी पति पत्नी महबूब के लिए कब पढ़ी थी, तो और कौन सी पढ़ी थी वो जरूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अगले नगमे की तरफ, जिसे हमने आपके साथ जो शायरी साझा की है इबारत में, वो ये है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और इसके आपने पहचान लिया कि फिल्म कभी कभी से, बहुत बढ़िया बात है। बस बताइएगा कि इसके संगीतकार कौन है, संगीतकार का नाम बताइए और सुनिए ये गीत।

0: एक बहुत सुंदर सा गीत हम भी सुन रहे थे कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल। और हमने आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, बिल्कुल सही बताया आपने, खयाम। और अब हम चल रहे हैं हमारे कुछ और शायरों की तरफ, जो हमारे बड़े प्यारे से श्रोता है और उन्होंने बहुत सारी शायरियां हम तक पहुंचाई हैं। एक एक लिखते हैं कि कुछ इस तरह से जिंदगी को हमने आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। वाह, हमारे श्रोता ने याद किया है वो खूबसूरत से नगमे को कि फिर छिड़ी बात बात फूलों की बात है या बारात फूलों की। जी बिल्कुल, तलत अजीज की गजल बड़ी प्यारी सी है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, तन्हाई हमारे दिल में झांक कर बीते हुए पल को याद करने का जरिया है, यहाँ हम शांति से अपने आप से बात कर लेते हैं। बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बशीर बद्र का ये शेर वो लिख रहे हैं। इसके साथ, वो लेटे हुए हैं कल से बिस्तर पर जख्म लिए हुए, गिरा जो हाथ से फूल सीधा पांव पर जा लगा। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में, यानी ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने भी बताई है कि सूरत गुजरात में बारिश शुरू हो गई है और वह कह रहे हैं कि गार्डन में टेबल पर रेडियो बज रहा है सुरीला सफर, हाथ में गरम चाय का कप और सामने बारिश है, स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बिल्कुल सही बात कही है आपने और मैं आपको सुनवा रही हूँ ये संदेश, लेकिन एक बात आपसे कहनी है। रोमांटिक तो शायरियां बहुत सारी हो गई, कोई ऐसी बात है जो आपके दिल को छू जाती हो, थोड़ा वीर रस की जो पंक्तियां हो, शेर हो, शायरी हो, कविता हो, पंक्तियां हो, कुछ भी जिसमें वीरता जगाती हो, ऐसा कोई एक जरूर बताइएगा। तब तक सुनिए संदेश।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे

0: अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर, और इस सुरीला सफर में हम आपके साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं शेर और शायरी के बारे में, और आप बड़े अच्छा अच्छा लिखते जा रहे हैं हमारे बीच में। तो हमारे श्रोता ने बताया है कि उन्हें शेर और शायरी की बात हो रही है, तो जिन गाने से शुरू में शेर हो ऐसे गीत होने चाहिए थे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे श्रोता ने एक जहाँआरा का तलत जी तलत का गाया हुआ ये गीत उन्होंने लिखा है कि तेरी आँख के आंसू पी जाऊँ ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, गाने के पहले भी शेर है और आगे उनको पंक्ति याद नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे शेर हमारे बीच में आते जा रहे हैं। हमारे साथ में एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारी सगाई के बाद पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मिलना हुआ अजमेर में, तो उन्होंने कहा कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, और आशा करती हूँ ये प्यार आपका सदा बना रहे। और इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि बस हमको ऐसी महफिल मिल जाए तो हम लंच का भी दरकिनार कर सकते हैं। जी, हमारी श्रोता लिख रही है कि अगर देवनागरी में लिखेंगी तो हम तक पहुंच नहीं पाएगा। रोमन में लिख रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वह लिखती है कि मेरे पति को शायरी समझ में नहीं आती तो उन्हें इंग्लिश में बोलती हूँ, यू आर माई फेवरेट वेस्ट ऑफ टाइम। और वो बहुत खुश होते हैं। क्या बात है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, सबसे अच्छा समय गुजारते हैं ना हम इन लोगों के साथ में। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि पत्नी को प्रेम निवेदन में कही थी कि तनकी सुराही में यौवन का हाल, यौवन की हाला, चितवन में मदहोशी अंगों में ज्वाला, छल छल छल के यूं का प्याला, गोरी तू लागे है पूरी मधुशाला। धन्यवाद, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ आपने कही हैं। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखे हैं कि कई सारे शायर जो हैं वो लिखते हैं बड़े प्यार से। हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनकी फेवरेट है कि सपने चरे फूल से, मीत चुभे शूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रह गए, कारमा गुजर गया और हम गुबार, क्या बात है। जॉन एलिया की पंक्तियाँ ये लिखते हैं कि क्या तकल्लुफ करें या कहने में कि जो भी खुश हैं हम उनसे जलते हैं, यूँ जो तकता है आसमान को तू कोई रहता है आसमान में क्या, ऐसी बात है। हमारे श्रोता ने बहुत बढ़िया शायरी बनाई है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐ विविध भारती तुझे बनाया गया है मेरे लिए, हम सभी के लिए। जी बिल्कुल, ये विविध भारती हम सभी के लिए ही बनाई गई है। शेर व शायरी दिल बहलाने का जरिया है साहब, लफ्ज कागज पर उतारने से महबूब नहीं लौटा करते। बड़ी प्यारी सी बात कह दी आपने। और चलिए अब हम जल्दी से हमारे ना अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं, और जो हम बात कर रहे थे आपसे कि हमारी जो अगली शायरी है, अभी हम बड़ा प्यारा सा ये गीत सुनकर निकले हैं कभी कभी फिल्म का, और अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे एक और श्रोता ने श्रोता की बात को हम थोड़ी देर बाद करते हैं। हम ये शायरी आपको बता देते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा है। ये शायरी हमारे बीच में है, फिल्म से ली गई है, और आपसे हमने पूछा कि हो सकता है कि कोई बड़ी देशभक्ति की पंक्तियाँ या बड़ी शौर्यवीरता की पंक्तियाँ, कोई पंक्ति जो शेर में हो, कविता में हो या फिर शायरी में हो, तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन तब तक हम आपको ये बता दें, हमारे श्रोता ने उसका एक उत्तर भेजा है कि मैं तूफानों में चलने का आदि हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियाँ। बिल्कुल सही बात है। चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, और इस गीत की गायिका को पहचानिए, बहुत आसान है इस आवाज़ को पहचानना क्योंकि आप बराबर इन्हें सुनते रहते हैं। गायिका की आवाज़ को पहचानिए और पहुँचते हैं आपके अगली बात की तरफ कि आपको कुछ देशभक्ति से भरा या फिर कोई वीर रस से भरा हो, कोई शेर शायरी या कविता, कुछ पंक्तियां हम तक साझा करें।

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से यह गीत, सहरयार के बोल खयाम का संगीत। और आप सबसे पूछा था कि आवाज किसकी है, तो आप सबने सही पहचाना, सुमधुर आवाज आशा भोसले की है, बिल्कुल सही। और अब हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, उनको हम साझा करते हैं। कि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, उल्लुओं की कमी नहीं शाख पर, ये शेर थोड़ा सा कुछ अलग है कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कुछ शेर इस तरह का है जो आप कहना चाह रहे हैं। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि शबे फिराक

है दिल में और भी कुछ दर्द, मैं कैसे कह दूं तेरी याद रात भर आई। क्या बात है। हमारे कोई श्रोता ने लिखा है कि उनके जीवन साथी का जन्मदिन 71वां जन्मदिन था और सीनियर सिटीजन उसी दिन पिकनिक पर गए थे दोस्तों के अनुरोध पर। तुम्हें और क्या दूं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाइए। हसरत जयपुरी की पंक्तियां बोल दी थी, बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि वह भी अपनी पत्नी से बहुत उनकी समझदारी से प्रेरित हैं और वह उनका सदा साथ देती हैं और उनके जीवन के मंगलमय की प्रार्थना वो कर रहे हैं और हम भी

तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल, बहुत प्रोत्साहन देने वाला शेर है और आपने भी यही बात लिखी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनके शहर में आग बरस रही है, इस पर लिखते हैं, समय दिल शायरा न होने के बजाय दिल गर्मी से जल रहा है। अरे बारिश हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, बस समय की बात है, अपने समय से सब कुछ आ जाता है। और हमारे श्रोता ने लिखा, इश्क का नमक की मोहब्बत की चाशनी में तेरी हम डूब रहे हैं, मेरे प्रेम कहानी का रसाई मोहब्बत। अच्छा, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, उनकी मोहब्बत भी कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। जी बहुत बढ़िया होता है ये प्रेम भी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर, तो तबीयत से उछालो यारे। शेर हमारे एक, ये पंक्ति हमारे एक बड़े प्यारे से श्रोता ने लिखी है, दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रण बीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। देखिए हमारे देश में हाथी का नाम राम सिंह है, चेतक का नाम, घोड़े का नाम चेतक, और इनमें भी वही देशभक्ति है जो एक देशभक्त में, एक देशभक्त राजा में है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी वो तो, जी वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये पंक्तियां उन्हें पसंद है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की, क्षमा दया त्याग तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कब कहाँ कब हारा, सच पूछो तो शेर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। बिल्कुल सही, बलिदान और पराक्रम जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। श्रोता लिख रही हैं कि कैसे लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों को, गहरी बातों को लिख देते हैं। वो शेरो शायरी की बात के बारे में कह रही हैं कि मैं तो हैरान रह जाती हूँ, यही काम कवियत्रियों ने भी करा है कि कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे, रहीम के दोहे, कितनी सुंदर बातें जीवन का ज्ञान दे जाते हैं, मैं तो मुग्ध हो जाती हूँ उनको पढ़कर, क्या कला है इन सब में। बिल्कुल सही है। और अब हम जल्दी से अगले गीत की तरफ बढ़ें, और अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हुए अगला जो शेर है वो हम आपके साथ में साझा कर लेते हैं कि जो अगला गीत हम आपको पहुंचाने वाले हैं, देने वाले हैं, वो अगला गीत बड़ा खूबसूरत सा है, बड़ा प्यारा सा है। इस गीत के लिए आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ जो हैं ये गाई किसने है, यानी गायक कलाकारों के नाम बता दीजिएगा। और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, ये हमने अपनी इबारत में साझा किया है। आप अपनी शायरियां देशभक्ति से भरी अगर कुछ है तो भेजते जाइएगा और सुनिए ये।

मिर्ज़ा गालिब की इन पंक्तियों को मिर्ज़ा गालिब फिल्म से ही हम सुन रहे थे। गुलाम मोहम्मद ने इन्हें संगीत दिया और गाया है, जिनके बारे में हमने आपसे पूछा था कि गायक कलाकार कौन है, तो सुरैया और तलत महमूद, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ, और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कोई भी शेर शायरी आपको पसंद आती है तो हम तक पहुंचाते जाइएगा। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे इसकी यह लाइन पसंद है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, और जान पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता वफा क्या है। बहुत बढ़िया बात है, ऐसी बहुत सुंदर पंक्तियाँ लोग लिख देते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मिट्टी की खुशबू से महके मेरा हर अरमान, भारत की शान में बसता है मेरा सम्मान, जब तक धड़कन चलती है सीने में यारो, तिरंगे पर नाज रहेगा यही मेरी पहचान। बिल्कुल सही बात है, वतन की धूल भी आंखों में सुरमा लगाती है, ये धरती की माँ की गोद की गर्माहट रखती है, हमारा सिर हमेशा झुका रहे इसके सम्मान में, यही दुआएं सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में रहती हैं। बढ़िया बात लिखते हैं आप। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने जो बढ़िया सी लिखी है कि असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां ये लिख रहे हैं कि आदमी को खुदा मत कहो, आदम खुदा आदमी खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदमी जुदा नहीं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता बहुत अच्छे से बात कहते हैं और लिखते हैं कि उन्हें एक कविता बचपन से पसंद है, और कविता का वो कहते हैं सिंहासन हिल उठे वाली जो कविता उन्हें पसंद है उसके बारे में जिक्र किया है। अच्छा, एक बड़ी मजेदार सी कविता आई है, शीशी भरी गुलाब की, पत्थर भी तोड़ दूं तेरी गली ना छोड़ूं, दुनिया में छोड़ दूं। और ये शायरी हम सब बचपन में बहुत पढ़ा करते थे, शायद याद हो आपको। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती हैं निशानी बनकर, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं, कभी होंठ पर मुस्कान बनकर तो कभी आंखों में पानी बनकर। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता ने एक कविता खुद ने शायद ये स्वयं ने लिखी है या उन्होंने भेजी है, वो लिखती है, मानवता भट गई ये युद्ध के ऊपर ये कविता लिखती हैं, और अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ देती हूँ, बस करो अब ये युद्ध, बन जाओ सारे बुद्ध, सारी सरहदों में शांति से रहो, ना किसी की आंखों में आंसू भरो। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। एक बार कहते हैं, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार किसी को उन्होंने शायरी कही थी, वो किसी कौन है हम आप समझ सकते हैं, पर वो पलटकर उर्दू शब्दों का अर्थ ही पूछने लग गई। आप हिंदी में शायरी कह देते, हिंदी में भी कई सारी शायरियां बनाई गई हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, वतन की आबरू पर आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तहां होगा, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, कि जब बिस्मिल जमी अपनी और अपना आसमां होगा। जी बिल्कुल सही, ऐसे बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी जा रही हैं, और बहुत खूबसूरत लिखते हैं, जो गए हैं वही तो लौटते हैं, जो गए ही नहीं वो क्या खाक लौटेंगे। क्या बड़ी बड़ी बातें आज पढ़ने में आ रही हैं, हमारे शायर निकल रहे हैं सारे श्रोताओं के हृदय से। तो मैं आप सबके शायरों को प्रणाम करती हूँ, और अगला जो नगमा है, अगली जो शायरी है वो आपको भेंट करती हूँ, और वो भेंट है कि हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब ये शोर फिल्म का शेर है, हो सकता है किसी और फिल्म में भी इसे उपयोग किया गया हो, तो जरूर सुनिए और बताइए कि ये गीत आपको कैसा लगता है, और संतोष आनंद की अगर कोई पंक्ति आपको पसंद आती है इसके अलावा तो जरूर

एक प्यार का नगमा है शोर फिल्म से। हम सुन रहे थे लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ में संतोष आनंद के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि बहुत सारी बातें उनसे पूछी, और उसमें एक पूछा था कि जीवन दर्शन को छू लेने वाला ये बहुत प्यारा गीत है, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी की छोड़ आए कहीं अपनी जवानी, कहीं एक संतोष होता था शायर, गजल बन गई है दर्द की राजधानी। ये वो लिखते हैं संतोष आनंद की, संतोष आनंद की संतोष फिल्म का ये गीत उन्हें पसंद है। और हमारे कई सारे श्रोताओं ने इस गीत को बहुत पसंद किया है, और हमारे श्रोताओं ने शायरियों को भी बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है, यानी समझाया है उनको, बहुत खूबसूरती के साथ बताया है, उसके लिए भी धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं, तुम साथ ना दो मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। हाँ, इस बात को, इस इन शब्दों को रिकॉर्ड नहीं किया गया, परंतु ये उसके वर्जन में थे, उस गाने में थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद के साइड वर्जन वाला इस गीत का उन्हें पसंद है, कि जो दिल को तसल्ली दे वह साज उठा लो, दम घुटने से पहले आवाज उठा लो। जी, बहुत बढ़िया बात, और बहुत प्यारा सुरीला सफर आप सबके साथ रहा, उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। और आप सबका जीवन मंगलमय हो, सुख हो, शांति हो, कल्याण हो, बस यही प्रार्थना करते हैं। आप सबके लिए नमस्कार।

0: आजकल जंक फूड का चलन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तमाम तरह के ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनके जरिए आप खाना ऑर्डर करें और फटाफट आपके पास भोजन पहुंच जाता है। इनमें से ज्यादातर भोजन जंक फूड होता है, ज्यादा तेल मसालों वाला नुकसानदेह खाना। इसकी वजह से हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग घर के खाने से मुंह चुराने लगे हैं, बल्कि ये भी हो रहा है कि घर पर खाना खाने की बजाय बाजार से ऑर्डर कर देने का चलन बढ़ता चला जा रहा है। विज्ञापन लोगों को इस ओर आकर्षित कर रहे हैं, जबकि घर का खाना सही सेहत का खजाना है।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी।

पुराने जमाने में मौसम के हिसाब से फलों और सब्जियों का सेवन किया जाता था। सर्दियों के मौसम में कुछ खास पकवान बनते थे, गर्मियों के मौसम की डिश अलग हुआ करती थी और बारिश के मौसम में बहुत संयम के साथ अलग तरह की सब्जियां खाई जाती थीं। लेकिन समय बदलने के साथ अब ये हो रहा है कि सारी सब्जियां साल भर उपलब्ध होती हैं, यानी मौसम बेमौसम आप जो मर्जी वो खा सकते हैं। युवा और किशोर पीढ़ी के साथ तो संकट ये है कि उन्हें पिज्जा बर्गर या दूसरे तरह के जंक फूड के सिवा घर का सादा खाना पसंद नहीं आता। जब आपको बहुत चटकदार और मसालेदार खाने की आदत लग जाए तो उसके आगे घर का खाना फीका लगने लगता है, जबकि घर के खाने में सेहत है, प्रेम है, लगाव है, अपनापन है।

0: जब बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना लेती हैं, जब पेट बिगड़ने लगता है, जब मोटापा बढ़ने लगता है, जब एसिडिटी या सिर दर्द या दूसरी तरह की तकलीफें आपको तंग करने लगती हैं, तब डॉक्टर कहते हैं कि सादा खाना अपनाइए, सही नींद लीजिए, और तब जाकर समझ में आता है कि जंक फूड ने आपके शरीर की हालत खस्ता कर दी है। जरूरत इस बात की है कि हम समय रहते चेत जाएं और हम इन एप्लीकेशंस या बाजार के चटकदार खाने के लालच से खुद को बाहर निकालें, संयमित और संतुलित भोजन लें और अपनी सेहत की हिफाजत करें, वरना ये हाल होगा।
1: धड़कन की दवा, तड़पन की दवा और पेट में बंद पवन की दवा,
2: झटके की दवा, भटके की दवा, रास्ते के बीच अटके की दवा,
1: चक्कर की दवा, शक्कर की दवा, दिल से दिल की टक्कर की दवा,
2: मेरा पेट बगड़ा।
3: अरे मेरा गुरु रखड़ा।

0: आयुर्वेद के पंडा,
1: आए आयुर्वेद के पंडा लेके दवा का डंडा। हे बोलो बोलो क्या है रोग तुम्हारा, कर दे उसको ठंडा।
0: अरे ब्रह्मा जी ने खुद बांधा है हाथ हमारे गंदा, और आसमान पर उड़े हमारे मतलब ध्वज का।

0: ये वो बात नहीं है जिसकी जगत उड़ावे हाँसी, और बचपन ही में निकल पड़े थे देकर सबको फांसी। ओ माफ करो, बचपन ही में निकल पड़े थे होके ये सन्यासी।
1: अरे ऊँट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस बयासी। अरे ऊँट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस बयासी। अरे क्या है तुम्हारा है जा बैठा, क्या है तुम्हारी खांसी। अरे हम चाहे तो पल में दे दे जम राजा को फांसी। हो बोलो

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया। एक

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल है। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मी

0: और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय 2,000 रुपये बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्षद शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि CISF के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक

0: वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर

0: इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत जबक फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत जिसे हमने चुना है ससुराल फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के हैं बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: हम सुन रहे थे स्त्री फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में, भरत व्यास के बोलो सी रामचंद्र के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में ससुराल फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, शैलेंद्र के बोलो शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, यह गीत जो गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।

हम सुन रहे थे गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा, संजोग फिल्म से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

0: ಹೇಳಿ.
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार. और आज हमारे साथ हैं दीपा महेश्वरी. तो दीपा, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार. कैसे
2: मंजरी? बिल्कुल अच्छे हैं. और तुम्हारे साथ हमारे सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को, मेरा दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार.
1: क्या बात है.
2: हेल्दी इसलिए हमेशा ही बताते हैं कि कोई एक दिन, जैसे कि कल गया हमारा इंटरनेशनल योगा डे, एक दिन स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए नहीं है, वो इसलिए है ताकि हम साल भर हर दिन अपना ध्यान खूब अच्छे से रख सकें और अपने परिवार को भी उसी वजह से खुशहाल भी रख सकें.
1: बिल्कुल दीपा. और ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास देखो मोबाइल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम हर दिन अपने दोस्तों को ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज योग किया कि नहीं किया. तो इस तरह की हम उन्हें याद भी दिला सकते हैं. तो एक दूसरे को जब हम प्रेरणा देंगे ना रोज रोज, गुड मॉर्निंग की जगह साथ में ये भी उसमें लगा दें कि आज योगा किया कि नहीं किया.
2: सही बात.
1: तो सबकी सेहत अच्छी रहेगी.
2: भले ही 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास वक्त है और जो भी अच्छा लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप एक कुछ वक्त अपने दिन का अपने स्वास्थ्य पर जरूर समर्पित कीजिए.
1: बिल्कुल. और दीपा, आज हमारी जो सखी सहेली के विषय हैं, तो वो हम बता देते हैं कि आज प्रादेशिक व्यंजन में हम कानपुर उत्तर प्रदेश की रंग बिरंगी चाट और हरी धनिया के आलू की तो बात करेंगे ही करेंगे, और हमारे साथी जो कुछ लेकर भेजेंगे तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे.
2: बिल्कुल. और देखो, वर्षा ऋतु आने को है, इंतजार तो हो ही रहा है. सब लोग चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द बारिश शुरू हो. तो उसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मच्छरों से बचाव. तो इस पे भी हम बात करेंगे. और संदेश आए हैं, हम चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा संदेश हमारे सभी श्रोता लिखकर भेजें.
1: बिल्कुल. और कथा सुधा में आज हम सुनवाने वाले हैं आभूषण कहानी का भाग 4. तो अभी तक लगातार सबने सुनी है आभूषण कहानी, तो आज उसका चौथा भाग, अंतिम भाग सुना जाएगा. और नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत जैसे कि हो गई है, और हम देखते हैं दीपा की आज बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव होता है, या आपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले क्या क्या तैयारी करी, वो सब भी हमें छोटी छोटी बातें छोटे छोटे संदेशों में लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा.
2: बिल्कुल. और एक ये गुंछा बना लिया है हमने कार्यक्रम का, तो ये सब तो हम कर ही रहे हैं बातें, और आप सारे संदेश तो आएंगे. तब तक सुनते हैं ये सुंदर सा गीत.

0: मंजरी, अब तो बिना कुछ कहे हम चलेंगे सीधे कदासुदा की तरफ,
1: बिल्कुल,
0: जहां पे हम सुनने वाले हैं आभूषण का भाग 4।
1: जी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण।
0: पिछले भाग में आपने सुना
3: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए, कोई जोतने वाला न मिला, असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही, अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे। 4 प्राणियों का खर्च था। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि

0: सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
2: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
3: कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग।
0: कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नखशिख से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा,
2: इतनी जल्दी सुधली?
0: विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो कर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। ये वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थीं। ये पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति, वो अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हत बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी, शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मात्र स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी। मां पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा,

0: ये देखता क्या हूं?
1: अरे तुम तो जानते ही हो, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे।
0: सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था?
1: अब वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। अरे ये उन्होंने दया ना की होती ना तो आज आज घर में किसी को जीता ना पाते तुम।
0: बहुत अच्छा होता।
2: अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था, फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे।
0: अब तो फूलों की सेज ही बिछी देखता हूं।
2: तुम किसी के भाग्य के विधाता हो।
3: विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला,
0: अम्मा अम्मा मुझे यहां से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका।
3: ये कहकर वो कमरे से निकल आया और मां के कमरे में लेट रहा। मां ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया, लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद यह मानसिक संताप और भी दुसह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा, मां बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा, शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई।
2: इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं। यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए।

0: संध्या का समय था, सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था, उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला,
1: अभी आई है? आज के तीसरे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी।
0: ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त, हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है, और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं, कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं।

0: बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली,
1: मुझे मुझे डर लगता है।
0: उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है, झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगीं। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते।
2: मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई।
0: मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं, वे उन्हें मालूम थीं, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा,
2: उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा।
0: इस पत्र का उत्तर आया,
3: अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा।
0: सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसे दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे, तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगीं। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गईं और बोली,
3: बेटा, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी?
2: माताजी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए।
3: तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं? आराम करो।
0: सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें आंखें और थीं।
4: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार से है, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, मंगला की माँ राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर

0: और मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: तो दीपा, हम लोग ने बहुत सारी जानकारी और कहानी भी प्रस्तुत करी है।
2: बिल्कुल, और कहानी सुनकर वाकई में सभी को आनंद आया, हमें भी आनंद आया। और अब देखो
1: क्या देखो, नवीन शिक्षा सत्र की जो शुरुआत हुई है तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत, या यूं कह लें कि बच्चे अगली क्लास में जाने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह, खुशी होती है, क्योंकि उनको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, कॉपी, बैग, बॉटल, टिफिन, जूते, सब कुछ नए मिलते हैं दीपा। और कौन से दोस्त पुराने नए मिलेंगे, टीचर कौन सी होंगी, हर छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में चलती हैं और तभी खुशी से स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं।
2: कुछ तो बच्चे तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मिस पता नहीं कैसी होंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, दोस्त नए कैसे होंगे, फिर वही भारी बस्ते, किताबें, कितना सब कुछ कठिन होगा, है ना। लेकिन मिस, उन्हें ये भी लगता है मिस डांटेंगी तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाता है।
1: बिल्कुल दीपा, बैठ जाती है। और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती, जैसे वहां पर कैसे अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, उनका नया माहौल होता है चूंकि बच्चों के लिए, और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, नए शिक्षक वहां पर आएंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है। तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है, बच्चों को ये सब सोच के ही थोड़ी सी दिक्कत सी लगने लगती है। और स्कूल जाने का डर और घबराहट से वे कई तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और अक्सर देखा होगा तुमने, बच्चे सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आज नहीं जाऊंगा, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और कई बच्चे तो बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बस रोए जा रहे हैं।
2: हाँ, तो ऐसा भी होता है, भाई देखो ना क्या हो गया है, अब गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, वो जो खेल कूद और मस्ती भरे दिन थे वो भी कहीं उड़नछू होते चले जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अचानक पढ़ाई के रूटीन में जब बच्चे लौटते हैं ना, तो ऐसा व्यवहार हम देखते ही हैं अक्सर, और वहीं पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बोझ सा भी उनको लगने लगता है, नई शिक्षा के कठिन जो ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और फिर जो होमवर्क आ जाता है, उनको गृह कार्य आ जाता है, इसमें समय उनका पूरा निकल जाता है और उनको एक दबाव सा शुरुआत में लगता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: फिर वो धीरे धीरे उसकी आदत में आते हैं, लेकिन पहले उनको ऐसा लगता है अभी तो हम दिन दिन भर खेल रहे थे, अब अचानक एक नियम उनके ऊपर बन गया, एक रूटीन उनका बनना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और जो उनकी दोस्त मित्र मंडली है, सहकर्मियों का दबाव भी उनके ऊपर पड़ता है दीपा। और दोस्तों का साथ छूटना या नए साथियों के बीच खुद को स्थापित करना, साबित करना और सामाजिक स्वीकृति पाने का तनाव भी बच्चों में देखा जाता है। और इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने, स्क्रीन टाइम कम करने और खेलने पढ़ने के बीच संतुलन बनाने में बच्चे अक्सर असमर्थ रहते हैं। उनको लगता है अरे हम खेल नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी उठना और खेल नहीं पाना, इसके बीच में बच्चे बड़े फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनको पढ़ाई से पीछे भागते, क्योंकि होता यही कि इतने दिन छुट्टियां होती लंबी, तो बच्चों की वो छुट्टियों में आराम से उठने की आदत होती है और घंटों घंटों खेलना रहता है, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहता है, तो नए सत्र में ये चीजें रहती। तो वही माता पिता और शिक्षक
2: देखो
1: बच्चों की मदद करें।
2: बिल्कुल, इनका सपोर्ट और इनका मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को, छोटे बच्चे जहाँ अगर उनकी अगर हम बात करें तो प्यार से उनसे बात करना बहुत जरूरी है, उनके मन की बात जानना, उनसे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रहा है ये पूछना, फिर बच्चों को डराने के बजाय, हम लोग क्या डरा डरा करके कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो देखो वैसा हो जाएगा, ये नहीं करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो खुलकर बता सकें। फिर बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना होता है, वो उसमें ऐसा नहीं कि आज बनाया तो वो कल ढल जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन वो उसमें ढल जाएंगे। फिर इस दिनचर्या में पढ़ाई, खेल और फिर अच्छे से सोना, इन सब का एक सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब होमवर्क है, फिर बैग पैक करना, ये सारी तैयारियां करनी एक दिन पहले करना बहुत जरूरी हो गया है, जूते पे पॉलिश है या नहीं, यूनिफॉर्म पे बराबर इस्त्री है या नहीं, धुले हैं या नहीं, ये सब बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स देखेंगे, लेकिन जहां बड़े बच्चे हैं वहां उनको ये सब चीज देखना होती है। तो थोड़े से एक रूटीन, जो बिल्कुल स्वच्छंद भी रूटीन था, कुछ रूटीन ही नहीं था, और अब एक सिस्टम बनता बनता चला जा रहा है, एक दिनचर्या उनके ऊपर आ रही है कि नियमित तरीके से ये करना होगा आपको, तो थोड़े से परेशान

0: होते हैं, लेकिन हमें उनकी भी उलझन को समझना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, उनको छोटी छोटी चीज़ें उनकी उनसे करवाएं और उनकी तारीफ भी करें कि देखो भाई तुमने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म रखी है और साथ में बैग भी तुमने अच्छे से लगा लिया है और शूज़ भी सही जगह से तुमने रखे हैं पॉलिश करके, तो और देखो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इनको लेके जाओगे स्कूल में तो बच्चे कितने खुश होंगे और साथी तुम्हारे कितने खुश होंगे, नई टीचर बहुत प्यार करेगी। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम बहला फुसला कर बच्चों को स्कूल भेजें तो बच्चों का मन भी लगेगा,
0: बिल्कुल।
1: है ना। तो
0: और
1: हमारे
0: वहीं
1: साथी
0: देखिए जी, संदेश भी आए हैं हमारे श्रोताओं के। एक संदेश कहता है कि नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत को नई ऊर्जा और योजना के साथ करना ही सफलता की कुंजी है। नवीन सत्र की शुरुआत केवल नई कक्षाओं में प्रवेश भर नहीं है, बल्कि नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावना की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समय है पुराने अनुभव से सीख लेकर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नई शिक्षा सत्र की शुरुआत, भाई हम लोग के समय में शिक्षा सत्र की शुरुआत जुलाई माह से शुरू हुआ करती थी और फरवरी मार्च तक परीक्षाएं शुरू हो जाया करती थी, लेकिन अब गतिशील समाज में शिक्षा को दान का विषय न मानते हुए स्वयं के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार मार्च से अप्रैल तक कर दिया गया है। फलस्वरूप दान का विषय पूरी तरह से व्यापार विषय का दृष्टिकोण हो चुका है। इस तरह से इन्होंने बातें लिखी है। लेकिन देखा जाए दीपा, तो हम लोग के समय में भी जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारी तैयारियां करते थे जाने के लिए। मम्मी लोग कितनी तैयारियां करती थी, फिर हम लोग भी पहले दिन तो बड़े खुशी खुशी जाते थे, फिर अगली बार जब एक हफ्ते बाद लगता था अरे फिर से जाना है, फिर से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था। लेकिन भाई माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था, और पढ़ना तो सब बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये
1: तो
0: आपके जीवन के जो नींव है वो बनाती है।
1: बिल्कुल। तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार से भेजें स्कूल, उन्हें डराए नहीं, और बल्कि अब चलिए उनको एक गीत सुना देते हैं सबको।
0: चलिए

0: वैसे ही बस अब कुछ ही दिनों में मच्छरों की आतंक की शुरुआत होने
1: हम
0: वाली है
1: इतना मतलब ये
0: जी।
1: तो बात है ही, लेकिन साथ में एक सुखद अनुभव ये भी होगा कि बरसात की, वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो जाएगी।
0: बिल्कुल, गर्मी
1: और हर
0: से
1: एक अच्छी चीज के
0: जी
1: साथ एक चीज है जो कि कहीं वो उसमें एक खामियां भी लेकर आती है ना, साथ साथ में
0: बिल्कुल,
1: होती
0: क्योंकि
1: है।
0: देखो गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें जब बारिश के फुहारे आएंगी और जो कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई भी है तो कहीं नहीं हुई है तो वो लोग बारिश के लिए बेताब भी हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो इन सब कीट कीट जो पतंगे होते हैं इन सब का घर में आना जाना, मच्छरों का आना जाना बहुत शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: तो मच्छरों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको, तो उसके लिए कि पहले तो मच्छरों से बचाव के लिए घर में और आसपास पानी जमा मत होने दीजिए, हमारे साथी लिख रहे हैं। और साथ में आपके अंदर, घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिनमें पानी, हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं, तो उन पानी को आप बदलते रहें हर दो दो दिन पे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे उसमें लार्वा ना पनपने पाए। तो इन चीज़ का

0: लिख रहे हैं। और साथ में आपके अंदर, घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिनमें पानी, हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं, तो उन पानी को आप बदलते रहें हर दो दो दिन पे, तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे उसमें लार्वा ना पनपने पाए। तो इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और
1: बिल्कुल। और ये हमारा एक और संदेश है जो कहता है कि हमारे यहाँ यानी सूरत से हैं ये, और कह रही हैं कि सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी, वो भी अब लगता है कि कहीं झपकी के मोड़ में आ गई है, यानी कि थोड़ी सी बारिश हुई होगी फिर रुक गई होगी। और बारिश हो और मच्छरों का उपद्रव ना हो ये तो संभव नहीं हो सकता। ये तभी कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास या गमलों में पानी ना जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें। घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें। घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है।
0: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मच्छरों से बचाव, मच्छरों से बचाव गर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या है होती है। गर्मी और बरसात की जारी जारी है, मच्छरों से बचाव के लिए अपने आसपास जहां पानी जमा रहता है वहां पानी जमा ना होने दें, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि अपने जो आसपास की आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो, और सफाई करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं, और जब भी सोएं मच्छरदानी के को लगा करके आप सोएं, और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो करें, तो इससे क्या होगा कि आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे।
1: बिल्कुल। और साफ
0: और
1: सफाई का तो देखो विशेष ध्यान रखना होता ही
0: जी
1: है। कई हमारे सखियां होंगी जिनके घर में ऊपर छत है, तो वहां पर हम ऐसा होता है ना अक्सर कि जो काम की चीजें नहीं है वो हम रख देते हैं, जैसे कोई डब्बा रख दिया है, कोई ट्यूब टायर वगैरह रख दिया है, या कोई ऐसी ऐसा सामान लकड़ी का कि साल भर उसका इस्तेमाल ही नहीं होता,
0: हाँ,
1: कभी
0: तो
1: कभी होता है,
0: मच्छर उसी में
1: तो हम
0: पनपते
1: उसमें,
0: हैं।
1: हाँ, और ऐसी जगह पर जहाँ पे धूल मिट्टी और फिर उसके बाद पानी अगर इकट्ठा होने लग जाता है तो बेशक वहाँ पे मच्छरों के लार्वा पनपने लग जाते हैं और वो बढ़ने लग जाते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: ये सब चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि गर्मी के दिन है, बहुत मुश्किल होती है एकदम गर्मी में छत पे जाना और सब साफ सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहां पे गंदा पानी होगा ही नहीं, और उसके बाद कुछ कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने की बात भी जरूरी है।
0: बिल्कुल है। और शाम हो, जैसे ही शाम होने लगे तो उस समय घर के दरवाजे खिड़कियां आप बंद कर दीजिए।
1: बिल्कुल
0: खिड़कियों में दरवाजों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में, हर उसमें लगी हो कमरों में, तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे। और मच्छरों से
1: और ये
0: बचना है।
1: इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में मच्छर आ जाते हैं, तब क्या उजाला रहता है, हमें लगता है नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन ऐसा ना करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियां बंद कर लें। बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर खिड़कियां हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी
0: बिल्कुल
1: बात है, क्योंकि विशेष तौर पे मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं, इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल करें।
0: बिल्कुल
1: छोटे बच्चे घर में हैं तो उनको कपड़े पूरे
0: पूरे
1: बाह के
0: पहनाएं।
1: और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ रहे, भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो,
0: और दीपा,
1: लेकिन
0: इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए। अगर
1: जी
0: हम गहरे रंगों के, भूरे हैं, काले नीले बिछाएंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जितना हल्का कलर होगा उतनी जल्दी आप उनको देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। फिलहाल तो हम एक गीत सुन सकते हैं
1: इससे हम बचना बिल्कुल नहीं
0: जी।
1: चाहते।

0: तो भाई
1: सुरीले सा संगीत हो और फिर कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश होगी, ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की, तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफ़ेद, जो सूखी सफ़ेद मटर होती है वो लेना है 1 कप, रात भर भीगी हुई, रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी 1 छोटा चम्मच, नमक, गरम मसाला, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है, उसमें पिसी हुई धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरी धनी की चटनी। मीठी चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी, ये भी ऊपर से डाला जाएगा। और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सर्व सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियां कहेंगी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भाई मजा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी लिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे

0: तैयार करना है, मैश किए हुए आलूओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और चपटी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से, सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में दो टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए। उसके ऊपर गरम जो माफ कीजिएगा उसके ऊपर जो तैयार की है आपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है। और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फैटा हुआ दही, फिर हरी चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज़्यादा डालिए। इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हल्का हल्का भो रखना है। और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरा धनिया से आप इसे सजा कर सर्व कीजिए।
1: और इसी तरह हरी धनिया के आलू भी बनते हैं। हरी धनिया एक पुदीने की बढ़िया चटनी बनाइए, उबले आलू लीजिए और उसके सबको मिक्स कर दीजिए, तो आपके हरी धनिया के आलू जो चाट है वो तैयार हो जाए।

0: तो दीपा देखो, बातें करते करते एकदम समय का पता ही नहीं चला, तो हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छी सी रेसिपी भी लिखकर भेजी।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: और रेसिपी जो भेजी है उसको आप, लंबी है लेकिन बनाइएगा जरूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मजेदार लगेगी। और
0: तो
1: अपना ध्यान रखिएगा, मच्छर

0: दूसरों से भी, और बच्चे नहीं अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा जिद करेंगे या मन उनका नहीं होगा, तो उनका मन को बहलाइए खूब अच्छी ये इस तरह की रेसिपी बना के।
1: तो अब विदा लेते हैं प्रोग्राम से, सभी को मंजरी वर्मा और
0: दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार।

0: की सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट है कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवें आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूंगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर
1: अच्छा।
2: है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं

0: उनमें अबाउट 30 से 40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गांवों में चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, तो ये बीमारी थोड़ी कम है। और
1: जी
0: इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज़्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज़्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है, और अगर लिवर ख़राब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज़्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है।
1: जी, तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
0: सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफ़ी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है अगर वो ज़्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को ख़राब करता है। डायबिटीज़ होना, प्री डायबिटीज़ होना,
1: जी जी
0: एक्सरसाइज नहीं करना,
1: जी
0: आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है,
1: जी
0: सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच
1: नुकसान
0: सकता
1: पहुंचता
0: है।
1: है। तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं? और एक बात, और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
0: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये
1: जी
0: प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ तब काफ़ी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक ख़राब हो चुका
1: ओ
0: होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़ें तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे
1: हाँ,
0: प्रिवेंट कर सकते हैं,
1: लक्षण
0: लक्षण
1: हाँ
0: क्या
1: क्या
0: होते हैं।
1: है?
0: तो
1: और
0: नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज़ हो सकती है या प्री डायबिटीज़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये दो तीन लक्षण हैं जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं हैं,
1: जी
0: सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
1: जी तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
0: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज़ है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वज़न कितना है। अगर वज़न हमारा बढ़ रहा है या ज़्यादा है, हम ओबीज कैटेगरी में आते हैं जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज़्यादा हो तो देर इज़ अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है, अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई
1: जी
0: और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है।
1: ओके
0: बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसानदेह दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में जिसमें हम मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं, क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है।
1: जी
0: कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हैं हमारे हॉस्पिटल में क्योंकि हम काफ़ी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में,
1: जी
0: तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है।
1: जी
0: अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं
1: जी
0: कि
1: जी
0: दो
1: जी
0: मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं।
1: जी
0: अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो

0: तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
1: जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खास तौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफ़ी साल,
1: जी
0: चौदह
1: जी
0: पंद्रह साल मैंने वहाँ बिताया,
1: अच्छा
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ ही पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफ़ी काफ़ी
1: जी
0: साल। फिर
1: जी
0: 14 साल छोड़ के मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे
1: जी
0: पेरेंट्स यहाँ थे।
1: जी जी
0: तो वहाँ मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है
0: ये जो
1: मेरा,
0: देश है मेरा, ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद
1: क्या
0: है।
1: बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की, हमने वहाँ पे तीन साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू, तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मैं बताऊँगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग ख़त्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल

0: में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखे, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ERCP करके टेस्ट होते हैं जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने को, फिर 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया।
1: अरे क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यू नो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम एक दवाई लिख के दें।
1: जी,
0: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5-10% भी वजन कम कर पाए किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5-10% आपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाई है, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में 2 और दवाइयां अभी अप्रूव हुई हैं, एक साल पहले हुई थी, कभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे अधिक दवाई हम यूज करते हैं इसके लिए वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल हैं दवाइयां, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर डिसाइड कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयां थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूं कि वेट लॉस करो। अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
0: हाँ, बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, और डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सबसे भी अपने बॉडी के हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम। फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है। तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, पर उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती है।
1: जी जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
0: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, 100 लोगों को ले जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है,

0: इनमें से 2 से 3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है। आई मीन
1: जी
0: ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर आप देखें हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दें, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है। एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20 से 30 गुना ज्यादा होती है।
1: श्योर
0: तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज्यादा।
1: जी। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाएं अपने श्रोताओं को।
0: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ,
1: जी जी
0: क्योंकि
1: जी
0: लाइक थोड़ी बीट्स होनी चाहिए। भाग मिल्खा भाग वाला गाना
1: क्या बात है,
0: मुझे
1: फिल्म का
0: पसंद
1: नाम
0: है।
1: भी सुनते हैं। फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है। सुनते हैं यही गाना, और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोरायसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फिटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही हैं। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इट इज इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी है, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है या क्या
1: हाँ,
0: है?
1: ये अच्छा सवाल है क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है
0: जी
1: उनका हम अगर डायबिटीज़ का चेकअप करें तो काफ़ी लोगों को प्री डायबिटीज़ होता है,
0: जी जी
1: मतलब डायबिटीज़ शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7 5.8 होता है मोस्ट प्लेसेस में। अगर आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6 5.7 है, आपको प्री डायबिटीज़ है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज़ शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में है, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल की जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है। सो इट वर्क बोथ वेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए
1: ना,
0: पहले?
1: अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफ़ी पुअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज़ कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, और सबका सवाल सब आधे लोग बोलते हैं हाँ वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और
0: जी
1: थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए।
0: हम्म,
1: हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन

0: चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
1: जी, कई बार लोग ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा
0: हाँ,
1: बताइए।
0: ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके
1: जी
0: दो जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी
1: जी
0: लिवर होता है,
1: जी
0: और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बींग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखे, 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है, और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है, इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए। हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम,
1: जी
0: इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे
1: बिल्कुल
0: आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर होने के चांस कम हो जाते हैं।
1: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डायटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें। इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें। और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है, और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं। अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे। सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं। ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा मुझे है, किसी ने लिखा मेरी बहन को है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है, IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रॉबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है। तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है।
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बोलते पेट दर्द कर रहा है,
0: जी
1: या
0: जी
1: वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज़्यादा लो, फल फ्रूट ज़्यादा लो। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे

0: खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। आईबीएस होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी, हर एक बीमारी का। अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
1: जी।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसे लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई कई वॉमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी एक इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है,
0: जी
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हैवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ और लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है।
0: जी, तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो। सबसे इम्पॉर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए। खाने के बाद टहलिए थोड़ा, 10-15 मिनट तक खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज कहूंगा, जो चीज आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
0: जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन

0: प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं लेते
0: लेते
1: रहते
0: रहते
1: हैं,
0: हैं।
1: हाँ लेते रहते हैं, बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स
0: जी
1: को,
0: जी
1: जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है।
0: जी
1: खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा।

0: तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स
1: जी
0: को,
1: जी
0: जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी हो गई है, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है।
1: जी जी
0: खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर वॉट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
1: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस, एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जाँच नॉर्मल है, फिर क्या?
0: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। जैसे आईबीएस बोला मैंने पहले,
1: जी जी जी
0: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं
1: जी
0: मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो
1: जी
0: उसको
1: जी
0: हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
1: जी तो इसका कुछ मतलब, इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा
0: ऑफकोर्स
1: देने से?
0: इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से ही शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती है, जैसे एक एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलिएक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने के, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हैं, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है। माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा।
1: दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और
0: करेक्ट,
1: वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
0: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया।
1: चल छैया छैया सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली

0: कभी भी हमें दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी की दवाई अगर ज़्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है किसी किसी को, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। विटामिन, न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्जॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे। जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए, कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए। तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ जरूरी हैं। है हमारे काफ़ी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे अपने कहा दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज अ प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू। कि अगर आपको हमेशा जरूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूं कि एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
1: जी
0: सो दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
1: जी, लेकिन वो आदत न डालने, ये गड़बड़
0: करेक्ट,
1: है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियां होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियां, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
0: हाँ। अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होते रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या
1: जी
0: है।
1: जी
0: इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज़्यादा देखते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को। जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स को अगर डायबिटीज़ बहुत देर तक हो जाए, तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो
1: जी
0: डायबिटीज़ पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपरीसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है, जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो।
1: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है, लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं
0: बिल्कुल।
1: वैसा करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे।

0: अनुभव सिन्हा साहब ने, हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी तोड़ली चुनरिया तेरे नाल।
2: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुन रहे थे, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोट कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये इंदरपुर, नीलकंठपुर, हरिहरपुर, शिवपुर, महावीरगंज, पेंडारी, कोटराही, तनवारी, भगवानपुर, नवापारा, चांची, खोडरो, उधवा कटरा, मंदरी डांड, झींगा डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैन पाट में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, चाउरपानी, बांसाझाल, आमापानी, कुड़केल, घोघरा, मानपुर, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, घोड़ाघाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गाँव में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, जामटोली, खड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 159 है। ये कूड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, रुपुंगा, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, भुजापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, उकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राटरोड, झिंगोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में

0: हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार नवापारा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी तेंदुचुआ कोठारी रामपुर अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारीपानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में पेश है ये गीत। आपस की बात इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें हैं। दयानाथ पांडे के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है

कार्यक्रम के आरंभ में आपने सुना आपस की बात फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। लीजिए अब पेश है रॉकी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी की शब्द रचना है, आर डी बर्मन की धुन।

आनंद बख्शी का लिखा गीत आरडी बर्मन की तर्ज पर। लीजिए अब सुनिए रोमांस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में।

मुकेश और सुमन कल्याणपुर को अब सुनते हैं साथी फिल्म के इस गीत में। मजरूह का लिखा गीत है, नौशाद का संगीत।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत लीजिए, पेश है लता मंगेशकर के स्वर में, वर्मा मलिक के शब्द हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए बेताब फिल्म का गीत, शब्बीर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत है, आर डी बर्मन की धुन।

शब्बीर हुमा के गाये बेताब फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम युवा जगत।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर और मैं हूं आपका साथी शुभम पाठक। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम युवा जगत में। साथियों, आज की बात में हम बात करेंगे नशा और उसके दुष्परिणाम के बारे में। साथ ही बात होगी आज के दिवस विशेष विश्व वर्षावन दिवस और विश्व ऊंट दिवस की। साथियों, आज अपना क्रम होगा कला एवं साहित्य, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय चेतना, युवा और साहित्य विषय पर, जिसमें आप सुन सकते हैं इस विषय पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर मुरली मनोहर सिंह को। साथ ही इन सबके बीच हम आपको सुनाएंगे प्यारे प्यारे गाने। तो आइए साथियों, आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 22 जून है, विश्व वर्षावन दिवस आज हम मना रहे हैं। आज इस दिवस के अवसर पर हम बात करेंगे पृथ्वी के उन अमूल्य प्राकृतिक खजानों की, जिन्हें हम वर्षावन या रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। वर्षावन पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। ये वन विश्व के कुल भूभाग का लगभग 6% क्षेत्र घेरते हैं, लेकिन इनमें पृथ्वी की आधे से अधिक जैव विविधता निवास करती है। साथियों, असंख्य वनस्पतियां, जीव जंतु, पक्षी और सूक्ष्म जीव वर्षावनों पर निर्भर हैं। यही नहीं, करोड़ों लोगों की आजीविका और जीवन भी इन वनों से जुड़ा हुआ है। वर्षावन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन की गति को कम करते हैं। ये वर्षा चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों, यदि वर्षावन नष्ट हो रहे हैं तो केवल वन्य जीव ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता इससे संकट में पड़ सकती है। दुर्भाग्यवश बढ़ती जनसंख्या, अवैध कटाई, खनन, शहरीकरण और कृषि विस्तार के कारण विश्व भर में वर्षावनों का क्षेत्र तेजी से घट रहा है। प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं, जिससे जैव विविधता और पर्यावरण दोनों को गंभीर क्षति पहुंच रही है। भारत में भी पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षावनों की समृद्ध परंपरा देखने को मिल रही है। ये क्षेत्र अनेक दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों का घर है। इन वनों का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं साथियों, बल्कि हम सबका नैतिक दायित्व है। विश्व वर्षावन दिवस हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर सतत विकास संभव है। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए

वन संरक्षण गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, आज हम विश्व वर्षावन के साथ साथ विश्व ऊंट दिवस भी मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उस अद्भुत जीव की चर्चा करेंगे जिसे सदियों से मरुस्थल का जहाज कहा जाता रहा है। ऊंट केवल एक पशु नहीं साथियों, बल्कि रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोगों के जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। कठोर जलवायु, भीषण गर्मी और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जहां अन्य पशुओं का जीवित रहना कठिन होता है, वहां ऊंट अपनी विशेष शारीरिक संरचना के कारण आसानी से जीवन यापन कर पाता है। ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है और लंबी दूरी तक भारी सामान ढो सकता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से व्यापार, परिवहन और यात्रा के लिए ऊंट का व्यापक रूप से उपयोग होता आया है। आज भी राजस्थान सहित भारत के कई रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊंट लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। विश्व ऊंट दिवस हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति के प्रत्येक जीव का अपना महत्व है। ऊंट न केवल रेगिस्तान के जीवन का आधार है, बल्कि मानव और प्रकृति के सह अस्तित्व का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। साथियों, आपसे बातचीत का क्रम यूं ही जारी रहेगा। आइए सुनते हैं फिल्म धर्मात्मा का यह गाना, जिसे अपने सुरों से सजाया है मुकेश और कंचन ने, बोल हैं इंदिवर के और संगीत दिया है कल्याण जी और आनंद जी ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म धर्मात्मा का यह गाना, जिसे अपने सुरों से सजाया था मुकेश और कंचन ने। साथियों, समय हो गया है आज के क्रम कला एवं साहित्य का। आइए सुनते हैं इस विषय पर राष्ट्रीय चेतना युवा एवं साहित्य पर गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर मुरली मनोहर सिंह जी के साथ खास बातचीत।

0: युवा साथियों नमस्कार। साथियों मैं हूं आपका साथी शुभम पाठक। साथियों कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों आज क्रम है कला एवं साहित्य। साहित्य जो हमें जीवन में आगे बढ़ने सिखाता है, साहित्य जो हमें अपने देश के इतिहास के बारे में बताता है और भविष्य की दिशा को निर्धारित करता है, और कला जिससे हम अपने आप को कहीं भी अच्छे रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। साथियों क्रम कला एवं साहित्य में आज बातचीत होगी विषय राष्ट्रीय चेतना युवा एवं साहित्य पे। साथियों आज का विषय बेहद ही रोचक है और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मुरली मनोहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो सर आज जो हमारा ये विषय है राष्ट्रीय चेतना युवा एवं साहित्य, सरल शब्दों में यदि आकाशवाणी के श्रोताओं को इन तीनों शब्दों को समझना हो इस विषय को तो किस प्रकार समझ सकते हैं?
1: बहुत बढ़िया सवाल आपका। दरअसल सबसे पहले हम लें राष्ट्रीय चेतना को, तो राष्ट्रीय चेतना के मामले में जब जाते हैं तो सबसे पहले राष्ट्र शब्द से राष्ट्रीयता बनती है आपकी, और राष्ट्र किसी भी भूखंड से हट करके होता है। कभी आप पढ़िएगा एक निबंध है भारतीय संस्कृति करके, संभवतः वासुदेव शरण अग्रवाल का या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से दो में से किसी एक का निबंध है। तो उसमें वो कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण किसी देश की संस्कृति, भूभाग और वहाँ के जन, इन तीनों को मिला करके बनता है। यानी राष्ट्र के निर्माण में केवल व्यक्ति या केवल भूखंड का मामला नहीं होता है, लेकिन उसमें संस्कृति भी अपनी भूमिका निभाती है। और संस्कृति जहाँ जुड़ती है वह संस्कृति अपने आप में सभ्यता से अलग होती है। जैसे हम छत्तीसगढ़ में हैं तो छत्तीसगढ़ की जमीन से जुड़ी हुई चीजों की आवश्यकताओं को लेकर के जो हमारी परंपराएं बनती हैं वो हमारी संस्कृति का हिस्सा होंगी। उसी प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष को लेकर के देखें तो जो इस देश के मौसम, इस देश की जलवायु, इस देश की भौगोलिक स्थिति, इस देश के तमाम अन्य वे कारक जो इस देश के जन का निर्माण करते हैं, उन सबको प्रभावित करने वाले तमाम कारकों को मिला करके हमारी जो आवश्यकताएं बनती हैं वहां से हमारी संस्कृति का निर्माण होता है
0: जी।
1: और ये हमें निश्चित रूप से हमारे जेनेटिकली जिसको कहते हैं हमसे जुड़ी रहती है। जैसे जो भारतीय परिवेश में औषधियां या पेड़ पौधे जन्म ले लेते हैं वो तय है कि अन्य जगह पर हो सकता है न हो, तो नीम हो सकता है अमेरिका में उस तरह से हो पाए कि ना हो पाए, उसके औषधि गुण उस प्रकार बन पाए कि ना बन पाए। तुलसी हमारे यहाँ जिस प्रकार से उत्पन्न होती है कोई जरूरी नहीं कि अन्य जगह पर इसी तरह से उत्पन्न हो पाए, इसलिए तुलसी हमारे यहाँ संस्कृति का हिस्सा बन जाती है, नीम हमारे संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। खान पान में जो तमाम चीजें हैं वो हमारी संस्कृति का हिस्सा बन जाती हैं। हमारे यहाँ ब्रेड नहीं, हमारे यहाँ रोटी रही है, तो उसका कारण यही है, या हमारे यहाँ जौ रहा है, हमारे यहाँ चना रहा है, क्योंकि ये चीजें हमारे जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि संस्कृति बहुत कुछ प्रभावित करती है हमारी चेतना, और राष्ट्रीय चेतना को बनाने में सांस्कृतिक कारक जिम्मेदार होते हैं
0: जी।
1: तो इस प्रकार से जब हम राष्ट्रीय चेतना की बात जब करते हैं तो तय है कि उसमें सांस्कृतिक पहलू बहुत मायने रखता है। ये हो गया हमारी राष्ट्रीय चेतना को लेकर के। दूसरा आते हैं आपके साहित्य का, अगर विवेचन करेंगे तो सहितम भावम साहित्यम, दो इसके अर्थ जाते हैं। एक तो सहितम हितकारी भाव साहित्य है, और दूसरा क्या है, सहित भाव, यानी सबको साथ लेकर चलने की परिकल्पना। बहुत दूरदर्शी तरीके से सोचेंगे तो व्यापक रूप से तो ये एक ही बात कह रहे हैं
0: जी।
1: तो साहित्य सहितम भावम, और निश्चित रूप से मनुष्यता के लिए मार्ग प्रदर्शित करने का, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक और निबंध लिखा है जो कहते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यानी साहित्य में जब हम आते हैं तो मनुष्य ही लक्ष्य हो जाता है, यहाँ पर तमाम अन्य कुनबा परस्ती फिरका परस्ती पीछे रह जाती है। इसलिए आप देखिएगा कि जैसे पाकिस्तान के जब अविभाजित भारत था तो भारत में ही थे, लेकिन जब भारत पाकिस्तान बना तो फैज अहमद फैज पाकिस्तान गए, लेकिन पाकिस्तान जाने के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने एक गजल लिखा और कहा कि लाजिम है कि तख्त गिराए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे। एक मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने वहां की हुकूमतों को अपनी गजलों में या नज्मों में ललकारा है। तो साहित्य जो है मनुष्यता का पक्षधर होता है, वह हाशिए का, वंचित तबके का, या फिर जो भी जिसके साथ भी अन्याय हो रहा होता है उसके साथ खड़ा होता है। साहित्य अपने मूल रूप में हमेशा मानवतावादी होगा। और रहेगी बात युवा, तो युवा भी अपने आप में ऐसा शब्द है जो एक सच कहते हैं कि रूढ़ियों को तोड़ने वाले तत्व के रूप में सामने आता है। हमेशा वह अपने लिए एक नया रास्ता बनाता दिखाई पड़ेगा। तो

0: हमको हमारे गुरुदेव ने एक बार एक निबंध था और हमने युवा और स्वच्छता करके, तो
1: जी
0: हमने कहा सर आप युवा को किस रूप में देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो है युवा शब्द को थोड़ा पलटो तो पता चलेगा, तो देखा हमने वाई, तो फिर हमें अचानक से हम लोग जो हमारे दादाजी खेती किसानी करते थे और हम लोग कुछ काम कर रहे होते थे तो पंखा जब चलाते थे धान ओसाने के लिए तो कहते थे किस्सा कि चले पवन तो रोके कवन, भोजपुरी यह कहावत है
1: जी
0: कि जब पवन चलती है तो कौन रोक
1: कौन
0: सकता है,
1: रुकेगा।
0: तो उसी तरीके से आप युवा को समझिए, वह वायु है जो अपनी रवानी में जब चलता है तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। अब हालांकि यह रवानी इस रूप में भी हो सकती है कि कभी कभी नकारात्मक भी हो सकती है,
1: जी
0: जैसे तमाम आप देखेंगे कि वे ताकतें जो युवाओं का, जैसे मैं बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि जब कोई आतंकवादी अपने हाथ में बंदूक लेकर के चलता है तो वह युवा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ युवाओं के आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद, और इस प्रकार से जब युवा आगे बढ़ता है तो तय है, आप कभी इटली की क्रांति पढ़िएगा तो देखिएगा वहाँ गैरिबाल्डी और मेजनी नाम के दो बड़े क्रांतिकारी सामने आते हैं,
1: जी
0: और मेजनी ने कहा था कि अगर किसी देश की तकदीर बदलनी है तो उसकी बागडोर युवाओं के हाथ में दे देनी चाहिए, और आज़ादी के पहले हमारे यहाँ देखिएगा पूरे क्रांतिकारियों का जो जत्था है वो युवाओं का जत्था है,
1: बिल्कुल
0: उसमें चंद्रशेखर आज़ाद हों चाहे भगत सिंह हों, स्वामी विवेकानंद अपने आप में केवल संत ही नहीं थे, वो बल्कि क्रांतिकारी संत थे,
1: बिल्कुल
0: वो मनुष्यता को सामने लेकर के चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ युवा का यह रूप है, अगर हम इस पूरे सकारात्मक रूप को देखें तो अपने आप में युवा की भूमिका समझ में आती है कि हमारे लिए क्या आवश्यक हो सकता है।
1: जी
0: अब जैसे एक बात मैं बताऊं आपको, दिनकर ने बहुत बढ़िया इस मामले पर कहा है कि बाहें जिसकी बल मई और ललाट अरुण है, भामिनी वही तरुणी और नर तरुण है,
1: वाह
0: तो इसका मतलब है कि युवा में एक पौरुष होता है
1: जी
0: और वह पौरुष केवल जो है कि दूसरे पर बल दिखाने का या अधिकार दिखाने का नहीं होता है, बल्कि मनुष्यता की दिशा में कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना का होता है। इसीलिए एक बहुत बढ़िया शेर है इस मामले पर कि घरसों के साये में वीरों की जवानी पलती है,
1: जी
0: उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है,
1: जी जी
0: तो ये युवापन इसी का नाम है जो वायु की गति लिए हुए होता है। और एक और बड़ी बात आपको बता दूँ,
1: जी
0: सामान्य तौर पर हम ये सोचते हैं कि जो हमारा वर्तमान है वह जो है पास्ट हो जाएगा, मैं इसके विपरीत थोड़ा सा सोचता हूँ, हम ये सोचते हैं कि जो हमारा वर्तमान है वही हमारा भविष्य होगा, और युवा को देखिएगा वह वर्तमान होता है हमेशा, वह जो है बाल भविष्य को वृद्धातीत से जोड़ता है,
1: जी
0: तो वह अपने आप में योजक कड़ी है, जैसा वह जो योग बनाएगा वृद्धातीत से बाल भविष्य का उतना ही बेहतर बाल भविष्य जुड़ेगा, तो युवा की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है आप इस बात को समझिए, वह
1: जी
0: अपने आप में पुल है, वह
1: जी
0: सेतु है दोनों किनारों को जोड़ने का, वह जितना बेहतर अपने आप को मजबूत बना सकेगा तय है कि भविष्य उतना बेहतर होगा, तो
1: जी
0: युवा हमेशा जो है देश का भविष्य होता है, वह बीतता हुआ नहीं आने वाला कल होता है, इस बात को हमको समझने की जरूरत पड़ती है,
1: जी
0: तो हमने जो है तीनों शब्दों को इस रूप में रखने की कोशिश की।
1: जी, तो सुना युवा साथियों, आप सभी ने हमारे हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर मुरली मनोहर सिंह ने बहुत अच्छे से राष्ट्रीय चेतना, युवा और साहित्य के जो उसका अर्थ था, उसका जो मतलब था, आप सभी के समक्ष रखा। सर, आपने बहुत अच्छे से इस विषय को रखा, इसके अर्थ को रखा। अब और इस विषय पर आगे चर्चा करते हैं। सर, हम लोग साहित्य की बात करें और युवा की। आज के समय में प्रायः यह देखा जा रहा है कि जो युवा हैं वो किताबों की ओर रुचि थोड़ी कम जा रही है उनकी।
0: जी
1: तो ऐसा कौन से ऐसे जो किताब हैं जिससे साहित्य, ऐसे कौन से साहित्य हैं जिनको पढ़ने से युवाओं को राष्ट्रीय चेतना या देश के बारे में जो इतिहास है में
0: बहुत
1: आएगी।
0: बढ़िया सवाल है आपका। देखिए आजकल मैं कक्षाओं में भी बात करता हूँ, जैसे मैं एक उदाहरण, सीधे उदाहरणों से बात करते हैं,
1: जी
0: सामान्यतः राम का नारा लगाने वाले बहुत मिल जाते हैं,
1: जी
0: लेकिन मैं जब पूछता हूँ उनसे कि क्या आपने रामचरितमानस पढ़ा है, तो उन्हें बड़ी मुश्किल से कुछ लोग मिलते हैं कि थोड़ा बहुत चौपाइयां याद कर लिए हों तो कर लिए हों, नहीं तो रामचरितमानस जैसा और रामायण जैसा ग्रंथ भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं।
1: जी
0: और एक बार एक बड़े विद्वान से ऐसी बात हो रही थी कि हमारी पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि हमें अपनी क्लासिक कृतियों की ओर लौटना पड़ेगा जो शास्त्रीय किताबें हैं, तो तय है कि रामचरितमानस या महाभारत या रामायण या फिर हम कह लें थोड़ी देर के लिए हमारे जो उपनिषद हैं, इनको पढ़ने की ज़रूरत। देखिए यह निश्चित रूप से अत्यंत उपभोक्तावादी दौर चल रहा है,
1: जी
0: और ऐसा नहीं है कि यह अचानक से आया है, हमारे यहाँ वेदों के बाद उपनिषद जो है सबसे प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं इस देश के चिंतन को बनाने में, और सबसे पहला उपनिषद आता है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद में इस उपभोक्तावादी संस्कृति और मतलब व्यक्ति की प्रकृति और उसकी संस्कृति के द्वंद्व को पहले ही श्लोक में,
1: जी
0: पहले ही मंत्र में दिखा दिया गया है। पहला ही मंत्र है वहाँ, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच

0: जगत्याम जगत तेन त्यंगतेन भुंजीथा माँ गृदह कस्य स्विद्धनम। जो कुछ भी इस संसार में व्याप्त है वह उस परमात्मा से व्याप्त है, उसका त्याग पूर्वक भोग होना चाहिए। आसक्त मत हो यह धन किसका हुआ है। अब आप यह देखिए कि इस पहले ही मंत्र में व्यक्ति की जो स्वच्छंदतावादी वृत्ति है अधिक से अधिक उपभोग कर लेने की, और एक है संयमवादी वृत्ति कि उस पर एक अंकुश भी रहना चाहिए, यानी मनुष्यता के लिए कहीं ना कहीं हमारी प्रवृत्तियों पर को खुली छूट नहीं होनी चाहिए। इस द्वंद्व को लेकर के हमारा वह पहला ही मंत्र चल रहा है जो हमारे सनातन संस्कृति का मूल है। तो उपभोक्तावादी दौर में भी निश्चित रूप से आपकी प्रवृत्तियों को रास्ता कैसे दिखाया जा सकता है आपका उपनिषद बता रहा है। इसलिए आप देखिए, मनुष्य होना अपने आप में सामान्य बात नहीं है। हम तीन योनियों में जाएं, देव योनि, एक बहुत बढ़िया शेर है साहिर लुधियानवी का कि सजा का हाल सुनाएं, जजा की बात करें, खुदा मिला हो जिन्हें वो खुदा की बात करें। निश्चित रूप से ईश्वर को हम में से तो किसी ने नहीं देखा, जिन्होंने देखा होगा वो ऐसे लोगों को हमने नहीं देखा, उनको ईश्वर को हम मानते आए हैं। लेकिन तय तो देवत्व या ईश्वरत्व हमारे लिए एक कल्पना लोक है, लेकिन मनुष्य लोक हमारे लिए जो है एकदम यथार्थ लोक है, और मनुष्यता हमारी संपत्ति है। जैसे देवत्व देवताओं की प्रवृत्ति है और पशुत्व पशुओं की प्रवृत्ति है, तो मनुष्यों की प्रवृत्ति मानवता है, मनुष्यता हमारी प्रॉपर्टी है और मनुष्यता को बचाना हमारा दायित्व है। तो इस प्रकार से मैंने यही कहा कि ये जो आपका उपनिषद है उस मनुष्यता को बचाने के लिए आगे बढ़ने वाला ग्रंथ है। तो इसलिए गुरु जो है इनसे भी कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, और चूंकि वो उपदेशात्मक है, अचानक से हो सकता है ना समझ में आए, तो कहानियों के रूप में आप रामचरितमानस से शुरू कर सकते हैं। दूसरी बातें, सामान्य तौर पर युवाओं के लिए बहुत क्रांतिकारी तरीके से अगर देखें तो आप भगत सिंह की जीवनी या फिर आप विवेकानंद की जीवनी, जो धार्मिक हैं वो अगर विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की जीवनी को उठा करके पढ़ सकते हैं। जो राजनीतिक हैं वो आराम से जो है कि राजनीतिक क्षेत्र के तमाम महत्वपूर्ण लोगों की, मैं नाम नहीं लूंगा उसमें क्योंकि तमाम वो बातें हो सकती हैं कि आपका रुझान इधर हो सकता है, लेकिन महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने से आप ऐसा नहीं कि भक्त की तरह पढ़िए, बल्कि आस्था और श्रद्धावश न पढ़िए, बल्कि एक आलोचक की दृष्टि से कि उनके जीवन में क्या कमियां थीं और उनकी क्या विशेषताएं थीं। एक मनुष्य होकर के भी, क्योंकि वो भी मनुष्य थे हम भी मनुष्य हैं, तो अपनी कमियों को उन्होंने का परिष्कार कैसे किया था, मानवता के हित में कैसे काम किया था, संघर्ष कैसे किया था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे जो है कि आप इनकी चंद्रशेखर आजाद की जीवनी है, और ऐसे ऐसे तमाम लोगों की जीवनियां पढ़ सकते हैं। तो ये जीवनियां आपको बड़ी काम देंगे। इसके साथ ही प्रेमचंद की कहानियां जब पढ़ेंगे आप, हिंदी पट्टी के विशेष करके जो लोग हैं, तो आपका परिवेश उसमें दिखाई देगा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत बेहतर मार्गदर्शन का काम कर सकती हैं। मैं तो इन्हीं का सुझाव दूंगा।
1: जी, बहुत अच्छे से सर आपने हमारे युवा साथियों को बताया कि आज के समय में यदि राष्ट्रीय चेतना को समझना हो, अपने आप को आगे बढ़ाना हो, तो किस प्रकार वो कौन से साहित्य को पढ़ सकते। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा सर, महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, और आप भी कह रहे हैं कि अध्यात्म, माइथोलॉजी, उपनिषद, पुराण जो है उसको पढ़ करके भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। और आगे पढ़ना हो तो जो अपने देश में महापुरुष हुए उनकी जीवनियों को पढ़ना चाहिए। सर, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाते युवा साथियों को, आकाशवाणी के श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बाबा तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया बात कहा है, कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसर इसम सबकर हित होई। निश्चित रूप से साहित्य का अवगाहन, यानी साहित्य में जब आप गोता लगाते हैं तो वह आपके लिए हितकारी ही होता है। और इसी कल्याण कामना के साथ शंकर प्रसाद की बहुत अच्छी पंक्ति है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और तुम भी सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो यह जो पंक्तियां हैं इनका हम अवगाहन करें, इनमें इनको सोचें और सबको अपने साथ लेकर के आगे चले बढ़ें। संगच्छध्वं संबदध्वं संवो मनांसि जानता हूं।
1: जी, तो सुना युवा साथियों, आप सभी ने, आप सभी को बहुत अच्छे से डॉक्टर मुरली मनोहर सर ने साहित्य, राष्ट्रीय चेतना, युवा विषय पे अपने जो विषय था उसको रखा। आप में से किसी को यदि इस विषय पे और जानकारी चाहिए तो आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आकर के इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे और डॉक्टर मुरली मनोहर सर को आज्ञा दें। नमस्कार।
0: धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आगे फिर मिलते रहेंगे।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे आज के क्रम कला एवं साहित्य में विषय राष्ट्रीय चेतना, युवा एवं साहित्य पर विशेष व्याख्यान गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर मुरली मनोहर सिंह को। साथियों, समय हो गया है एक प्यारे से गाने का। आइए सुनते हैं फिल्म जीत का ये गाना। जिसे अपने

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म जीत का यह गाना, जिसे अपने सुरों से सजाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। साथियों, अब हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन रहा है। वो विषय है नशा और उसके दुष्परिणाम। नशा किसी भी रूप में हो साथियों, शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या अन्य मादक पदार्थ, वह धीरे धीरे मनुष्य के जीवन को खोखला कर देता है। अधिकांश लोग नशे की शुरुआत शौक, जिज्ञासा, तनाव, मित्रों के दबाव या फैशन के कारण करते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आदत लत में बदल जाती है और व्यक्ति इसके जाल में फंस जाता है। साथियों, नशे का सबसे अधिक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तंबाकू और गुटखे के सेवन से मुंह का कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां और हृदय रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। शराब और अन्य मादक पदार्थ लीवर, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। नशा व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देता है साथियों, और निर्णय लेने की शक्ति भी इससे प्रभावित होती है। साथियों, इससे परिवार पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। साथियों, कोई भी व्यक्ति नशे से बचाव यदि करना चाहे तो उसका सबसे प्रभावी उपाय है कि सही संगति

का चयन, दूसरा उपाय है तनाव प्रबंधन, तीसरा उपाय है परिवार का सहयोग और संवाद, और चौथा उपाय है जागरूकता और शिक्षा। साथियों, यदि कोई व्यक्ति पहले से नशे की लत का शिकार है तो उसे शर्म या संकोच छोड़कर चिकित्सालय सहायता, परामर्श और नशा मुक्ति केंद्रों की मदद लेनी चाहिए। साथियों, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आपको आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा, आकाशवाणी बिलासपुर को पत्र अथवा ईमेल के माध्यम से जरूर बताएं। और अब अपने साथी शुभम पाठक को आज्ञा दें। नमस्कार।

युवा जगत आप सुन रहे थे एफएम पैन पर, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। डीजे सुनिए कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आज शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे पेश करेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। शाम 7:20 पर ग्राम सभा में बेरा की गोट का विषय रहेगा डेयरी उद्योग रोजगार का साधन। भेंटवार्ता में सुनेगा ऑयल पाम की खेती किसानों के लाभकारी विषय पर ली गई भेंटवार्ता श्री टिकेश्वर राम दिवाकर से। शासकीय उद्यान रोपणी पुरपुरा जांजगीर चापा से भेंट करता होंगे महंगू भैया। मौसम मंडी और सामयिक सुझाव भी होंगे ग्राम सभा में। रात 8 बजे सुगम संगीत में अल्ताफ रजा को सुनिएगा। 8:15 पर पेश करेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, कल के कार्यक्रमों में सुबह 6:05 पर हम पेश करेंगे हर रोज की तरह आराधना। 6:30 पर खेती के बाद में सामयिक सुझाव का विषय रहेगा जून माह में सब्जी फसलों की खेती और देखभाल। वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का होगा। रामचरित मानस का गायन 6:35 पर सुनिएगा। 6:45 पर चिंतन में स्वामी आत्मानंद का आलेख सुनिएगा। विषय होगा निवारण। आज सुबह हम पेश करेंगे 7:05 पर और 7:30 पर होंगे सदाबहार नगद में आपके लिए। आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां। इसमें सुनिएगा पुरातात्विक स्थल मल्हार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व विषय पर श्री संजीव पांडे से महेंद्र साहू की बातचीत। 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर भी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। नए तराने 10:30 पर सुनिएगा और प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी का समय होगा 11 बजे। श्रोताओं, कल शाम 5 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार कोट। शाम 5:05 पर साहित्यिकी में सुनेगा कहानी चलमेश्वरी राव से, काव्य पाठ डॉ वीवी रमन किरण से, प्रस्तुति होगी डॉ सुप्रिया भारतीयन की। शाम 5:35 पर महिला सभा में सामयिक चर्चा का विषय रहेगा नारी शक्ति का अदृश्य संघर्ष। क्रम फोन करें, गीत सुने पेश करेंगे, प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। ईमेल करें, गीत सुने सुनिएगा शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे। शाम 7:20 पर ग्राम सभा में बेरा के गोट का विषय रहेगा पारंपरिक खेती। किसानवाड़ी में आज के बाद सुनिएगा बकरी पालन और पशुधन प्रबंधन विषय पर। भेंटवार्ता में सुनिएगा स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित

0: कार्यक्रम किसानवाड़ी गांव में। ग्राम सरायपाली विकासखंड कोटा में महिला स्व सहायता समूह द्वारा दाल प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट। संपादन चित्रलेखा तिवारी, प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। रात 8 बजे सुगम संगीत में अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के गाए गैर फिल्मी गीत और गजल आप सुनेंगे। 8:15 पर रजनीगंधा पेश करेंगी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। आकाशवाणी रायपुर से अब हम रिले करेंगे छत्तीसगढ़ी में समाचार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में प्रसारित किए जाएंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री आज रायपुर के रेलवे स्टेशन ले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर विशेष ट्रेन ला हरा झंडा दिखा के सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के शुरुआत करें। दुर्ग पुलिस ऑनलाइन जुआ सट्टा और म्यूल अकाउंट चलैया अंतर्राज्यीय गिरोह के खुलासा करे है। औ छत्तीसगढ़ में आज मानसून के दस्तक। मौसम विभाग दंतेवाड़ा जिला ले दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश के पुष्टि करे है। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन ले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर विशेष ट्रेन ला हरा झंडा दिखा के सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के शुरुआत करें। ये मौका मा श्री साय कहिन कि सोमनाथ मंदिर हमर राष्ट्रीय स्वाभिमान सांस्कृतिक गौरव और आस्था के प्रमुख केंद्र है। सोमनाथ मंदिर ला कतकोन घाव विदेशी मन तोड़िन फिर हर घाव मंदिर ला बना लेगी। यहा देशवासी मन के अटूट आस्था ला दिखा थे। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल कहिन कि सोमनाथ धाम के ये यात्रा श्रद्धालु मनला सिर्फ आध्यात्मिक अनुभूति भर नहीं देही, एकर अलावा भारत के महान सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्रीय गौरव ला जाने के मौका घलो दीही। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत विशेष ट्रेन ले प्रदेश ले सोमनाथ पर 1000 ले ज्यादा विशिष्ट लोगन पद्मश्री राज्य और राष्ट्रीय सम्मान ले सम्मानित कलाकार और साहित्यकार मन रवाना होइन। यात्रा में शामिल श्रद्धालु मन छत्तीसगढ़ के शिव मंदिर मन के पावन भूमि के माटी कलश और पवित्र नदी के जल कलश बाबा सोमनाथ ला अर्पित करही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ला वैश्विक उत्सव बनाए बर दुनिया भर के लोगन बर अपन आभार जताइन है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री कहिन है कि ये देख के खुशी होते कि योग सबो क्षेत्र और आने आने देश के लोगन ला स्वस्थ जीवन के एक संग्रह खोज में एकजुट करत है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में काली बीजापुर जिला में कर्रे गुट्टा पहाड़ी में घलो सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान मन सामूहिक योगाभ्यास करें। ब्लैक फॉरेस्ट के नावले प्रसिद्ध 5000 फीट ऊंचाई पहाड़ी कभू माओवादी मन के सबले सुरक्षित गढ़ रहीस। फिर पाछू बचर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सुरक्षा बल के टीम माओवादी मन के गढ़ ला ध्वस्त कर दे रहीस और तलाशी अभियान में यहाँ ले भारी मात्रा में हथियार और 450 ले ज्यादा आईडी बरामद करेगी रहीस। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास प्लस 2.0 सर्वे के आखिरी प्राथमिकता सूची बनाए बर 24 जून के राज्य के 11,600 ले ज्यादा ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के आयोजन करे जाही। ये ग्राम सभा में आवास योजना पर सर्वेक्षण के आधार में तैयार सूची ला सार्वजनिक रूप ले पढ़ के सुनाए जाही। यदि कोनो पात्र हितग्राही के नाव सूची में नहीं आही या कोनो प्रकार के कमी दिखी त ग्रामीण मन ग्राम सभा में दावा और आपत्ति पेश कर सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बच्चर पूरा होए के मौका में नारायणपुर जिला में अबूझमाड़ क्षेत्र के ओरछा में जन कल्याणकारी योजना के फायदा लोगन तक पहुंचाए बर 3 दिवसीय शिविर लगाएगी। विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान में लगे ये शिविर में प्रशासन ला मिले 396 आवेदन में 277 मामला के मौका में निपटारा करेगी। राज्य में खनिज संसाधन के संरक्षण नियम के अनुसार ओखर उपयोग और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाए बर सरलग कार्रवाई करे जाते।

0: एकड़ी में केन्द्रीय खनिज उड़न दस्ता के संग्रह टीम हा शिकायत के आधार में काली और आज आने आने जिला में औचक निरीक्षण करके जांच अभियान चलाईस। ये दौरान बलौदा बाजार के खपरी डी में चूना पत्थर के भंडारण स्थल और खदान में अनियमितता पाए जाए में 6 टन क्रशर इकाई ला सील बंद करके वहां के संचालक मंडला नोटिस जारी करेगी। इसने सारंगढ़ बिलाईगढ़ के ग्राम दहिदा में महानदी क्षेत्र में अवैध रूप ले रेत खनन करैया मशीन ला जब्त करके सील बंद कर देगी। एकर अलावा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के दंडा स्वाही मां केवाई नदी पसौरी कुटरा और हसदेव नदी क्षेत्र के अवैध रूप ले रेत उत्खनन करैया मनला कारण बताओ नोटिस जारी करेगे है। छत्तीसगढ़ ही समाचार बुलेटिन आप मैं आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: औ अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। जांजगीर चांपा जिला के अकलतरा पुलिस हा आतंकी संगठन ISI के संपर्क में होए के आरोप में एक जन युवक ला गिरफ्तार करे है। पंजाब निवासी सेवक सिंह ऊपर आरोप है कि वह अकलतरा में रह के ठेकेदारी के काम के आड़ में मोबाइल के माध्यम ले गोपनीय जानकारी विदेश भेजत रही। जांच में उखर संपर्क पाकिस्तान सऊदी अरब और मैक्सिको ले जुड़े हुए के बात आगु आए है। पुलिस हा उखर मोबाइल जब्त करके जांच बर साइबर सेल ला भेज दे। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन जुआ सट्टा और म्यूल अकाउंट चलैया अंतर्राज्यीय गिरोह के खुलासा करे है। ये मामला में 3 आरोपी मनला गिरफ्तार करे गए है। आरोपी मंत्री ले 81 ATM कार्ड 62 बैंक पासबुक 5 चेकबुक 13 मोबाइल 11 सिम कार्ड 1 लैपटॉप और हार्ड डिस्क संग्रह करीबन 2.5 लाख रूपया मूल्य के सामान जब्त करे गए है। पुलिस ला सूचना मिले रही कि ITI खेल मैदान तीर कोनो युवक मन लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम ऑनलाइन जुआ सट्टा चलावत हैं। सूचना के आधार में पुलिस हा घेराबंदी करके आरोपी मन ला गिरफ्तार करिस। पूछताछ में आरोपी मन हा ऑनलाइन सट्टा खेलाए के और एखर बर आर्थिक रूप ले कमजोर लोगन के नाव ले म्यूल खाता खुलवाए के बात ला कबूलिन। पुलिस हा लोगन ला अपील करे है कि ओमन हा कोनो भी मनखे ला अपन बैंक खाता ATM कार्ड पासबुक चेकबुक या सिम कार्ड उपयोग करे बर झन देवें। काबर की ऐसन दस्तावेज के उपयोग साइबर अपराध ऑनलाइन सट्टा वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसन अवैध काम बर करे जा सकत है। संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय रायपुर में काली 23 जून के पेंशन संवाद के आयोजन करे जाही। ये कार्यक्रम विशेष रूप ले ओ पेंशन भोगी मन भर है जौन मन हा संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय के छत्तीसगढ़ सर्कल ले अपन पेंशन पावत हैं। ये दौरान पेंशनर मन के समस्या के निपटारा करे जाही और उनखर सुझाव सुने जाही। कबीरधाम जिला के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना हा सरलग दूसर बछर जून महीना में किसान मन ला समर्थन मूल्य और उपराह राशि के भुगतान करके देश के सहकारी शक्कर उद्योग में नवा कीर्तिमान बनाए है। कवर्धमा काली हो एक ठन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा 29,43,00,000 रूपया ला सीधा किसान मन के बैंक खाता में भेजिन। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप हा दंतेवाड़ा जिला में ढोलकल ट्रैकिंग रूट के लोकार्पण करिन। जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत करीबन 61 लाख रूपया के लागत ले एला बनाए गया हवे। आशा जताई जावत थी कि रद्दा के शुरू होले क्षेत्र में साहसिक पर्यटन ला बढ़ावा मिली और स्थानीय युवा मन ला रोजगार के नवा मौका मिली। कलकत्ता में हुए ऑल इंडिया ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के स्केटर मनहा सुघर प्रदर्शन करत 15 ले ज्यादा पदक जीते हवे हैं। इमा विशेष रूप ले भिलाई ले चुने गए सबो 8 खिलाड़ी मनहा पदक हासिल करिन है। देश भर के 400 ले ज्यादा खिलाड़ी मन के ये प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन पर खेल संगठन और खेल प्रेमी मनहा खुशी जताइन है। अब पेश है मौसम के हाल। छत्तीसगढ़ में आज मानसून हा दस्तक दे दे है। मौसम विभाग हा दंतेवाड़ा जिला ले प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश के पुष्टि करे है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी हा आकाशवाणी समाचार ले बात करत अवैया 24 ले 48 घंटा के दौरान राज्य के कतकुन हिस्सा

0: मा बरसा के गतिविधि बढ़े के संभावना जताई है। अब थोरकुन समाचार सार मा छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी मन शिक्षा सत्र 2026-27 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीनीकरण बर 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकत हैं। और कोरबा शक्ति मुख्य मार्ग मा ट्रैक्टर के टक्कर ले दुपहिया में बैठे एक झन युवक के मौकाचमा मौत हो गए। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फिर मुख्यमंत्री है आज रायपुर की रेलवे स्टेशन ले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर विशेष ट्रेन ला हरा झंडा दिखा के सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के शुरुआत करें। दुर्ग पुलिस ऑनलाइन जुआ सट्टा और म्यूल अकाउंट चलैया अंतर्राज्यीय गिरोह के खुलासा करे है। और छत्तीसगढ़ में आज मानसून के दस्तक मौसम विभाग है दंतेवाड़ा जिला ले दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश के पुष्टि करे है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। डीजे पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत श्रोता हूँ। और ईमेल आपके लेकर हाजिर हो गए हैं श्रोताओं। ये श्रोता है नानघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भागेश्वरी टिकेश्वर, रितु राजपूत, बुटुंगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल विनीत, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुरीत रमेश साहू, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, तरुणा सुलोचना, चेतन भगत, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दिल्ली से आसमा परवीन, अमना परवीन, मलि भाई अंसारी, संबलपुर कांके से फागुराम ज्योति, ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अबान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज अहद, मिफरा नवाज चाहत, बिलासपुर से छन्नू लाल, अनीता पुष्पा अंजू, योगिता श्रवास, रजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गनूला रजक, मुली छेत्री, साउथपुर से ऋषि रितेश कंचन माहीसेन, जमशेदपुर से हरजेंद्र सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, मुंबई से आदिबा नास, फातिमा नसरीन आलिया और सबा अंसारी, जलंधर से संदीप जतौलिया, तेलंगाना से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, नैना सुकन्या और सविता भाकरे, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, टुकटुक प्रिंस, एकांत, सुमित, ध्वनि गवाड़कर, जलंधर से मीना कौर, मनत नूर, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा श्राव्या, भाटापारे से बचकामल, मोतीलाल, सियाराम चौवाराम, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी, ओरछीपारा भाटापारे से अनीता साहू, वीड़ा नेहा मोनिशा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फा डावर, खुश नसीब अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे। गुरुदाली फिल्म का गीत लीजिए सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में। गुलजार की शब्द रचना है भूपेन हजारिका का संगीत।

और अगले गीत की फरमाइश इन श्रोताओं की है। पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया, राजकोट से जुली जगदीश, प्राची और प्रवीण पुजारी, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब लड्डू, हाजी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, जगराव से सुनील पाठक, कंवर पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या सुच्चा सिंह पाठक, धुरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिठा, अलका मिठा, बठेना पाटनदूर से पलकरण वर्मा, अंजनि, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयास, शिवम, रेखा, धनेश्वरी वर्मा, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ, ऋचा देवांगन, कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सईद मसरूर, सैना, हसन, नाजिया, इब्राहिम, सलामत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, अलकमा खत्री, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री, रुद्रा खमारी से अक्रम अमीन, अर्श आतिका, लोहगढ़ ठाकुरवाड़ा से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह, रिग्नी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुना रहे हैं आप सभी।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: ड्रीम गर्ल फिल्म का ये शीर्षक गीत आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: वाई भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन अपार ढिंगिया। लूतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। तीवरता डबरीपारा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र जयंती, ममता मनीषा, मंजू मानसी, सुरेंद्र मोहन, सहोदरी बाई, मनमोहन, गिरजाबाई, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी। बघेरा दूर से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ, शौर्य नामदेव। बुड़गहन से रामदुलारी, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता प्रजापति। पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम, वीणा, विनय, शंकर पांडे। महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा खटक। लगान पंडेरे से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणि, साहिल भारती बघेल। जवानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल। फाजिलका पंजाब से सुभाष गुदारा, विमला, इंदु पार्वती, हिमांशु। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र, मोहिनी कल्पित, गर्वी, हिमाक्ष। रामगढ़ केंट से महेंद्र मोदी। डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया नारंग। बुलढाणा वटशिंगी महाराज से अमोल बानकर, शोभा ताई, दीपाली और श्लोक कुमार। लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ। सोंगा धमतरी से कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन। कुफारगली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा, प्रथमेश पांडु रंगकुंभार। रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरव, सैना, मैंडी शर्मा। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर, मनु। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। धनौरी तेलीवाल से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और आयान। समीर का लिखा गीत नदीम श्रवण की तर्ज पर। लीजिए पेश आप सभी की फरमाइश पर अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वरों में राजा फिल्म का ये गीत।

जनकपुरी से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, पठन से परमेश्वर साहू, राजपति टोप सिंह, काजल पूर्वी, हेजल राजेश, रेशमा साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिढा, रका मिढा, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, राजपुर से जूली, जगदीश प्राची और प्रवीण पुजारी, गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एस एम जावेद, सरगुप्ता अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहमुन्ना, तखतपुर से मिशिला विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कायल, नानक चंद मल्होत्रा, नागरकोरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा आराध्या साहू, महाराष्ट्र से रूपेश महेश, प्रज्ञेश प्रीतेश, संघई बागलपुर से कमल किशोर साहू, अश्विनी, अमरदीप, पशुपति ठीकू, मुस्कान, तत्रंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, खतियापारा जुना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, सनी, रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन। सुनवा रहे हैं आप सभी को दूसरा आदमी फिल्म का गीत, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वरूप।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए दूसरा आदमी फिल्म के गीत के साथ ही ईमेल करें कि सुने कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी बिलासपुर है, 6:45 होने को है। प्रादेशिक समाचारों के लिए अब जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अकलमंदी की बात की है।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत आज रायपुर से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मानसून ने आज छत्तीसगढ़ में दस्तक दी। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। दुर्ग पुलिस ने म्यूल अकाउंट नेटवर्क चलाने और ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और लेखा नियंत्रक का कार्यालय रायपुर द्वारा कल पेंशन संवाद का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री साय ने कहा कि सोमनाथ मंदिर हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रमुख केंद्र है।
1: आज बड़ा सुबह का विषय है कि छत्तीसगढ़ से 1000 श्रद्धालु सोमनाथ जा रहे हैं, सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा में, जिनको आज हम लोग ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर विदा किए हैं। और ये जो श्रद्धालु हैं, इसमें पद्मश्री भी हैं, इसका पूजा अर्चन करेंगे और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगेंगे।
0: संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि सोमनाथ धाम की यह यात्रा श्रद्धालुओं को केवल आध्यात्मिक अनुभूति ही नहीं बल्कि भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्रीय गौरव को निकट से अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करेगी। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत विशेष ट्रेन से प्रदेश से सोमनाथ के लिए 1000 से अधिक विशिष्टजन, पद्मश्री, राज्य और राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कलाकार तथा साहित्यकार रवाना हुए। यात्रा में शामिल श्रद्धालु छत्तीस

0: छत्तीसगढ़ के शिवालयों की पावन भूमि के माटी कलश और पावन नदियों का जल कलश बाबा सोमनाथ को अर्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने दंतेवाड़ा जिले से प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश की पुष्टि की है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई है।
1: आज 22 जून को दक्षिण पश्चिमी मानसून 2020 छत्तीसगढ़ में ऑनसेट किया गया है। दंतेवाड़ा तक मानसून का प्रोग्रेस हुआ है और प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
0: मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मानसून प्रदेश में सामान्य तिथि की तुलना में करीब 10 से 12 दिन की देरी से पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल बीजापुर जिले में कभी माओवादियों का गढ़ रही कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर भी सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से मशहूर 5000 फीट ऊंची यह पहाड़ी कभी माओवादियों का सबसे सुरक्षित गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले वर्ष ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सुरक्षा बलों ने माओवादियों के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया था और तलाशी अभियान के दौरान यहां से भारी मात्रा में हथियार तथा 450 से ज्यादा आईडी बरामद किए गए थे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास प्लस 2.0 सर्वे की अंतिम प्राथमिकता सूची के निर्माण के लिए 24 जून को राज्य की 11,600 अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में आवास योजना के लिए सर्वेक्षण के आधार पर तैयार सूची को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा। यदि किसी पात्र हितग्राही का नाम सूची में नहीं है अथवा किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है तो ग्रामीण ग्राम सभा में दावा और आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। राज्य में खनिज संसाधनों के संरक्षण, उनके नियमानुसार उपयोग और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने शिकायतों के आधार पर कल और आज विभिन्न जिलों में औचक निरीक्षण कर जांच अभियान चलाया। इस दौरान बलौदाबाजार में खपरीडीह में चूना पत्थर के भंडारण स्थल और खदानों में अनियमितता पाए जाने पर 6 क्रशर इकाइयों को सीलबंद कर संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किए गए। इसी प्रकार सारंगढ़ बिलाईगढ़ के ग्राम दहीदा में महानदी क्षेत्र में अवैध रूप से रेत उत्खनन कर रहे मशीन को जब्त कर सीलबंद किया गया। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के दंडाह स्वाही स्थित केवाई नदी, पसौरी कुटरा तथा हसदेव नदी क्षेत्र के अवैध रूप से रेत उत्खनन करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन जुआ सट्टा और म्यूल अकाउंट नेटवर्क चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 81 एटीएम कार्ड, 62 बैंक पासबुक, 5 चेकबुक, 13 मोबाइल, 11 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप और हार्ड डिस्क सहित करीब 2.5 लाख रुपए मूल्य की सामग्री जब्त की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक या सिम कार्ड उपयोग के लिए न दें, क्योंकि ऐसे दस्तावेजों का उपयोग साइबर अपराध, ऑनलाइन सट्टा, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों में किया जा सकता है। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने आतंकी संगठन आईएसआई के संपर्क में होने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पंजाब निवासी सेवक सिंह पर आरोप है कि वह अकलतरा में रहकर ठेकेदारी के काम के आड़ में मोबाइल के जरिए गोपनीय जानकारी विदेशों में भेज रहा था। जांच में उसके संपर्क पाकिस्तान, सऊदी अरब और मैक्सिको से जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर साइबर सेल को जांच के लिए भेजा है। कबीरधाम जिले के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने ने लगातार दूसरे वर्ष जून महीने में ही किसानों को समर्थन मूल्य और अतिरिक्त रिकवरी राशि का शत प्रतिशत भुगतान कर देश के सहकारी शक्कर उद्योग में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कवर्धा में कल आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 29 करोड़ 43 लाख रुपए

0: सीधे बैंकों के किसानों के बैंक खातों में अंतरित किए। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने दंतेवाड़ा जिले में ढोलकल ट्रैकिंग रूट का लोकार्पण किया। जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत करीब 61 लाख रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस रूट के शुरू होने से क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ क्षेत्र के ओरछा में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के अभियान के तहत आयोजित इस शिविर में प्रशासन को मिले 396 आवेदनों में से 277 मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय रायपुर में कल 23 जून को पेंशन संवाद का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए है जो संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय के छत्तीसगढ़ सर्कल से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान पेंशनरों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और उनके सुझाव सुने जाएंगे। कोलकाता में आयोजित ऑल इंडिया ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के स्केटर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 से अधिक पदक जीते हैं। इनमें विशेष रूप से भिलाई से शामिल सभी 8 खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए हैं। इस प्रतियोगिता में देश भर से 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने आबकारी विभाग के 30 अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें जिला आबकारी अधिकारी और सहायक जिला आबकारी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। प्रवीण वर्मा को रायपुर जिले का प्रभारी आबकारी उपायुक्त बनाया गया है। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में तकनीकी कार्य की वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन और हीराकुंड एक्सप्रेस 16 से 20 जुलाई के बीच परिवर्तित मार्ग से चलेगी। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी शिक्षा सत्र 2026-27 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कोरबा शक्ति मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर की टक्कर से दोपहिया सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत आज रायपुर से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मानसून ने आज छत्तीसगढ़ में दस्तक दी। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। दुर्ग पुलिस ने म्यूल अकाउंट नेटवर्क चलाने और ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और लेखा नियंत्रक का कार्यालय रायपुर द्वारा कल पेंशन संवाद का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।

प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 को स्टूडियो में पशु चिकित्सालय बरतोरी बिलासपुर के पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉक्टर रंजना नंदा उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा बरसात पूर्व पशुओं को रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण और सुबह 11:00 से 11:30 तक का विषय होगा पशु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 92 और 3100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 0752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 25 जून 2026 और 26 जून 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक

सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए पेश है ईमेल करें कि सुने का शेष भाग।

कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनने के शेष भाग में आपका पुनः स्वागत श्रोताओं। शामिल कर रहे हैं आप सभी के ईमेल पॉडिंग खेड़ा पंजाब के श्रोता हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दीक्षा गोस्वामी, हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार दूड़ी, महसौ से तमणी, बिहार से नुसरत जहां, नाज, तलत, फरहत, रिफत, नुजहत, साजिया, साहिन, नाज और नाजिया, नूरी नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान, उत्तम जमदाड़े, भूजो कैचिया, भटिंडा पंजाब से परन सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दबिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी, विरमकाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, पूजा परिहार, रायगढ़ बिहार से उमा राजपवन, संजीव दीपक और कमल उमा, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलामा साबी रही, महाराज जहां, अड़ारनाथ घाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, समडिल नवापार से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, सरगुजा मैनपाट से अजीता पाल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा, करजत मुंबई से अब्दुल कलाम रईस, अब्दुल सलाम रईन, पिपलोर सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा, पहांदा बलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन, खबरिया से साबिक खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, बलौदा से दिलहरन गौतम, अंजलि, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र शाह, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेशराम मिस्त्री, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका, वाणी थांदी, मदनपुर से श्रवण कुमार, योगेश, राहुल साहू, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार, वसुधा, वज्रसेन, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव, एस के पप्पी, सहारनपुर से आशु, कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरहीन अब्बासी, दानिश गुनौरी, रायपुर से विनोद वंडलकर, भीड़ा, विविधा वंडलकर, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला और ओमकार सुरलकर। सुनवा रहे हैं आप सभी को मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत, अनजान का लिखा, कल्याण जी, आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ, किशोर कुमार के स्वर में ये गीत।

कार्यक्रम के आरंभ में आपने सुना किशोर कुमार के स्वर में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत, और अगले गीत की ईमेल पर मिली हुई फरमाइशें आप सभी की, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, माया कुमार, जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर, गंडई पंडेरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विकी नानू, रविंद्र रौनक, रसेगड़ा से मुरलीधर लक्ष्मी देवी, योगेश संध्या कीर्ति, डिकेश वासु, डॉली पूर्वेश साहू, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी, बागबहरा भदरसी से पन्ना लाल, खुशबू तारा, कौशल सेन, फाजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल विशु, लड्डी शालानी, टिवांशी वानी, आर बी खेरा, पांडर कौड़ा से अनिल, उषा, अनुश्री, धनश्री, खोंदरा उदयपुर से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सुमारसा कलेश्वर सिंह, सुखराम हीरामणि, ऐश्वर्या पैकरा, भाटापारा से प्रेमलाल, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र साहू, दिल्ली से लाल बाबू, उमा राज, दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटो, डॉली कबीर जाटो, देवशंकर भूतकछा, लोरमी से दुर्गेश, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, महोबा बुदनखंड से उदयभान पाल, जय हिंद, दीक्षा प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल, अकोला से सुशीला देवी, मंदुरकर सदानंद, गौरव आरो और अर्पिता, पैठर से सूर्य जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव, पौड़ी भट्टा, कलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम निखिल चंदन, वसुंधरा प्रांजल, जलंधर से संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत, भरत कमल साहनी, मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इसरार नरगिस खातून, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुनू सुरेश, राजपाल पंकज काजल सीमा।

मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलवीर सिंह सहारनपुर से सुरेश नारंग आशु नारंग सोनाली नारंग अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकिरत गुरशब्द सिंह राहुल पुरानी भिलाई चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी हमीदुन जिशान अहमद शाहनवाज अहमद सिद्दीकी दिल्ली से सुखवीर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना जनकपुर से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबेरा झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया जमशेदपुर से अपूर्व सिंह अनुपम और राकेश कुमार सुन रहे हैं आप सभी की फरमाइश पर आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में समीर की शब्द रचना नदीम श्रवण की तर्ज पर दिल का क्या कसूर फिल्म का ये गीत

कार्यक्रम के आखिर में आप सभी की फरमाइश पेश है। ईमेल पर मिली हुई ये फरमाइशें आप सभी की हैं। उमरखेड़ महाराज से अभिजीत गवाणकर, सरिता प्रिंस, एकांश गवाणकर, मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, यमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, विट्टा बजाज, अम्बाकर चौकी से रिजवान खान।

आयशा सबीहा अनस और रेहान, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि शीतल राजेश, पुटियागढ़ दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा साहू, लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, डुमराव से वलीउल अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी, इफजल ताज, कुटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय, हैप्पी राय, नरवेल महाराज से पी एस नवानकर, निर्मला, विशाल नवानकर, सौंगा मंगलोर से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन, कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले, लोहारी डी कवर्धा से अशोक कुमार, लीलेश्वरी, खुशांत, निशांत साहू, रोहासी से मुकेश साहू, नंदनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू, नथाना पंजाब से हरजिंदा छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, चिरमेरी कुरासिया कार्ड से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद, कालिंद्री लहरे, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी, राजेश्वरी, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी मनवर, दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, राजे जाधव, संचित, वायर, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली, सर्व देशमुख, दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, चैतन्य मस्किन और मेघा मस्किन। दिल एक मंदिर फिल्म का गीत लीजिए पेश है लता मंगेशकर के स्वर में। हसरत जयपुर के लिखा गीत है शंकर जयकिशन की तरफ।

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। इस गीत के साथ ही ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं।

सबो संगवारी मल्ला बैसाखू के जय जोहार संगी हो आज सोमवार होगे और धीरे धीरे कही ये जून के महीना घलो नहकत चले जाते और संगी हो खेती किसानी में अगोरा रहते पानी के पानी बादर तो दिखते फिर गिरा नहीं है ना कभो कभो जंगल रात डहर तो गिर जाते फिर पानी के जेन अगोरा है ये हर बने बात है अब पानी गिर ही तहां संगवारी मन तो फिर खेती किसानी के जिन है ना बूता एमा भारत राजा है अभू थोरकन अगोरम हीन और ऐसे हीन अकरस जोताई घलो कर डारीन कतको झीक तो हम देखे हैं ना ओमन धान घलो खुर्रा बुनी कर डारे हमें तो पानी लगती आ गए है ना बस्तर मा आ गए है वह हलू हलू इहू ढर आवत जाते काबर के पूछत रहती बैसाखो भैया अपन ज्यादा जाना था बतावा ऐसे कहके तो बतावत हन और एक ही संगी हो खेती किसानी करबो एमा तो आमदनी है एक ठिकाऊ चीज में आमदनी है अब एक ठीक नहीं खेती किसानी ले जुड़े हर बूता में आमदनी होते और बढ़िया फायदा लेना है तो कई प्रकार के काम करे बर पड़ते संगी हो जेकर से जीवन यापन होए और मन के बढ़िया आराम के साथ परिवार के साथ में गुजर बसर कराए तो यही बात ला बताबो और आज के जिन विषय है ये विषय है डेयरी उद्योग ले रोजगार के साधन कैसे बन सकते है अब कहिया हमार नंग पैसा नहीं है भाई डेयरी उद्योग करे बर ते एहू बात ला बताबो कहाँ ले संपर्क करिया एहू बात ला बताबो किसानी के संग गांव के आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर एक ठीक जिन बूता बताए ना डेयरी उद्योग और खेती के संग में आपन कर सका था तो एकर बर गाय है भैंस है एकर पालन करके पोस के अपन आमदनी ला बढ़ा सकता डेयरी उद्योग कम पैसा अने कम पूंजी में शुरू करे जा सकत है और कई झीन ला रोजगार घलो एकर से मिलत हवे डेयरी उद्योग ले गोरस घलो बेच सकत हन संगे संग गोरस ले हम दही बना दी आजकल देखिया तो कई ठीक दुकान खुल गए है ना डेयरी वाला देखिया एमा दही तुरते बिहनिया दही बन जाते और जहाँ ऐसे करके तो आप मन को हो ओरिजिनल दही रखिया तो और ज्यादा बिक्री हो ही है ना अब फिर घी बेच सका था पनीर है छेना है ये सब ले पोट कमाई है संगी हो बांचे नहीं पावा है ना और डेयरी व्यवसाय ले जुड़ना है तो संपर्क करे के जिन बात है आप मन कर सका था अपन तीर के जिन पशु चिकित्सक है ना उनकर से संपर्क कर सका आसान जिन पशुपालन विभाग रहते हर जिला में उन्हों से संपर्क कर सका था और योजना घलो बड़का है डेयरी उद्यमिता विकास योजना और ये योजना के तहत में अपन को फायदा ले है ना तो पशुपालक मल्ला बैंक ऋण मिलते एमा अनुदान है पशु के बीमा होते कृत्रिम गर्भाधान के बारे में प्रशिक्षण घलो दे जाते और कई बात के प्रशिक्षण दे जाते महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से घलो आप मन डेयरी उद्यमिता विकास योजना ले जुड़ के योजना के फायदा आप मन ले सका था आओ अपन तीर के पशुपालन विभाग जैसे कहे हैं ना वहाँ के डॉक्टर से आपन संपर्क कराओ और पूरा जानकारी लेवाओ डेयरी उद्यमिता विकास योजना नाबार्ड के माध्यम से चलाया जाते और एमा सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर अलग अलग अनुदान के पात्रता घलो है जैसे कि उदाहरण बतावत हन 10 ठीक आप मन बढ़िया उन्नत नस्ल के पशु रखिया तो लगभग 5 लाख के मा परियोजना लागत आते यानी खर्च आते समझा है ना ए हिसाब ले आप मन देख लेवा कि कतका के व्यवसाय करिया 20 ले 25 लाख तक के मा सरकार हर मदद करते तो बढ़िया भाई गोरस उत्पादन करा एकर से आओ जेन चीज है एकरो फायदा आप मन लेवा और सुना ये संदेशाला

0: बुआई भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हाँ संगी हो, आपो मल्ला सतर्क रहना है और सतर्क रहे बर हमार आकाशवाणी के कार्यक्रम ले जुड़े बर पर ही तो मोबाइल मा एप डाउनलोड आपन कर सकत है न्यूज ऑन AIR NEWSONAIR और सुनना चाहता आकाशवाणी बिलासपुर मोबाइल के द्वारा तो गूगल में जाके AIR बिलासपुर सर्च करा, फिर ऑप्शन आही छू देहा, फिर प्ले ला दबा देहा, फिर शुरू हो जाही कार्यक्रम है ना। और आगू के कार्यक्रम में लेगा थन आप मल्ला है ना, अपन मयारू की सुरता कैसे आते तो धुरुआ राम मरकाम और दुखिया भाई मन एक गीत के माध्यम ले बताते हैं कि बरिस भईगे रसिया बरिस भईगे।

0: हाँ संगी हो, कतका बढ़िया गीत सुने ना ना। बरिस भई गई रसिया, बरिस भई गई, अवताय नहीं है तो जिंदगी माँ रस नहीं है। ये गीत ला सुनाइन धुरवा राम मरकाम और दुखिया बाई। संगी हो, जिंदगी में रस तभी आते जब बढ़िया पैसा कौड़ी रही है ना, तभी रही। कतको झी कहते हैं पैसा कौड़ी है यदि मन के शांति नहीं है, वही बात ठीक है। तो मन के शांति कब आ है, इहूला बतावत है संगी हो। जब पैसा कौड़ी रही है बढ़िया बूता करत रहो है ना, फुर्सुट लगी बढ़िया बूता करबो। एकरे सेती अपन स्टूडियो में बुलावा थन बृहस्पत के पहुना मल्ला आने। बृहस्पत के 18 जून पर थे स्टूडियो में आए पशु चिकित्सा परतूरी बिलासपुर की पशु चिकित्सा सहायक संलग्न डॉक्टर रंजना नंदा। अब ये मन आए 10:30 ले 11 और 11 ले 11:30 बजे तक के बीच में दू ठीक विषय में गोट बात करी है ना। तो 10:30 ले 11 के जिन विषय रही बरसात पूर्व पशुओं को रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण और 11:00 बजे ले 11:30 बजे तक के जिन विषय रही हिंदी में बतावत है संगी हो पशु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी। तब तो ये विषय ले समस्या आप मन के हो है जिज्ञासा हो है मन में के कुछ प्रश्न करी और बढ़िया है ना। बरसात के पहली पशु मन ला टीका उका लगाए के बात है और पशु विभाग द्वारा जिन पशुपालन विभाग द्वारा जिन योजना के जानकारी है ना, ये सब बात हमारे ला करना है। तो फोन नंबर बता देथन बिलासपुर के यानी आकाशवाणी के 2665692 और एक ठीक आउ नंबर बतावा था को ए नंबर नहीं लगत रहे तो है 3126। यह आउ सरल है संगी हो 3100026। फोन लगाए के पहली कोनो नंबर में लगावा था तो देख ले हा बिलासपुर के एसटीडी कोड सुरुच में लगाए पड़ते 0775-2। आओ आप मन नेटवर्क के एरिया में रिहा कोनो प्रकार के कंझट मत होए, कोनो संगी साथी मन जहन गोठियाए ये बात के ध्यान रखिया। असन पाछू डहल ले आवाज आवत रहते हमला समझ नहीं आवाए तब तो सूचना सिरावत है। और जब रस के बाद चले है जिंदगी माना तो कब रही पैसा कौड़ी कमाबो ऐसे गोठियात रहना ना। तो भेंट वार्ता में आसुनावत हन आयल पाम की खेती ले किसान मन कैसे फायदा कमावाए तो जानकारी देवत हैं श्री टिकेश्वर राम दिवाकर। आप हैं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी शासकीय उद्यान रोपड़ी पुटपुरा विकास खंड नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा। आप मन से गोट बात करत हमें महंगू भैया मन तो आवा सुनी आयल पाम की खेती किसान मन पर लाभकारी।
1: किसान भाई हो, आयल पाम के खेती किसान मन पर लाभकारी ये विषय में जानकारी देवत हमें श्री टिकेश्वर राम दिवाकर जी मन जो हमें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी शासकीय उद्यान रोपड़ी पुटपुरा विकास खंड नवागढ़ जिला जांजगीर मा। तो सबले पहले तो श्री टिकेश्वर दिवाकर जी आप मल राम राम।
2: राम राम मंगू भैया।
1: सबले पहले जानना ये चाहत हन कि जैसे कि ये आयल पाम की खेती करना चाहत हमारे किसान भाई मन
2: जी।
1: तो

0: आयल पाम के खेती करे में कैसन भुइया के आवश्यकता पड़ते, कैसन माटी में उपजाए जा सकत है, लगाए जा सकत हवे?
1: गहरी उपजाऊ और अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है।
0: अगर जलवायु के बात करें तो कैसन जलवायु में उपजाया जा सकत हो?
1: जलवायु है सर उष्णकटिबंधीय, गर्म क्षेत्र, हल्का गर्म क्षेत्र में अच्छा उपजाऊ उपज अच्छा होती है।
0: आयल पंप लगाए बार अगर कहे जाए तो खेत की तैयारी कैसे ढंग करना चाहिए?
1: इसके लिए तैयारी है सर, लाइन से लाइन की दूरी 9 से 9 मीटर है, 9 बाई 9 बाई 9 मीटर के हिसाब से त्रिकोणी विधि से लगाई जाती है। प्रति हेक्टर इसका 143 पौधा प्रदाय की जाती है पौधरोपण की।
0: आयल पंप की अगर खेती करना चाहते किसान भाई बहन तो आयल पंप के किस्म कौन कौन से हवा है जेला लगा के हमारे किसान भाई बहन ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके? का कोनो किस्म होते का?
1: जी इसमें 3 प्रकार के हैं सर। इसमें पहला है टेमेरा,
0: अच्छा,
1: दूसरा है ड्यूरा और तीसरा है किसी फेरा।
0: अच्छा,
1: तो सबसे उत्तम वैरायटी है टेमेरा का।
0: अच्छा,
1: इसका सबसे उत्तम और व्यवसायिक रूप से सबसे मूल्यवान किस्म है, जिसे बागानों में खेती के लिए सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है।
0: अच्छा,
1: इसका कारण यह है कि इसमें गूदा ज्यादा होता है।
0: अच्छा,
1: इसमें तेल की मात्रा ज्यादा निकलती है इसमें। और दूसरा वैरायटी ड्यूरा, इसमें उतना अच्छा गूदा नहीं रहता है, इसलिए इसको किसान को ज्यादा चूस नहीं करना चाहिए, ना अपन सलाह नहीं देते हैं लगाने के लिए।
0: अच्छा अच्छा, हाँ, ये तीनों किस्म में कतक कतक तेल के मात्रा निकलते और सबसे अच्छा तेल के मात्रा कामा निकलते, केला थोड़ा सा बढ़िया ढंग से बता दे बाबू, कौन सा किस्म लगाना उचित हो?
1: किसान भाई इसमें ज्यादा अच्छा अच्छा टेमेरा वैरायटी को लगाना चाहिए।
0: आयल पाम के खेती करना है तो विधि ले बता देता, कौन से विधि ले ये लगाना चाहिए, कैसन ढंग से केला लगाए जाते?
1: जी इसको लाइन से लाइन लगाना चाहिए, त्रिकोणी आकार से, 9 मीटर लंबा है इसका, 9 मीटर है लंबाई पेड़ से पेड़ की दूरी है, लाइन से लाइन की दूरी भी 9 मीटर।
0: आयल पाम के खेती करे में का कोनो प्रकार के खातू माटी लगत हुई, कब कब डालना उचित हुई?
1: इसमें वैसे बहुत जरूरी है सर, लगाने के टाइम में कम से कम 10 से 15 किलो गोबर खाद डालना चाहिए। और अगर उसमें जैसे दीमक कंकरीली क्षेत्र है तो उसमें थोड़ा मात्रा भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं गोबर का जी, और इसमें डाल सकते हैं गोबर खाद है 10 से 15 किलो और 400 ग्राम सुपर फास्फेट पौधा के हिसाब से, 250 ग्राम डीएपी या 50 ग्राम फोरेट, इस प्रकार से अपन प्रति पौधा के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। और यार की बात करें प्रति वर्ष में 6-6 महीने के हिसाब से, तो इसमें यूरिया अपन दे रहे हैं तो 217 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से डालना चाहिए। सुपर फास्फेट है 312 ग्राम, पोटास है 167 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 125 ग्राम और बोरेट कम से कम 25 ग्राम, हर 6 महीना में इसका उपयोग करना चाहिए। उत्पादन होगा, पेड़ बढ़िया से बढ़ोतरी होगी इसकी। इसको 3 साल तक कम से कम अपन को रिपीट करना है खाद को।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे आप खातू माटी की बात बताए हैं तो ये तो व्यवस्था किसान भाई मन करते हैं
1: जी,
0: तो बढ़िया उत्पादन होते। अब बात आते सिंचाई की, तो काई में पानी की व्यवस्था करना पड़ी, सिंचाई की व्यवस्था करना पड़ी, कब कब सिंचाई करें?
1: सिंचाई की तो सबसे ज्यादा व्यवस्था बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि बिना सिंचाई के संभव नहीं है, क्योंकि पानी बहुत जरूरत है इसको।
0: अच्छा,
1: 30 से 40 लीटर पर दिन, मतलब पर कहना चाहिए प्रति पेड़ चाहिए सप्ताह में कम से कम।
0: अच्छा,
1: ड्रिप सिंचाई है टपक सिंचाई वाला, इसमें पर पेड़ के हिसाब से दे तो ज्यादा अच्छा है, पानी का सदुपयोग भी सही है।
0: अच्छा,
1: और नुकसान भी नहीं है पानी के इसमें।
0: हाँ,
1: और सिंचाई बराबर हर पेड़ में बराबर जाती है।
0: अच्छा, ये तो आप सिंचाई की व्यवस्था के बाद बता दिया है ना
1: जी। जी जी,
0: अगर हम किसान भाई में लगाना चाहत हम
1: जी,
0: तो जैसे हर फसल में खरपतवार नींदा लग जाते
1: जी,
0: तो का यू फसल में नींदा वींदा की समस्या आते का?
1: नहीं, नींदा के अपना आवश्यकता नहीं है शरीर में, निंदाई गुड़ाई जैसे सिंचाई देते हैं तो हल्का घास उस आता है ना, तो उसको निंदाई गुड़ाई करना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा, कोनो प्रकार के कीट रोग लगत हुई काय में?
1: नहीं, कीट व्याधि भी बहुत ही कम है इसमें।
0: अच्छा नहीं, अच्छा, जैसन कि अभी शासन के द्वारा उद्यान विभाग के द्वारा ज्यादातर कह जाए तो आयल पाम के खेती पर बहुत ज्यादा प्रयास करे जात हवे और लोग ला किसान भाई मल्ला तिला लगाए बर प्रेरित करे जात हवे है ना, विभाग द्वारा योजना घला चलत हवे, तो ये आयल पाम उद्यान विभाग द्वारा जो संचालित आयल पाम की जो योजना चलत हवे ये कौन सी योजना?

0: योजना है ना, ये योजना के बारे में बतावा।
1: ये योजना है नेशनल मिशन ऑन एडिबल आयल पाम क्षेत्र विस्तार है जी। इसके तहत अपन किसानों को सब्सिडी भी दे रहे हैं।
0: अच्छा,
1: सब्सिडी में जैसे पौध रोपण के लिए पौधा है उसके लिए दे रहे हैं 29,000 रूपया अनुदान है किसान का, 100% अनुदान है। और लगाने के लिए 5,250 रूपए दे रहे हैं, उसका गड्ढा खुदाई है, भराई है पौध रोपण के लिए जी। इसके साथ साथ में अपन दे रहे हैं उनको अंतर्वर्ती फसल लगाने के लिए भी दे रहे हैं 5,250 रूपया जी। और साथ साथ में अपन ड्रिप इरिगेशन में भी इसको दे रहे हैं सिंचाई के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है सिंचाई। इसमें दे रहे हैं अपन 33,399 रूपये लागत है ड्रिप सिंचाई।
0: अच्छा
1: जी, पर हेक्टर में इसमें दिया जा रहा है 14,130 रूपये अनुदान दे रहे हैं।
0: अच्छा,
1: 45% बड़े किसान को है सर, छोटे किसान को है इसमें 17,269 रूपया है।
0: अच्छा,
1: और इसमें सहयोग एक केंद्र सरकार के, राज्य सरकार इसमें अलग से दे रही है सहयोग।
0: अच्छा,
1: राज्य सरकार दे रही है इसके विशेष सहयोग के लिए 8,635 रूपया।
0: अच्छा
1: जी, छोटे किसान बड़े किसान दोनों को।
0: अच्छा
1: जी, इसके साथ में दे रहे पंप सेट, पंप अगर कोई किसान के लगा रहे जिसके पास सिंचाई के साधन है, पंप की कमी है उसको नहीं लगा पा रहे,
0: अच्छा
1: तो उसको भी 50,000 रूपया अनुदान दे रहे हैं।
0: बढ़िया, बहुत अच्छा, मतलब बहुत लाभकारी हवे किसान भाई मन पर, है ना भाई। तो आयल पंप की योजना के अगर किसान भाई मन ला लाभ लेना है तो एक लाभ कैसे ले सकत हमें?
1: अच्छा, ये उद्यान विभाग है हर ब्लॉक में जिला के, जहाँ से हमारे किसान बंधु जाके किसान संपर्क कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए किसान को चाहिए, किसान का निजी जमीन होना जरूरी है और जो आधा हेक्टर जो 225 एकड़ से लेके जितना भी किसान के जमीन है उसमें आप रोपण कर सकता है, उसमें पूरा अनुदान है, इसमें कोई छोटा बड़ा किसान का नहीं है।
0: अच्छा, ये योजना के अगर लाभ लेना है तो कौन कौन से ऐसे कागजात लगते है ना भाई, और कौन से दस्तावेज लगते हमारे किसान भाई मन बताओ आप।
1: तो इसमें है सर, अनुदान लेना है किसान को सबसे पहले अपना जमीन के नक्शा खसरा विवरण देना पड़ेगा, उसके साथ में सहयोगी आधार कार्ड का फोटोकॉपी है, एक पासपोर्ट फोटो देना पड़ेगा, बैंक खाता को उसका फोटोकॉपी देना पड़ेगा।
0: अच्छा
1: जी, ये उनका जरूरी कार्य है। उसके साथ में हम उनको आवेदन के लिए आवेदन लेंगे, उसको भरेंगे अपना।
0: अच्छा,
1: इस प्रकार से अनुदान उसका लाभ ले सकते हैं।
0: ये प्रक्रिया में कितने दिन लग जाते हो?
1: कोई नहीं है, किसान अगर पूरा डॉक्यूमेंट लेके आता है तो एक ही दिन में उनको आवेदन भर देंगे अपन, कोई ज्यादा टाइम नहीं है।
0: ये आयल पंप की खेती पूरा फसल कब तक तैयार हो जाते है बताओ आप दिवाकर जी।
2: लगाने के 4 साल बाद से उत्पादन चालू हो जाता है इसमें जी, और इसमें लगाने के बाद 4 साल हो गया उत्पादन, उसके पट्टी पे कम से कम मतलब 15 क्विंटल प्रति हिसाब से निकलता है इसका।
0: अच्छा
2: जी,
0: ये बीच में जो 4 साल कह जाए 4 बच्चर खाली रह जाते जैसे बता है कि अंतर्वर्ती फसल हमारे किसान भाई में ले सकत है, तो इसमें कौन कौन से अंतर्वर्ती फसल हमारे किसान भाई में ले सकत हमें?
2: इसमें देखिए, किसान अपने सुविधा के हिसाब से कोई भी साग सब्जी ले सकता है, छोटे फसल से, क्योंकि 4 साल पड़ने पेड़ बढ़ने में टाइम लगेगा, तो किसान साग सब्जी लगा सकता है, जैसे टमाटर है, भट्टा है, आजकल ग्राफ्टेड भट्टा का बहुत प्रचलन है, मार्केट में भी अच्छा रेट है उसका, तो किसान अपना लेके ग्राफ्टेड भाटा भी लगा सकता है, ग्राफ्टेड टमाटर भी लगा सकता है उसके भीतर में, या कुछ भी जैसे हमारा सब्जी लगा सकता है सीजन के हिसाब से, मौसमी
0: सब्जी के नाम बताइए ना,
2: जैसे टमाटर है, भाटा है, मिर्ची है, ये सब चीज लगा सकते हैं किसान। हल्दी अदरक भी लगा सकते हैं, हल्दी है, अदरक है, उसमें विभाग द्वारा हमारा सब्सिडी भी दिया जा रहा है हल्दी अदरक में। किसान अगर चाहे तो अपने यहाँ से भी ले सकता है, 5,250 रूपए का तो अंतर्वर्ती फसल के लिए हम लोग दे ही रहे हैं पैसा, लेकिन उसके छोड़ के किसान को जैसे हल्दी क्षेत्र विस्तार में है, मसाला क्षेत्र विस्तार में है, इसमें अभी हल्दी अगर लगा रहा है तो बढ़िया खासी उसको 2.5 क्विंटल के लिए अपना विभाग दे रहा है अनुदान जी, और 43,000 रूपए इसमें समथिंग उसका लागत के अनुदान के है, और अदरक में है 48,000 की लगभग।
0: अच्छा
2: जी, इसमें किसान

0: लगा के बढ़िया से मुनाफा कमा सकता है किसान। और जैसे बीज के जगह का है उसका उपयोग भी हो जाएगा और किसान को दो पैसा लाभ भी मिलेगा उसमें फसल का मेहनत बाद में उसे कर उसके तहत में पेड़ पौधा को भी दवाई खाद मिल जाएगा उसके अवधि में। अपना जो पाम प्लांट लगा रहे हैं उसके जगह में तो जुताई निदाई गुड़ाई होगा और देख रेख होगा किसान का सिंचाई होगा तो बहुत फायदा होगा। इस तरीका से किसान लाभ ले सकते हैं।
1: भाटा और पताल में कतेक दे जाए।

0: सिंचाई होगा तो बहुत फायदा होगा, इस तरीका से किसान लाभ ले सकते हैं।
1: भाटा पताल में कतेक दे जाती विभाग के द्वारा?
0: उसमें 30,000 तक का है सर सब्सिडी उसमें।
1: अच्छा,
0: एकड़ के पीछे आपसे दिया जाता है उसमें। एक एकड़ भले किसान अगर 5 एकड़ लगाए कि 4 एकड़ लगाए, लेकिन सब्सिडी उसमें केवल 30,000 पर एकड़ के हिसाब से दिया जाता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी।
1: ये तो किसान भाई मन आयल पंप के खेती कर रहे थे, है ना, और योजना चलत हवे, फिर का है फसल तो लगा लेते हैं
0: जी।
1: और ये आयल पंप ला खरीदे पर कोनो प्रकार की व्यवस्था है, बाजार व्यवस्था का है कैसे है?
0: जी, इसके लिए व्यवस्था है जो भारत सरकार निर्धारित किया है। जो कंपनी हमको पौधा दे रहा है, जो कंपनी मतलब पौधा किसान भाई को देंगे, वो किसान खुद अनुबंधित किया हुआ है, उसमें सरकार द्वारा अनुबंध किया गया है।
1: अच्छा,
0: वो जितना उत्पादन होगा वो आपके कंपनी लेके जाएगा।
1: अच्छा
0: जी,
1: और किसान ला ओकर जो भी है लाभ वो दे जाए?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वैसे निर्धारित है, जैसे धान का MSP निर्धारित है उसी प्रकार से हमारा आयल पाम का भी निर्धारित है।
1: अच्छा,
0: 16 रुपया किलो के हिसाब से, और अगर उससे ज्यादा अगर किसान कहीं बिक्री के लिए मान लीजिए हो जाता है,
1: हाँ,
0: तो किसान स्वतंत्र भी है, अपना बेच भी सकता है वो बाहर भी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी, इस प्रकार से किसी द्वारा सहायता दी जा रही है।
1: अच्छा अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया योजना के बारे में चर्चा करें हमन आयल पाम के खेती के बारे में। सबसे बड़े बात आते कि खेती तो कर लेते हैं मगर किसान भाई मन, है ना, तो कभू कभू घेरा बंदी नहीं हो ना लेके नाव लेके थोड़ा समस्या आते है ना, तो का कुछ हाउस एकर बार करे जा सकते है, कुछ योजना हो ही तो ऐसा
0: विभाग द्वारा इसमें भी संचालित है सर, सामुदायिक फेंसिंग योजना है, तो उसी के तहत ना 1,08,970 रूपए लागत है, जिसमें 50% किसान को अनुदान है, किसान 50% अपना देगा, अब 50% अनुदान है विभाग के द्वारा 54,485 रूपए।
1: अच्छा,
0: तो इसमें अपना किसान लगाएगा जालीदार सीमेंट का फोन लगाएगा और रजिस्टर्ड दुकान जिसके बाद GST बिल है उसका बिल से मान्य है, ऐसी लोकल दुकान से बिल नहीं देगा वो मान्य नहीं है।
1: अच्छा
0: जी,
1: एक प्रकार देखे जाए तो पानी की व्यवस्था है ना भाई, और हर प्रकार की व्यवस्था घेरा बंदी के घला व्यवस्था ये योजना में हवे, किसान भाई मल्ला सिर्फ लगाना है कहे जाए, खेती करना है, तो अतक लाभकारी जब योजना है तो हमारे किसान भाई मल्ला ये योजना के लाभ लेना चाहिए, है ना। आप मन बहुत बढ़िया जानकारी दे आप मन, आयल पाम की खेती किसान मन भर लाभकारी ये विषय में बहुत बढ़िया जानकारी दिया, विस्तार जानकारी दिया, बेरा वक्त में इसने जानकारी देते रही, आज जब जानकारी दे है एक बार श्री टिकेश्वर राम दिवाकर जी, आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप मल्ला भी धन्यवाद।
2: हाँ संगी हो, आप मन जान डारे हो है ये गोठ बातला सुनके के आयल पाम की खेती करे ले किसान मल्ला कत का फायदा है, और बढ़िया बढ़िया एमा योजना घलो चलत है ना, एमा फेंसिंग घलो होते और पानी के सुविधा घलो सरकार डहले सहयोग करे जाते, तो आप मन आयल पाम की खेती करा है ना, ये जानकारी ला आप मन के बीच में लाइन है ना महंगू भैया मन, और हमर पहुना रहें श्री टिकेश्वर राम दिवाकर, आप हो वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी शासकीय उद्यान रोपणी पुटपुरा विकास खंड नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा। अब संगी हो आप मन का हम कहे हैं ना है ना जानकारी घलो बता चले जावो भैया के तो अवैया बिरस्पत के एक गप फिर बता देता है ना 18 जून पर ही हमारे स्टूडियो में है पशु चिकित्सालय बरतोरी बिलासपुर के पशु चिकित्सा सहायक संलग्न डॉक्टर रंजना नंदा, और इंकर से बिहनिया 10:30 से 11 बजे तक आपन प्रश्न पूछ सका था। बरसात के पहली पशु मनला रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण है ना, और 11 से 11:30 बजे की विषय रही पशु विभाग द्वारा संचालित योजना के जानकारी, ये विषय ले आपन की कोनो समस्या हो है मन में कोनो प्रकार के जिज्ञासा हो है तो समाधान पाना है तो हमार फोन नंबर है 2 ठीक नंबर बतावा था आपन पेन कागज में घलो लिख लेहा, पहली नंबर ला आपन जाना था 2665 92, दूसरा नंबर है 3126 आने 3100026, और एकर पहली बिलासपुर के STD कोड लगाए बर पर थे 0772, अब फोन लगा के

पहली आपन सचेत हो हा, है ना, नेटवर्क मरिया कोनो कंछट हल्ला गुल्ला लैकन के, है ना, घर परिवार के झन होए आने बने कोंटा में चल दे हा, सफा जगह में गुठिया हा, है ना, जेकर से आप मन के जिन समस्या है एमा कोनो प्रकार के व्यवधान झन आवाय और हमू मन ओला सुन के बढ़िया आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित कर सकी। तो सूचना सिरावत है, अब एक एगो संगी हो कि स्कूल तो खुल गए और स्कूल खुल गए है तो अपन नोनी बाबूला स्कूल पढ़े बर भेजा, काबर के जब ओमन पढ़ाई लिखाई करही ना भी ले चेत करही ना ना तो धीरे धीरे ऊँह मल्ला ज्ञान आवाज जा है। पहली तो देखी कि कई जिक सियान अभी लेहीन कुछ नहीं आवाए, अनार पढ़े नहीं आवाए, तो अब के दुनिया हर बदल गए है ना, नान नान लैकन देखिया मोबाइल चलावथिन तो अंग्रेजी घलोक बोलथिन, है ना, कई ठीक शब्द ऐसे है, तो सब पढ़ाई लिखाई के महत्व जानही तो शिक्षा ले, है ना, बदलाव घलौ आथे। तो आवा यही कड़ी में सुनथन ये गीतला द्वारिका वर्मा और संगवारी मन के गाए।

हाँ संगी हो, पढ़ाई लिखाई के कोनो उम्र नहीं रहे। सियान मन घलो पढ़ सकते। कतको जिला में भी है ना, सियान मन बर परीक्षा घलो आयोजित करे जा है। आपो मन पढ़ाई लिखाई करा, काबर के पढ़े लिखे ले कोनो मन है ना अने नुकसानी तो है नहीं। अउ दुकान उकान में जाहा तभो ठगा नहीं, हिसाब किताब में सरलता होते है ना। ये गीत ल सुनाइन द्वारिका वर्मा और संगवारी मन। संगी हो, बिलासपुर के तापमान के हम बात करी तो न्यूनतम तापमान रही से 27 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम गई से 41 डिग्री सेल्सियस। अउ ए महीना में कौन प्रकार से हमला देख रेख करना है ना फसल के और सावधानी बरतना है, तो मानसून की पहली अच्छा वर्षा होए के बाद धान के नर्सरी मुख्य खेत की तैयारी पूरा करना है। खेत में पानी निकासी की व्यवस्था रखना है। प्रमाणित और उपचारित बीजा के उपयोग करना है। दलहनी और तिलहनी फसल घलो लगाना है ना। राहेर है, उरीद है, मूंग है, सोयाबीन, तिली है ना। संगे संग कोदो, कुटकी, रागी, मड़िया ये सब घलो लगाना है चेत करिहा। और कोनो भी फसल लगाहा बीजोपचार घलो करिहा। राइजोबियम और पीएसबी कल्चर ले दलहनी तिलहनी ला करे जाते। उर्वरक प्रबंधन हमला करना है, दर के गोबर खातु ज्यादा डालना है, वर्मी कंपोस्ट डालना है और हरी खाद के उपयोग करना है। हम बता दिए कि हरी खाद जैसे अभी ढेंचा घलो मिलत है ना कृषि विभाग ले और अनुदान में है। यह ढेंचा लगा देहा आप मन ना, छींच देहा तो कन्हिया का ऊंच ऊंच हो जाते। तो यही ढेंचा ला पानी भर के सरो देहा तहा यूरिया बहुत कम में लगी, डीएपी घलो कम लगी और धान और आने फसल आप मन देखिया कत कन हो है। फिर आप मन बताहा कि सही कहे हैं। और माटी परीक्षण के आधार में उर्वरक के उपयोग करना चाहिए। धान की रोपाई के पहली खेत में सरहा गोबर के खातु डालना चाहिए। कीड़ा और रोग प्रबंधन बर हमला संगी हो ध्यान रखना है। नर्सरी बनावत हन है ना, तेमा तना छेदक हो जाते, कभो कभो पत्ती लपेटक हो जाते और फफूंद वाला कई प्रकार के रोग हो जाते, एक निगरानी करना है। खेत में जैसे अभी पानी गिरही ज्यादा पानी भर के फसल में नहीं रखना है, ये बात के ध्यान रखना है। उद्यान की फसल में आमा है, बिही है, लिमाऊ है, पपीता है ना, तो पौधा के नवा रोपाई घलो करना है। आमों में देख लेहा कि कौन कौन किस्म ला लगाई और पौधा के चारों मुड़ा में जल निकासी की व्यवस्था रखना रथे। अब पशुपालन करत हम तो बात के ध्यान रखना है। पशु के बाड़ा के सुखाऊ सफाई करना है। खुरपका, मुंहपका और गलघोंटू रोग के टीकाकरण के जानकारी नजदीकी पशु चिकित्सालय ले हमला लेना है। तो संगी हो, ये तो हुई से आज के ग्राम सभा। अब घर जाए के बेरा हो गए है ना। आज के ग्राम सभा ले विदा लेवत हन। बैसाखू के राम राम, जय जोहार।

ग्राम सभा आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। डीजे पेश है सुगम संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, फोन करें। गीत सुनने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 23 जून 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग

22 जून, की गई ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। दूसरी सूचना है, प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 18 जून को स्टूडियो में पशु चिकित्सालय बिलासपुर के पशु चिकित्सा सहायक शैलेगी रंजना नंदा उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा बरसात पूर्व पशुओं के रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा पशु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 25 जून 2026 और 26 जून 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं अल्ताफ रजा।

अल्ताफ रजा के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। नीचे पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, रजनीगंधा के आज के अंक में हम याद करेंगे हिंदी सिनेमा के उस महान अभिनेता को जिनकी दमदार आवाज, प्रभावशाली व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने उन्हें भारतीय फिल्म जगत का एक महान सितारा बना दिया। गायक केएल सहगल के चचेरे भाई चमनपुरी और मदनपुरी के छोटे भाई अमरीश पुरी को फिल्म जगत में अपनी राह खुद बनानी पड़ी। अभिनय के प्रति अपने जुनून को पूरा करने के लिए वे एक शौकिया नाटक मंडली से जुड़ गए। फिल्मों में जगह पाने के लिए नामी निर्माताओं के दफ्तरों में अपनी तस्वीरें लेकर चक्कर काटते रहे, लेकिन पहले ही स्क्रीन टेस्ट में वो असफल हो गए। इसके बाद उन्होंने आजीविका चलाने के लिए कर्मचारी बीमा निगम में क्लर्क की सरकारी नौकरी की 20-21 साल तक। नौकरी के साथ साथ उन्होंने रंगमंच करना भी जारी रखा और सत्यदेव दुबे के नाटकों में काम किया। पृथ्वी थिएटर से वो जुड़े रहे। उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी अभिनय क्षमता को पहचान मिली और 1971 में 39 वर्ष की आयु में उन्होंने फिल्म रेशमा और शेरा से अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सुनते हैं उनकी ही पहली फिल्म का ये गीत।

अमरीश पुरी ने न केवल खलनायकी को नए आयाम दिए बल्कि भारतीय सिनेमा के यादगार और संवेदनशील पिता बनकर भी दर्शकों के दिलों पर उन्होंने राज किया। पर्दे पर उन्हें पहली पहचान प्रेम पुजारी फिल्म से मिली और इसके बाद 1971 की फिल्म रेशमा और शेरा, हलचल और सुखदेव की डॉक्यूमेंट्री खिलौने वाला में उन्होंने काम किया। इन छोटे रोल्स के बीच उन पर मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल की नज़र पड़ी। बेनेगल ने उन्हें निशांत 1975 की फिल्म, मंथन 1976, भूमिका 1977, कोंदूरा 1978 और कलयुग 1981 की फिल्मों में कास्ट किया। इसके बाद वे गोविंद निहलानी की फिल्मों जैसे आक्रोश 1980, अर्धसत्य 1983 और तमस 1986 का हिस्सा बने। 22 जून 1932 को पंजाब के नवा शहर में जन्मे अमरीश पुरी के व्यक्तित्व को निखारा थिएटर ने। अभिनय की गहराइयों को समझने का उन्हें अवसर मिला और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने आगे चलकर भारतीय सिनेमा को एक महान कलाकार दिया। उनकी बुलंद आवाज और प्रभावशाली संवाद अदायगी ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। उन्होंने खलनायक के किरदार को केवल डराना ही नहीं बल्कि यादगार भी बनाया। जब हिंदी फिल्मों में खलनायकों की चर्चा होती है तो अमरीश पुरी का नाम सबसे ऊपर आता है।

श्रोताओं, नगीना फिल्म में सपेरे के अमरीश पुरी के किरदार को कोई भूल सकता है क्या? अमरीश पुरी केवल एक महान अभिनेता ही नहीं बल्कि बेहद अनुशासित और विनम्र इंसान भी थे। दूसरी तरफ अपने असली किरदार में अपने 4 दशक के लंबे करियर में 450 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया। 1980 और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय खलनायक वो बन गए। उनके चेहरे के भाव, आवाज़ का उतार चढ़ाव और संवाद बोलने की शैली दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में उनका निभाया गया किरदार मोगैम्बो भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध खलनायक माना जाता है। मोगैम्बो खुश हुआ आज भी लोगों की जुबां पर है।

सिने जगत में अमरीश पुरी को पहला बड़ा पुरस्कार मेरी जंग 1985 की फिल्म में जीडी ठकराल की नफरत से भरी भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में मिला। इसके बाद उनके अभिनय का रथ तेजी से बढ़ा। मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो, त्रिदेव का भुजंग, घायल का बलदेव राय, दाबिनी का बैरिस्टर चड्ढा और कर्ण अर्जुन में ठाकुर दुर्जन सिंह जैसे किरदारों को भला कौन भूल सकता है। अमरीश पुरी केवल खलनायक ही नहीं थे, उन्होंने अनेक प्रकार की भूमिकाएं भी निभाई। जहां एक ओर वे फिल्मों में खतरनाक खलनायक बनते थे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने सख्त लेकिन संवेदनशील पिता, ईमानदार नेता और ग्रामीण मुखिया जैसे चरित्र भी निभाए। उनकी फिल्मों में हमने उनके अलग अलग किरदार देखे हैं। मिस्टर इंडिया, DDLJ, करण अर्जुन, घायल, घातक, विरासत, नायक, कोयला, दामिनी, त्रिदेव, परदेश, हर फिल्म में उनका अभिनय अलग और प्रभावशाली दिखाई देता है। चाची 420 फिल्म में हमने उन्हें देखा कॉमेडियन के किरदार में। अपने जीवन के अंतिम समय तक वे सक्रिय रहे फिल्मों में। उनके जैसी विविधता और निरंतरता किसी और विलेन में नहीं दिखी।

अपनी अलग अलग फिल्मों में अलग अलग लुक के मामले में सर्वाधिक प्रयोगधर्मी कलाकार माने गए थे अमरीश पुरी। 20वीं शताब्दी के 8वें दशक की शुरुआत में अमरीश पुरी ने मुख्य खलनायक के रूप में बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल की। हम पांच के वीर प्रताप सिंह, विधाता के जगुआर चौधरी और हीरो के पाशा जैसे किरदारों ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। इसी दौरान रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में एक छोटी भूमिका ने हॉलीवुड निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग का ध्यान खींचा। स्पीलबर्ग ने उन्हें अपनी फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम में मुख्य खलनायक मोला राम का किरदार दिया। इस रोल के लिए उन्होंने अपना सिर मुंडवाया, जो बाद में अमरीश पुरी का सिग्नेचर लुक बन गया। एक मशहूर डायलॉग, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे भावुक क्षणों में गिना जाता है। 1995 की फिल्म डीडीएलजे में, यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, चौधरी बलदेव सिंह का किरदार, जो अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ है लेकिन अंत में अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना निर्णय बदल देता है, काफी पसंद किया गया ये रोल उनका। उन्हें कई बार फिल्म पर पुरस्कारों से भी नवाजा गया। 72 वर्ष की आयु में 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनका व्यक्तित्व और उनके यादगार संवाद हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे।

0: रजनीगंधा से आज बस यहीं विदा दीजिए, मीनाक्षी को नमस्कार। रजनीगंधा आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचारों के लिए अब जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के

0: अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। अपर मुख्य सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिदर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए। मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी

0: तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
2: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और

0: एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता, तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है तकदीर।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में, फिल्म दो बदन से। गीत है शकील बदायूनी का, संगीत है रवि का।

कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। हमें दीजिए आज्ञा और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। वे अपने जमाने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहाँ से शुरू हुआ अमरीश पुरी का अभिनय की दुनिया का सफर।

0: ना जोश है नहीं शोर है।
1: अमरीश पुरी बहुत देर से फिल्मों में आए। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ सन 1973 में।

इसके बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी।

0: इस बीच अभिनय के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया।
1: उई उई उई उई उई उई उई।

सन 1987 में आई इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो की भूमिका की थी। यहाँ से हिंदी फिल्म संसार को मिला एक प्रभावशाली खलनायक। मोगैम्बो की भूमिका को आज भी सभी याद करते हैं।

सन 1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम। इस फिल्म के निर्देशक थे स्टीवन स्पीलबर्ग। इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने मोला राम की भूमिका निभाई थी।

0: बहुत बरस पहले अमरीश पुरी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जय माला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बहुत सारी बातें हमें बताई थी।
1: मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूँ। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूँ और आप सबकी तरह सीने में दिल रखता हूँ, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सबकी तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूँ और महसूस करता हूँ कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना।
2: मस्ताना, अल्लेना, सिर्फ एक तू है लाख।

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

0: आप लोगों की तरह हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदनलाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे, उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपराओं को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 में आई

सन 1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।

0: कमल हासन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद नेहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी किसना।
1: हम हैं इस

0: डेविड धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिता भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी।
1: आती जाती है मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं, जान जाओगे मान जाओगे, तुम अभी हमें जानते नहीं, ये बताएंगे बेटा कल तुझे।

अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे फिल्में हों या रंगमंच, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में ताजा बनी रहेंगी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमरीश पुरी पर,
1: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

देखते हैं जिधर भी उधर तुम ही दिखाई देते हो ओ हमदम। ये दामन मोहब्बत का है ये दुनिया हमारी, इसे छोड़कर कहां जाएं हम।

गुम हुए हैं नजारे, भला ये क्या है बात, तेरे काजल का असर देख, ये दिन अब हुआ है रात। नैनों का नैनों से मिलना, दिल का दिल को पुकारना, हाँ यही है वो मुलाकात।

0: जमाने के ताने जज्ब करते हैं रोज, रहते हैं कांटों के संग ये, इनकी हिमाकत को समझो, मासूम है और इसलिए बहक जाते हैं ये, इन फूलों की नजाकत को समझो।
1: कहा आपका ये बजा ही सही,

पायल की छन छन, बिजली की चमकन, लोच कमरिया का संभाले न संभलता है, चुनरी की ढलकन, नजरों की अटकन, जरा सोच ये दिल बहलाए न बहलता है।

विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। समाचारों के लिए अब जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस

0: योजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
4: Bharat jo kar raha hai, wo aane wale 1000 varsh ka future likhne wala hai. और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: द प्राइम मिनिस्टर सेड द कंट्री हैज विटनेस्ड एंड एंड्योर्ड साइकल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन। ही एडेड दैट इंडिया कैरीज द मेमोरी चिप ऑफ एजेस विद इन इट्स कॉन्शियसनेस। मिस्टर मोदी स्टेटेड दैट इंडियाज एक्शंस आर शेपिंग द फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स। Highlighting the achievements of the NDA government over the past 12 years, Mr. Modi said, mobile connectivity has been extended to approximately 45,000 villages across the country. He also mentioned that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established. Shiv Sena leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde today announced the